मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की तिथि 19, तदनुसार 10 अगस्त सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:49 होने को हैं। आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है प्रातःकालीन दैनिक प्रसारण चिंतन।
1: ओ 10 वर्षीय बालक, एकटा पुस्तक, संभवतः डैनियल डिफोक लिखल रॉबिन्सन क्रूसो वा एस पक फेबल आनक हेतु घर सँ 20 किलोमीटर दूर अपन परिचितक ओतय जा रहल छल। पुस्तक किनक लेल ओकरा पास धन नहीं छलैक, तैं ओ मांगि चांगि कऽ पुस्तक पढ़ै छल। विद्यालय जेबाक तऽ ओकरा सेहन्ते लागल रहली, कारण ओकरा पिताक पास धन नहीं रहैक। ओ सर्वथा साधनहीन छल आ परिवार बेस नमहर छलैक, जकर पालनक गुरुतर भार पिता पर छलैक। भरि दिन ओ अल्पवयस्क बालक पिताक संग शारीरिक श्रम करै छल, कखनो नदीमे लकड़ी घिचबामे, कखनो तमाकुलक खेतक पटौनी करबामे, तऽ कखनो बरदक हेजके हाँकबामे। साँझमे पलखित भेटै तऽ कोनो ने कोनो पुस्तक लऽ कऽ अध्ययन करै, ओतहु प्रकाशक कोनो व्यवस्था नहि, धधकैत आगिक प्रकाशी ओकरा लेल दीप छलैक। देवाल पर कोयला सँ लिख लिख ओ गणित सीखल करै।

0: व्याकरण ज्ञान सेहो ओ तहिना प्राप्त कलक। नौवे बरखक अवस्था में ओकरा माताक देहांत भ गेल रहिक। माताक स्नेह सँ वंचित कठोर श्रम में रत ओ परिवार पालनक भार वहन करैत स्वाध्याय द्वारा आत्मोन्नति में लागल रही छल। स्वाध्याय आ कठोर परिश्रम अपन चमत्कार देखौलक आ 27 वर्षक अवस्था में ओ कानूनक परीक्षा पास कलक। ओ कालेति आरंभ कलक किछुए वर्ष में अपन न्यायपरायणता आ विद्वत्ताक बदौलत संपूर्ण अमेरिका में विख्यात भ गेल। ततबे नहि ओजस्वी वक्ताक रूप में तो विख्यात छले, व्यक्तिगत स्वतंत्रताक सेहो ओ समर्थक छल आ दास प्रथाक प्रबल विरोधी सेहो। अमेरिका में मानवाधिकारक ओ अपना समयक सबसे प्रबल समर्थक छल। यही गुण सभी बल पर ओ संयुक्त राज्य अमेरिकाक सर्वोच्च पद पर पहुंचबा में समर्थ भेल। हाँ, ओ व्यक्ति छल अब्राहम लिंकन। निर्धन कृषकक पुत्र जकरा ने कोनो औपचारिक शिक्षा भेटले न पारिवारिक स्नेह आ न भविष्यक लेल मार्गदर्शन, ओ उच्चताक शिखर पर पहुंचबा में समर्थ भेल मात्र अपन ऊही अध्यवसाय आ परिश्रमक बल पर। अब्राहम लिंकन सिद्ध कऽ देलनि जे जँ इच्छा शक्ति प्रबल हो, संकल्प दृढ़ हो आ अनवरत रूप में परिश्रम कयल जाए तो साधनक सर्वथा अभाव रहितहुँ व्यक्ति लक्ष्य सिद्धि में समर्थ भ सकै छै। जीवन में सफल हेबाक लेल साधन संपन्नताक नहि कर्मठताक प्रयोजन होइ छै। वस्तुतः मनस्वीक लेल इच्छा शक्तिये साधन बनि जाइ छै जे ओकरा साध्य दिस अग्रसर करबै छै आ सिद्ध प्रदान करबै छै।
1: चिंतन। अभी आप सुन रहे थे हमारा ये प्रातःकालीन दैनिक प्रसारण।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, आप सुन रहे हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। अब प्रस्तुत है कृषक श्रोताओं के लिए हमारा कार्यक्रम कृषि चर्चा। इसके अंतर्गत आज का विषय है फसल में पोषक तत्वों के कमी के लक्षण, और इस विषय पर जानकारी दे रही हैं प्रीति कुमारी।
1: नमस्कार किसान भाई लोगन, आज कृषि चर्चा के संग हम प्रीति। आज कृषि चर्चा में हम गप करब फसल में पोषक तत्व के कमी के लक्षण। किसान भाई, फसल में पोषक तत्व के कमी के लक्षण सँ पौधा के पात, तना, जड़, फूल आ फल में अलग अलग प्रकार सँ देखा लागत अछि। किछ प्रमुख पोषक तत्व जकर कमी के लक्षण के बारे में विस्तार से चर्चा करो। जेना नाइट्रोजन के कमी से पुरान पात पहले हल्लुक हरियर आ फिर पियर भ जाइत अछि, पूरा पौधा कमजोर और पातर देखा लागत अछि, वृद्धि कम हो लागत अछि आ दाना, फल आ उपज कम भ जाइत अछि। ओहिना फास्फोरस के कमी से पौधा के वृद्धि रुक जाइत अछि, किछ फसिल में पात के नीचा बैगनी आ लाल रंग देखा लागत अछि। जड़क विकास जे होइत अछि पौधा के सेहो कम हो लागत अछि। ओते किसान भाई, जखन पोटासक कमी भ जाइत अछि तखन पौधा के जे पुरान पात के जे किनारा होइत अछि ओ पियर भ कऽ बाद में भूरा रंग के भ जाइत अछि आ एकर बाद सुखा जाइत अछि। फल आ दाना जे होइत अछि ओकर गुणवत्ता में सेहो घटि जाइत अछि। मैग्नीशियम के जखन कमी

0: एहि तरहक जे कमी जहन भऽ जाइत अछि, तत्वक जहन कमी होइत अछि, तऽ कोना बचाव करी? तऽ एहिके लेल माटिके जाँच करा कऽ संतुलित उर्वरकके प्रयोग करी। जैविक खाद जेना गोबरके सड़ल खाद, कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्टके उपयोग करी। आवश्यकता पड़ऽ पर सूक्ष्म पोषक तत्वके पर्णीय छिड़काव सेहो करी। फसिल आ माटिके अनुसारे उर्वरकके सही मात्रा आ सही समय पर प्रयोग करी। एहि लक्षणके सही पहचान कऽ कऽ समय पर पोषक तत्व उपलब्ध कराबसँ फसलक वृद्धि, गुणवत्ता आ उपजमे सुधार कयल जा सकैए। तऽ एहि तरहें हम जे फसिलमे पोषक तत्वके जे कमीके जे लक्षण अइ ओ जखन बुझि जाइ छी तऽ एकर बचावके काज करै छी, आओर जखन एकर बचाव करै छी तऽ हमरा सबके नीक फसिल होइत अछि। तऽ एहिके सङ्ग आजुक कृषि चर्चासँ हमरा अनुमति दिअ। नमस्कार।
1: कृषि चर्चा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे फसल में पोषक तत्वों के कमी के लक्षण, और इस विषय पर जानकारी दे रही थी प्रीति कुमारी। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रातः के 6 बजने को हैं। अब समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
3: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
4: जय।
3: भारत माता की
4: जय।
3: भारत माता की
4: जय।
2: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
5: घर घर तिरंगा, आसमान को पाना है।
2: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी, साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। उत्तराखंड सरकार ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 20 साल की उत्तराखंड कृषि कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना में राज्य के सभी 13 जिले शामिल होंगे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. शिवेंद्र कुमार कश्यप को इस परियोजना का समन्वयक नियुक्त किया गया है। होर्मुज डमरू मध्य को लेकर जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका

0: ईरान के प्रति संयम बरत रहा है और फिलहाल कोई नया सैन्य हमला करने की योजना नहीं बना रहा है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और दावा किया है कि उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी नौसैनिक नाकेबंदी ने ईरानी सरकार की आर्थिक चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। उनकी ये टिप्पणी ईरान, ओमान और अमरीका के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए चल रही बातचीत के रुकने के बीच आई है। मुंबई के सोम्या विद्या विहार यूनिवर्सिटी में खेले गए FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 की टीम इवेंट फाइनल में भारत और हांगकांग चीन के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा, लेकिन गेम के बेहतर अंतर के आधार पर भारत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का विस्फोटक आयुध निरोधक EOD अभ्यास कल से 14 अगस्त तक दक्षिणी नौसेना कमान कोची में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा।
2: आज की स्वास्थ्य चर्चा में हम जानेंगे उच्च रक्तचाप लक्षण और सावधानियों के बारे में। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता। डॉक्टर AK गुप्ता साहब, ये हाई BP जब हम कहते हैं उच्च रक्तचाप, ये है क्या?
3: सामान्य रक्तचाप का मतलब होता है 120/80 से कम। अगर किसी भी व्यक्ति को 120/129 से ऊपर में सिस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक बीपी 80 से कम है तो वो होते हैं प्री हाइपरटेंसिव। और उच्च रक्तचाप का मतलब हुआ अगर आपका बीपी 130/80 से ज्यादा है तो आपको उच्च रक्तचाप है और आपको इसका इंतजाम बात करना चाहिए।
2: क्या उच्च रक्तचाप की समस्या किसी खास उम्र में होती है या फिर ये किसी को भी हो सकती है?
3: उच्च रक्तचाप हम लोग दो टाइप में जानते हैं। एक का नाम होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन और दूसरे का नाम होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मतलब होता है इसमें कुछ न कुछ कारण मरीज को जरूर होता है। अगर किसी बच्चे को अपने किडनी की बीमारी हो, किडनी के आर्टरी की बीमारी हो, क्वाक्टेशन ऑफ एओटा हो या इस तरह की शरीर में या हार्मोन की कोई बीमारी हो तो बीपी कम ही उम्र में बहुत हाई हो सकता है, इसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। लेकिन इसकी वारदात बहुत कम है, less than 5%। 95% ऐसे लोगों को होती है बीपी जिनका कॉज हमको अंदाजा नहीं होता है और वो ज्यादातर 40 साल के बाद लोगों को होती है।
2: क्या इसके कुछ लक्षण हैं या फिर ये चुपचाप बीपी बढ़ी हुई होती है
3: लक्षण सालों साल? ज्यादातर लोगों में जो हम लोगों ने देखा है बीपी के पेशेंट को, लक्षण इसमें नहीं होता है। कुछ लोगों को जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं किसी अन्य कारण से, उस समय बीपी उनको अपना देखा गया तो बीपी बहुत हाई था। कुछ लोगों की मान्यताएं हैं कि माथा में दर्द या भारीपन या चक्कर हो या कमजोरी हो तो बीपी होगा, लेकिन इस तरह के संख्या बहुत कम है। ये मान के चलिए कि ये साइलेंट अपना किलर है, इसमें लक्षण का इंतजार करना अकलमंदी नहीं है।
2: तो सवाल ये है कि डॉक्टर की सलाह यानी चिकित्सक की सलाह लोग कब लें?
3: उसके बारे में रिकमेंडेशन है कि अगर आपके फैमिली में किसी भी व्यक्ति को हार्ट की बीमारी हो, हाइपरटेंशन हो, तो आप 18 साल की उम्र से जागरूक हो जाएं, साल में एक बार अवश्य बीपी अपना जानें। बीपी, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और वेट, इतना साल में एक बार आपको जानना चाहिए। अगर फैमिली में इस तरह की कोई बात नहीं है तो 30 साल की उम्र के बाद आपको साल में एक बार अपना चेकअप ये सब जरूर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप तंबाकू से रहते हैं दूर तो समझिए कि 95% उम्मीद है कि हार्ट अटैक लकवा से अपने आप को आप बचा पाएंगे।
2: दवा की जरूरत कब है?
3: दवा की जरूरत है कि अगर लगातार बीपी 130/80 से ऊपर रहता है, 134/84, 140/90, तो एज ए फिजिशियन, एज ए कार्डियोलॉजिस्ट हम लोग लाइफ स्टाइल में कुछ उनको बताते हैं परिवर्तन। उससे 1-2 महीने के इस्तेमाल के बाद अगर बीपी नहीं कंट्रोल होता है तो हम लोग दवा स्टार्ट कर देते हैं।
2: अगर किसी व्यक्ति की बीपी हमेशा हाई रहती है तो क्या उन्हें जीवन पर्यंत दवा खाने की जरूरत पड़ सकती है?
3: ऑलमोस्ट उनको दवाई खाना पड़ता है।
2: हाई बीपी की समस्या झेल रहे लोगों में किस तरह की स्वास्थ्य

0: समस्याओं के खतरे उत्पन्न हो सकते हैं।
1: खास तौर से हार्ट की जो भी समस्या है उसकी माँ है ये। सारी दुनिया में अपने विद्वानों का सारा फोकस बीपी पर है। वो मान के चलते हैं कि बीपी को अगर आपने कंट्रोल अपना कर लिया तो आप जैसे हार्ट अटैक, हार्ट में स्टेंट का लगना, बाईपास सर्जरी का होना, किडनी का फेल होना, इसमें काफी हो जाएगी कमी। इतनी सारे रोगियों का संख्या का बढ़ना के पीछे एक ही कारण है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन।
0: कौन कौन सी सावधानियां हैं जिसकी जरूरत हाई बीपी के पेशेंट्स को है?
1: सावधानियों में सबसे जो आवश्यक है कि अपने वेट को नियंत्रण में रखें, खाने में नमक की मात्रा को घटाएं, उसमें सबसे आवश्यक है कि बाहर की जो अपने बनी हुई चीज है, प्रोसेस्ड फूड है या जो पैकेट में आती है नमकीन वगैरह सब चीज, स्नैक्स की चीज, बेकरी प्रोडक्ट, इसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है। घर का अपना बना हुआ शाकाहारी खाना खाएं तो बहुत अच्छी बात है। और घर के खाने में भी कुछ परहेज करना पड़ेगा, चटनी, चाट, पापड़, अचार जिसमें अधिक सॉल्ट है उसको नहीं खाएं। हरी सब्जी, हरे फल और शाकाहारी खाना खाएंगे तो आपको नमक कम मात्रा में होगी। और नमक का अगर खाने की घर में बात हो तो अगर लोग सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, खास करके जिनको बीपी है तो उनके लिए ये फायदेमंद है। मानसिक अपना तनाव को कम करें और सबसे जरूरी चीज है कि अपनी जीवन शैली को सक्रिय बनाए। अभी का सेडेंटरी हैबिट का मुख्य कारण है मोबाइल फोन का देखना कम करें और उस वो समय एक्सरसाइज, योगा, टहलने में बिताएं तो आपके लिए ज्यादा ठीक होगा।
0: डॉक्टर ए.के. गुप्ता साहब, आपने अपना समय हमारे लिए निकाला, आपका धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य चर्चा, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये दैनिक कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में प्रस्तुत है समूह स्वर में गाया गया ये देशगान।

चल ओ कावड़िया। ये शिव भजन अभी आप सुन रहे थे ब्रज सरवरी के स्वर में। आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना।

मेरे शिवजी तुम कहाँ हो। ये भक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल के स्वर में। आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना।

0: सोनू निगम के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम वंदना अब समाप्त हुआ। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है रामचरितमानस गान। आज के प्रसंग में मुख्य स्वर रंजना जोगलेकर का है।
1: एपिसोड नंबर 55।

स्वयंभुव मनु से मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई मानी जाती है। महाराज मनु ने दीर्घ काल तक राज्य किया। राजकाज करते हुए बुढ़ापा आ गया, किंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ, ये सोच मनु अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने राजकाज का भार अपने पुत्र को सौंपा और अपनी रानी शत्रुपा को साथ लेकर वन गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थ नैमिषारण्य को, जहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते थे, मनु शत्रुपा ने अपना निवास स्थान बनाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षरों वाले इस मंत्र का जाप उनकी तपस्या का आधार था। आरंभ में मनु दंपति साग फल तथा कंद का अल्पाहार करते थे, फिर फलमूल त्याग कर केवल जल पीकर रहने लगे। मन में मात्र एक उत्कट अभिलाषा कि किसी प्रकार उन परम प्रभु को देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस कांड। आज के प्रसंग में मुख्य स्वर रंजना जोगलेकर का था। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब श्रोताओं आपको जानकारी दे दें आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। कार्यक्रम नमस्कार मिथिला आप सुनेंगे अब से कुछ देर बाद यानी प्रातः 7:05 से। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण समय होगा 9:05 पर, जिसे हम अपने पटना केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे। दिन में 9:50 पर, 12:00, 1:15 पर, अपराह्न 2:30 पर। विद्यापति गीतों का समय होगा दिन में 10:30 पर और हमारी दूसरी सभा के अंतर्गत संध्या 6:10 पर। दिन के 11:00 आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का हमारा कार्यक्रम।

महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार लेकर हम उपस्थित होंगे दिन में 12:30 पर। अपराह्न 3 बजे आप सुनेंगे लोकगीतों का हमारा कार्यक्रम। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

हमारी दूसरी सभा के आरंभ में शाम 5 बजे आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। मैथिली संवाद आप सुनेंगे संध्या 6:25 पर। इसके तुरंत बाद संध्या 6:30 से आप सुनेंगे सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम गांव घर। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे अनुभव के चश्मा सॉन्ग खेती गृहस्थी। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7।

बजे। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे शाम 7:50 पर। रात 8 बजे समय होगा संसद समीक्षा का। हमारा मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार आप सुनेंगे आज रात 8:15 पर। पब्लिक स्पीक ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 पर, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप सुन रहे हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब समाचार होंगे क्रमशः संस्कृत और हिंदी में।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्यां स्वनिवासे 20-26 इत्यस्य राष्ट्रमंडल क्रीडायाः पदक विजेतृभिः सह मेलनं कृतवान्। संवाद समये पदक विजेतारः प्रधानमंत्रिणा सह क्रीडायाः स्वानुभवान् निवेदितवन्तः। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे श्रीमोदी अवदत् यत् तेषाम् एकैकः अपि असाधारण प्रदर्शनेन राष्ट्रं गौरवान्वितवान् तथा तेषां सफलता बहून् यूनः प्रेरयिष्यति। श्रीमोदी एकं दृश्य श्रव्य संदेशम् अपि प्रकाशितवान् अथ अवदत् यत् ये क्रीडकाः भविष्ये क्रीडासु भागं ग्रहीष्यन्ति ते प्रगतिं करिष्यन्ति। असौ नागरिकान् भारतस्य सदैव उत्साहवर्धनं कर्तुम् आहूतवान्।
2: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की
1: जय। अवसरेस्मिन् युवकार्याणां क्रीडामंत्री मनसुख मांडविया तथा युवकार्य खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे च उपस्थिते आस्ताम्। देशस्य सर्वेषु भागेषु हर घर तिरंगा इत्यभियानं देशभक्तेः राष्ट्रैकतायाः भारतस्य च समृद्ध सांस्कृतिक परम्परायाः प्रोत्साहनाय आयोज्यते।

0: जापव्यवस्थया सम्पूर्णे राज्ये अतिवृष्टिः अभवत्। अधिकारिणः जलाप्लावन प्रवण क्षेत्रेषु नदीस्तरस्य निरीक्षणं निकटतया कुर्वन्तः सन्ति। आवश्यकान् समाह्वानान् निवारकोपायान् च कुर्वन्तः सन्ति। भारतीयः भारोत्तोलकः महाराजन अरुमुगा पाण्डियनः उज्बेकिस्तान ताश्कंद नगरे एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इत्यस्याम स्पर्धायां पुरुषाणां 65 किलोग्राम मिते भारवर्गे रजत पदकं प्राप्तवान् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेता खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
2: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
1: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा आवास बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 20 साल की उत्तराखंड कृषि कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। इस योजना में राज्य के सभी 13 जिले शामिल होंगे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. शिवेंद्र कुमार कश्यप को परियोजना का समन्वयक नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का विस्फोटक आयुध निरोधक ईओडी अभ्यास कल से 14 अगस्त तक दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की विशेषज्ञ गोताखोरी और ईओडी टीमों के बीच अंतर संचालन बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर जारी तनाव के बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के प्रति संयम बरत रहा है और फिलहाल कोई नया सैन्य हमला करने की योजना नहीं है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए पर्याप्त धन भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी नौसैनिक नाकेबंदी ने ईरानी सरकार की आर्थिक चुनौतियां बढ़ा दी हैं। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूस के उप प्रधानमंत्री मरा

0: खुसनुलिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग हॉर्मुज जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित दो रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकता है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। प्रस्तुत है प्रातःकालीन दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला।
1: नमस्कार मिथिला सुनने हार समस्त श्रोता के आजुक नव अंक में स्वागत है। हम छी अंजनी आ हमरा संगे छथि कुशल जी। कुशल जी अहूँ का हमारा नमस्कार।
0: अंजनी जी आपको भी मेरा नमस्कार और साथ ही साथ नमस्कार मिथिला सुनने वाले तमाम श्रोताओं को कुशल का प्यार भरा नमस्कार। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुविचार से। आज का सुविचार है चाणक्य नीति से। जिस व्यक्ति का ज्ञान केवल किताबों तक ही सीमित है और उसने धन दूसरों के हाथों में सौंप दिया है, जरूरत पड़ने पर ना तो उसे ज्ञान मिलता है और ना ही धन, ये है चाणक्य नीति।
1: बिल्कुल, देखियो जी किताबी जीवन तक अपन सबके जे ज्ञान छे वो सीमित नहीं छे, ओहो से आगू ज्ञान के आवश्यकता होइ छे। किएक तो कहल गेल छे सांसारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, हर तरह के ज्ञान अपना सबके आवश्यक छे। और जब ऐ चीज के अपना सब में नहीं है समावेश तो अपना सब आगू नहीं बढ़ सके छी और हरदम अपना सबके पाछू खींचबाक लेल क्यों ने क्यों ठाढ़े रहता। और आजुक दिन के इतिहास में की सब अच्छी खास से हो सकता सबके सुना दियो।
0: आज के दिन सन 1809 में इक्वाडोर को स्पेन से स्वतंत्रता मिली। सन 1990 में आज के दिन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का अंतरिक्ष यान मगेलन लगभग 15 महीने की यात्रा के बाद शुक्र ग्रह की कक्षा में पहुंचा। आज के दिन सन 1860 में भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान विद्वान पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे का जन्म हुआ था। और आज के दिन यानी 10 अगस्त 1963 को भारत के प्रसिद्ध डकैत और राजनेता फूलन देवी का जन्म हुआ।
1: चल आजुक दिन के इतिहास में की सब खास। और आई दिवस है जैव विविधता दिवस। तो जैव विविधता के मतलब ई भले जे अपना सब पर्यावरण से जुड़ल छी, प्रकृति से जुड़ल छी और जो ए प्रकृति के दोहन अपने सब कर रहल छी तो की अपने सब सुखी रह सके छी? नहीं। जल जीवन और हरियाली ऐ पर अपन सब के पृथ्वी टिकल अछि। जौं जल अछि तखने जीवन अछि और तखने हरियालियो अछि। और अइ के लेल अपने सबके प्रयास करऽ पड़त किएक तऽ ईश्वर जे छथिन जे सबसँ जे बुद्धिजीवी प्राणी बनेलखिन ओ अपने सबके बनेलखिन। और जँ अइ सबके बुद्धि अपना सबके नहि हैत तऽ जीव जन्तु सब के नष्ट सब नष्ट भऽ जायत। और समय पर अपने सब जँ जीव जन्तुके रक्षा करै छी तऽ जीवन अवश्य हैत।
0: तो अंजलि जी आज हम लोग इसी चर्चा के विषय पे चर्चा करेंगे और इसी पे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत में हम लोग सुनते हैं एक मैथिली सुगम संगीत।

0: सांप काटे तो समय न गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
1: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: तो श्रोताओं, अभी कार्यक्रम में आप मैथिली सुगम संगीत का आनंद ले रहे थे और अब कार्यक्रम में वक्त चला है आज के सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर नजर डालने का, यानी हालचाल का। हालचाल लेकर उपस्थित है अंजनी कुमारी।
3: धन्यवाद कुशल जी। आप सुनो हमारा सा हालचाल। शिव आसक्तिक उपासना के लेल आई दोसर सोमवार के शिवालय सब सज धज कर तैयार है। जनतब दी जे मिथिला में हजारीनाथ, पंचानाथ, माधवेश्वर, गरीबनाथ, बटेश्वरनाथ, प्रज्ञेश्वरनाथ आ केम टैंक स्थित धर्मेश्वर शिवालय सहित सब शिवालय में जल चढ़ेबाक लेल भोरे से कतार लागल है। श्रद्धालु सब बाबा के जयकारा करैत जल चढ़ेबाक लेल उत्सुक देखल गेला। ओते प्रशासन भीड़ के नियंत्रित करबाक लेल सतर्क छथि। सतीघाट राजघाट मुख्य सड़क के बदहाली के जांच भ रहल अछि। जगह जगह सड़क पर गड्ढा आ कीचड़ से जानलेवा बनल अछि ई सड़क। रवि दिन एहि के लेल पथ परिवहन विभाग संज्ञान में लेलक अछि। कनीय अभियंता निशांत कुमार स्थल के निरीक्षण क निर्माण एजेंसी के तुरंत बजौलनि आ सोहरबा घाट बाजार के पंचवटी चौक पर सड़क के मोटरवेल बनेबाक लेल सख्त निर्देश देलनि। बेनीपुर प्रखंड में रवि दिन सांसद गोपाल जी ठाकुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक आ लोकसभक संघ गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में शामिल भेला। ओ कहलनि जे भारत माता के प्रति श्रद्धा, राष्ट्र प्रेम आ समर्पण के भावना स्वयंसेवक के पहिल पहचान अछि। ओ कहलनि जे गुरु दक्षिणा केवल परंपरा नहि अछि बल्कि राष्ट्र सेवा, संस्कार, अनुशासन आ समर्पण के भावना के मजबूत करबाक पावन अवसर अछि। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मेडिकल विंग द्वारा नशा मुक्ति शपथ अभियान के तहत रवि के चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा में कार्यक्रम कयल गेल। एहि अवसर पर सहायक संग्रहालय अध्यक्ष डॉक्टर रविकांत कुमार कहलनि जे नशा लोक सब के सामाजिक आ आर्थिक रूप से कमजोर कर रहल अछि, जाहि से गरीब लोक सब के बहुत समस्या भ रहल अछि। एहि दिशा में जागरूकता के लऽ कऽ ब्रह्म कुमारी द्वारा बेहतर प्रयास कयल जा रहल अछि। हर घर तिरंगा अभियान के जन जन धरि पहुँचेबाक आ देश प्रेम के जन जन धरि विकसित करबाक लेल किसान महासभा के आयोजन कयल गेल। देशवासी तक अपन बात पहुँचेबाक लेल बैसार कयल गेल। किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष ब्रह्मानंद यादव कहलनि जे राष्ट्र प्रेम आ देशक प्रति श्रद्धा हमरा सबके नस नस में अछि। देशक प्रति अन्य अगाध भक्ति के हमरा जन जन धरि पहुँचेबाक आवश्यकता अछि। 12 अगस्त के अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के तत्वावधान में ग्वालियर में पंडित दामोदर दास चतुर्वेदी स्मृति में आयोजित साहित्य महोत्सव में दरभंगा के कवि डॉक्टर अमरकांत कुमार कविता पाठ करता। सुरेश नीरव के अध्यक्षता में होबा वाला ऐ आयोजन के दौरान अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के आयोजन सेहो हैत, जाहि में देश विदेश के प्रसिद्ध कवि सब अपन प्रस्तुति देता। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में ऐ बरख 9 अगस्त से 17 अगस्त 2026 धरि हर घर तिरंगा अभियान चलायल गेल अछि। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा आ साक्षरता विभाग सब राज्य केंद्र शासित प्रदेश सब के शिक्षा विभाग सब के अभियान में

0: विद्यार्थी सब के सक्रिय भागीदारी करबाक निर्देश देल गेल अछि। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के जिला स्तरीय कार्यालय दरभंगा वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न मद में प्राप्त अनुदान के उपयोग के उपयोगिता प्रमाण पत्र आ व्यय वितरण जमा करबाक निर्देश देल गेल अछि। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी संजय कुमार विद्यालय सब बीआरसी सीआरसी आ संबंधित संस्था सब में सबके निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट उपलब्ध करबाक लेल कहल गेल। निर्देश के अनुसार विद्यालय स्तर पर समग्र विद्यालय अनुदान, खेलकूद सामग्री अनुदान, ट्यूनिंग ऑफ स्कूल, यूथ एंड इको क्लब, समावेशी शिक्षा, किशोरी स्वास्थ्य दिवस सहित जतेक मद में कैल गेल खर्च अछि तकर विवरण देबऽ पड़त से निर्देश देलनि अछि। एखन अपने सब सुनि रहल छी हालचाल।
1: सांप काटे तो समय न गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
2: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
0: नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में गत 7-9 अगस्त धरि आयोजित होबय वाला 20वां ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस कप कराटा चैंपियनशिप में दरभंगा के खिलाड़ी सब शानदार प्रदर्शन करैत 3 कांस्य पदक हासिल केलक अछि। राष्ट्रीय स्तर के एहि प्रतियोगिता में देश भर के करीब 2500 विद्यार्थी खिलाड़ी सब हिस्सा लेने छल, जाहि में सुप्रिया कुमारी कैडेट महिला व्यक्तिगत कुमिते के 47 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतलनि। ओतहि युवराज आदर्श जूनियर पुरुष व्यक्तिगत कुमिते के 67 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक अपना नाम में कैलनि। अंडर 14 बालक 40 किलोग्राम वर्ग में निशांत चौधरी कांस्य पदक हासिल कऽ जिला के नाम रोशन कैलनि। कराटा प्रशिक्षक मुकेश मिश्रा बतौलनि जे खिलाड़ी सब नियमित प्रशिक्षण, कड़ा मेहनत आ अनुशासन के बल पर राष्ट्रीय स्तर पर ई उपलब्धि हासिल कऽ सकैत छथि। कराटे एसोसिएशन ऑफ दरभंगा के अध्यक्ष राजीव रंजन बतौलनि जे प्रतियोगिता में दरभंगा सँ कुल 8 खिलाड़ी बिहार के प्रतिनिधित्व करैत छल, जाहि में श्रुति सिंह बिहार टीम के संग तकनीकी अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी उठेने छलथि। 3 जीतला पर कराटा एसोसिएशन के पदाधिकारी सब, प्रशिक्षक सब आ खेल प्रेमी सब खिलाड़ी के बधाई दैत हुनक उज्जवल भविष्य के कामना कैलनि। जिला के आईसीटी लैब आ स्मार्ट क्लास से आच्छादित विद्यालय सब में 12 अगस्त के आईसीटी लैब आ स्मार्ट क्लास के उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित अछि। एकरा लऽ कऽ जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के दिशा सब संबंधित विद्यालय सब के निर्देश जारी कऽ देल गेल अछि। जारी कार्यालय आदेश में कहल गेल अछि जे उद्घाटन के निर्धारित तिथि धरि सब नवस्थापित आईसीटी लैब आ स्मार्ट क्लास डिजिटल टीवी के संग क्रियाशील कऽ छात्र छात्रा सब के उपयोग में आनल जाय। आईसीटी लैब आ स्मार्ट क्लास से आच्छादित सब विद्यालय सब में प्रधानाध्यापक सब के अपन अपन आईसीटी लैब आ स्मार्ट क्लास के संचालन नोडल के माध्यम से सुनिश्चित करबाक निर्देश देल गेल अछि। ओतहि सब बीईओ के आईसीटी लैब आ स्मार्ट क्लास के उद्घाटन के तैयारी के समीक्षा अपना स्तर से कऽ 11 अगस्त धरि तैयारी पूर्ण कऽ लेबाक निर्देश सेहो देल गेल अछि। रवि दिन कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में रन फॉर नेशन मैराथन के आयोजन कैल गेल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा आ खेलो भारत के संयुक्त तत्वावधान में भेल ए मैराथन में हर कदम फिटनेस के लिए हर दौर राष्ट्र के लिए के संकल्प के संग सैकड़ों छात्र छात्रा, युवा आ महिला पुरुष प्रतिभागी सब भाग

0: लेलनि। पुरुष के लेल 5 आ महिला के लेल 3 किलोमीटर दौड़ निर्धारित छल। युवा में स्वास्थ्य और फिटनेस, अनुशासन आ राष्ट्र भक्ति के भावना के बढ़ेवा देवा के उद्देश्य से ई मैराथन भेल अछि। कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे आदि हरी झंडी देखा कर खिलाड़ी सबके रवाना कलन। एक संग हालचाल संपन्न होत अछि।
1: सांप काटे तो समय न गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
2: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
3: तो अंजलि जी, आप कार्यक्रम में हम लोग बात करते हैं कुछ मौसम संबंधित। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 8 से 12 अगस्त 2026 तक के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि में उत्तर बिहार के अधिकांश स्थानों पर 10 और 11 अगस्त के बीच हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। अन्य दिनों में भी अनेक स्थानों पर हल्की हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वानुमान अवधि के दौरान अधिकतम तापमान 31 से 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है और सुबह में सापेक्षिक आर्द्रता 80 से 90 प्रतिशत तथा दोपहर में सापेक्षिक आर्द्रता 50 से 60 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इस दौरान हवा मुख्यतः पूर्वी अथवा दक्षिण पूर्वी दिशा से 5 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की संभावना है।
0: तो ई छल मौसमक जानकारी। और देखियो कुशल जी, जे अपने सब चर्चा करै छलौं पहले जैव विविधता के, ती प्रकृति जेना देखियो अपना अनुसारे समय चलैत अछि, मास चलैत अछि, जेना एखन अपने सबके सावन मास चलि रहल अछि और आइ दोसर सोमवारी अछि। अपने सब ईश्वर के भक्ति करै छी, कारण ई जे हम तऽ नहि जानै छी जे कहिया से चलल यऽ, लेकिन जो परम्परा चलि आयल अछि तऽ ओहि परम्परा के निभावै के लेल अपनो सब तत्पर रहै छी। तब भगवान शिव होथिन या कोनो भी ईश्वर के आराधना तखने कऽ सकै छी जखन अपने सब प्रसन्न रहब, अंदर से प्रसन्न रहब। और भीतर से प्रसन्न रहबाक लेल, अंदर से प्रसन्न रहबाक लेल अगर अपने सब देखी तऽ प्रकृति के सुंदरता देखब तखने, कियाक तऽ एखन देखियो ना जे आवश्यकता जते बरखा के अछि ओते बरखा नहि भऽ रहल अछि और गर्मी भऽ रहल अछि, कियाक तऽ सावन मास मे एतेक बरखा होइ छल जे नदी तालाब भरि जाइ छल, बाढ़िक संभावना भऽ जाइ छल, जे अपना सब एखन देख रहल छी जे ओकर संभावना कतौ दूर दूर तक नहि बुझा रहल अछि। तऽ ई सब अपने सबके कारणे छै और ई प्रकृति जे छै से अपन सबके अनमोल धरोहर छै, एकरा केना कऽ राखब सेहो अपने सबके बुझऽ पड़तै।
3: और आजकल तो लोग देख रहे हैं कि आप जो कहा कि अभी बरसात का मौसम और सावन के महीने में बरसात और तालाब और पोखर भरे रहते हैं, लेकिन अब का जो समय है लोग तो तालाब और पोखर को मिट्टी से भरकर नव निर्माण और भवन बनाने के उसमें है, इसीलिए ये सब परेशानियां का सामना करना पड़ता है। तो अंजलि जी, कार्यक्रम में हम लोग और इसी बात पे बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़े से मनोरंजन की ओर चलते हैं। आपने श्रोताओं को सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

सावन के झूलों में। और देखियो सावन में झूला लगे बहुत जगह झूला ओनाहतो लागे सब दिन, लेकिन सावन के जो झूला है ओकर किछ अलग ही महत्व है। और जना झूला लगे तो प्रकृति के कारण, और देखिए जो प्रकृति अपना सबके सुंदरता किछ अलग अइ मौसम में किछ अलग बुझाइत रहत है। और सुंदरता के गप कलूँ तो प्रकृति के अनमोल अंग जे छै

0: से तो जैव विविधता छै, ओकर केना के सुचारू रूप से चलत से अपना सब बुझै छै।
1: तो अंजलि जी, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि जैव विविधता का अर्थ क्या है। जैव का अर्थ होता है जीवन और विविधता का अर्थ है विभिन्न, अर्थात पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीव जंतु, वनस्पतियां, सूक्ष्म जीव तथा उसके प्राकृतिक आवास मिलकर जैव विविधता का निर्माण करते हैं। इसमें जीवों की प्रजातियों, उनके आनुवंशिक गुणों तथा विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता भी शामिल होती है। आज देखा जाए तो ये मुख्यतः तीन प्रकार से होते हैं, आनुवंशिक विविधता, प्राजातीय विविधता और पारिस्थितिक तंत्र विविधता।
0: और अपने सब से हो जाने छी जे जैव विविधता सिर्फ प्रकृति के सुंदरते नहीं है छी, ई प्रकृति के सुंदरते नहीं बढ़ावे ता है, पृथ्वी पर जीवन के संतुलित केनाय सेहो एकर जिम्मेवारी छी। जौं जैव विविधता के अपने सब नष्ट क दे छी त मानव जीवन सहित समस्त जीव जगत के अस्तित्व जे छै से खतरा में पड़ जात अछि।
1: और जब ही आपने इसकी महत्व की बात की तो जैव विविधता मानव जीवन और पर्यावरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है, औषधियों के निर्माण में अनेक पौधों और जीवों का उपयोग होता है, वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करते हैं, और जैव विविधता मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और जल चक्र को संतुलित रखने में भी सहायक करते हैं।
0: हाँ हाँ, और ये तो अवश्य है। देखियो जे मछली पालन छे, पर्यटन छे, कृषि छे, वन उद्योग छे, ओकरो माध्यम से अपने सब आर्थिक विकास में योगदान दे सके छिए में, और वर्तमान समय में जैव विविधता के संरक्षित केनाय अपना सब के लिए एकटा चुनौती बन गेल अछि। एकर अनेक कारण अछि, इएह जे अहाँ कहलहुँ जे वन के कटाई, जे शहरीकरण भ देखियो, आधुनिक जीवन जीबाक लेल अपना सब के आवश्यक छै जे अपने सब आगू बढ़बै, लेकिन आगू बढ़बा के कारण ई थोड़े छै जे अपना सब पर्यावरण से खिलवाड़ करबै। जौं पर्यावरण से अपने सब खिलवाड़ करै छी तो अपने सब खुद पहले तो अपने सब सुखी नहीं रह सके छे। अखन देखियो प्रदूषण जे छे से जगह जगह फैल रहल छे, पौधारोपण तो होत अछि लेकिन ओकर व्यापक जे सुरक्षा छे से अपना सब नहीं कह सके छे।
1: और अगर इसके सामने अगर चुनौतियों की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान समय में जैव विविधता अनेक कारणों से संकट में है, जैसे वनों की अंधाधुंध कटाई, बढ़ता शहरीकरण और औद्योगिकीकरण, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, अवैध शिकार और वन्य जीवों की तस्करी और प्राकृतिक आवासों का निवास, अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग और विदेशी आक्रामक प्रजातियों का प्रसार, ये इनके सामने बहुत सी समक्ष चुनौतियां हैं। और अगर जैव विविधता के संरक्षण के उपाय की बात करें अंजलि जी, तो वनों का संरक्षण एवं व्यापक वृक्षारोपण, राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्यों और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों का विस्तार करना, अवैध शिकार एवं वन्य जीव तस्करी पर कठोर नियंत्रण और प्रदूषण को कम करना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना।
0: देखियो ने जे जो हम पहला पीढ़ी के गप करी तब पहले समय छलै जे अपन सबके बाप दादा बनेने छलखिन, तो आई अपने सब ओ के कारण गाछ वृक्ष देख रहल छी, और जो आई अपने सब संरक्षण कर रहल छी ए चीज के, तो अपने सब के जे आबे वाला पीढ़ी छे ओकर अपन सब संरक्षण कर सके छी, किएक तो पर्यावरण जो दूषित होइ छे तो ओकर प्रभाव आबे वाला पीढ़ी के सबसे बेसी होइ छे, और जखने आबे वाला पीढ़ी के अपने सब सुरक्षा नहीं कर सके छी तो पर्यावरण के सुरक्षा नहीं भ पावत अछि, किएक तो ए जीवन में ए धरती पर सब चीज के भिनाय आवश्यक छे, चाहे वो पर्वत होय, पठार होय, जल होय या पर्यावरण होय, प्रकृति के सुरक्षा एकदम आवश्यक छे। और ई सब जे कह सके छी से स्थानीय समुदाय के संरक्षण में सेहो अपने सब भागीदारी लो सके छी, और सरकार के द्वारा बनायल गेल पर्यावरण संरक्षण के कानूनी प्रभाव में सेहो आन सके छी, ओकर पालन अपने सब सेहो कह सके छी। और जखने कहलूँ कहै छी धरोहर के बात, तो धरोहर तो अपने सब के सब चीज छै, प्रकृति के रक्षा केनाय अपन सब के कर्तव्य छै, पेड़ पौधा के संग्रह केनाय या जीव जंतु के संग्रह केनाय ई सब पृथ्वी पर जीवन के आधार छै, एकर संरक्षण मानव सभ्यता के लिए सुरक्षित भविष्य के लेल अत्यंत आवश्यक छै। आई अगर हम जैव विविधता के रक्षा करै छी, स्वच्छ संतुलित आ समृद्ध पर्यावरण के सुरक्षा करै छी, त आगू वाला पीढ़ी अपन सबके याद करत, सब नागरिक ई भूल जाय छथि, एखन ई चीज देखियो कहल गेल अछि अकेला चना न

0: खुटि सकैए तहिना सब गोटे सम्मिलित भऽ कऽ सब गोटे एकमत भऽ कऽ जँ अपने सब नागरिक छी एहि देशके तऽ सिर्फ इएहके लेल नहि अछि जे अपना सब कोनो दिवस मना लै छी ओहिके लेल नहि अछि एहि दिवसके की प्रभाव हेबाक चाही सेहो अपना सबके समझबाक चाही
1: और जैव विविधता प्रकृति की अमूल्य धरोहर है यह केवल जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का संग्रह नहीं बल्कि पृथ्वी पर जीवन का आधार है इसका संरक्षण मानव सभ्यता के सुरक्षित भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है यदि हम आज जैव विविधता की रक्षा करेंगे तभी आने वाली पीढ़ियां हमारी सुरक्षित और स्वच्छ रहेगी संतुलित और स्मित पर्यावरण का लाभ भी उठा सकेगी प्रत्येक व्यक्ति नागरिक का यह कर्तव्य है कि प्रकृति के प्रति संवेदनशील बने और जैव विविधता संरक्षण में अपना सक्रिय योगदान दे प्रकृति की रक्षा ही मानवता की सुरक्षा है
0: आ देखियो ने जे एखन जीव जंतु के गप केलौं त एखन अपना सब के मिथिला में जे नव विवाहता के पावन चल रहल छ मधुश्रावणी ओय में सब देवता से ल क सब जीव जंतु कीट मकोड़ा जते भी होइ छे सबक पावन भ रहल छ हम पावन करै छी अइ के लेल जे हुनकर सुरक्षा भ सके आ देखियो जे साँझ क पेड़ पौधा के पत्ता तोड़ क जे पावन करै छ नव विवाहिता सब ओ पेड़ पौधा सब पत्ता तोड़ क आनै छ फूल तोड़ क आनै छ किएक तऽ जखन पर्यावरण छै ई प्रकृति छै तखने ओ हम सब पावन क सकै छी और एक एक चीज एक एक कीट मकोड़ा के पावन इहे ल होइत अछि जे हम आगू हिनकर सुरक्षा क सकी और देखियो जे ई जे आय रहल अछि पावन ई हमरो सब के नै पता अछि जे कहिया से आबि रहल अछि और जे एखन सब अपने सब रक्षा क रहल छी एकटा सर्पे के नै और सब जीव के रक्षा क रहल छी एमे पूजा क रहल छी एमे और संकल्प लै छी कि हम अहाँ के रक्षा करब तऽ जँ अपने सब एकर शपथ लै छी एकर संकल्प लै छी तऽ अपने सब के आगू बढ़ पड़त
1: और अंजलि जी अब बात करते हैं कि भारतीय रेल के हमारे बीच रोचक तथ्य के बारे में भारतीय रेल दुनिया की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क में से एक है जिसकी कुल लंबाई लगभग 68,000 किलोमीटर है प्रतिदिन 2 करोड़ से अधिक यात्री भारतीय रेल से यात्रा करते हैं भारतीय रेल प्रतिदिन 13,000 से अधिक यात्री ट्रेन और 8,000 से अधिक मालगाड़ियां भी चलाती हैं
0: और भारतीय रेल देश के सबसे बड़का नियोक्ता में से एक अछि जतय लगभग 12 लाख कर्मचारी कार्यरत अछि चेनाब रेल पुल दुनिया के सबसे ऊंच रेलवे आर्म ब्रिज अछि जे एफिल टावर से सेहो ऊंच आई एखन तक मानल गेल अछि खड़गपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म दुनिया के सबसे लंबा प्लेटफॉर्म में से गिनल जाइत अछि आ देखियो जे रेल के यात्रा जे छै ने से बड़ नीक लगै छै हर चीज छै सब किछु छै लेकिन रेल से अपना सब अगजौर ट्रेन पर चढ़ के कतौ जाइ छी त प्रकृति के सुंदरता के दर्शन करैत अपना सब आगू बढ़ै छी और जौं हिमसागर एक्सप्रेस भारत के सबसे लंबा दूरी तय करे वाला ट्रेन में से एकटा अछि जे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी धरि लगभग 3,700 किलोमीटर के यात्रा करैत अछि
1: और भारत में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई यानी बोड़ी बंदर से ठाणे के बीच चली थी और भारतीय रेल में वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेनें स्वदेशी तकनीक से विकसित की गई है और भारतीय रेल के पास अपने अस्पताल स्कूल और परीक्षण संस्थान भी है
0: और भारत के रेल के कतेको पर्वतीय रेल लाइन यूनेस्को विश्व धरोहर के दर्जा प्राप्त कर चुकल है भारतीय रेल लगभग हर प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र रेगिस्तान जना पर्वत जंगल आ समुद्री तट से भ कऽ गुजरैत अछि भारतीय रेल के शुभंकर यानी भोलू गार्ड के रूप में हाथी अछि हाथी ओकर नाम पड़ल अछि भोलू रेलवे टिकट बुकिंग के लेल IRCTC के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विश्व के सबसे व्यस्त ई टिकटिंग सिस्टम में से एकटा अछि
1: और भारतीय रेल प्रतिदिन लाखों टन आवश्यक वस्तुओं और औद्योगिक सामान का परिवहन करती है और साथ ही रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त या कम लागत वाली वाईफाई सुविधा कई स्थानों पर उपलब्ध है और भारत में अनेक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन अपनी अनूठी वास्तुकला से के लिए प्रसिद्ध है और भारतीय रेल ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के लिए सौर ऊर्जा तथा विद्युत इंजन को के उपयोग को बढ़ा रही है
0: देखियो जे अपने सब एते आगू आधुनिक जीवन में चल गेल छी तो रेल के व्यवस्था जे छै सेहो आगू भ रहल छै अर्थव्यवस्था में अगर जो नजर डाली तो भारत

0: भारतीय रेल देश के अर्थव्यवस्था, पर्यटन आ व्यापार के रीढ़ मानल गेल अछि। भारतीय रेल केवल परिवहन के साधन नहीं बल्कि भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक एकता के महत्वपूर्ण माध्यम से हो समझल गेल अछि।
1: तो अंजलि जी, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि भारतीय रेल के हमारे बीच रोचक तथ्य के बारे में, तो आगे कार्यक्रम में हम लोग और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, यानी धीरे धीरे जो अपने सब जैव विविधता के सुदृढ़ करवा में लाग जाए तो अवश्य सफलता भेटबे करत। और जनक देखियो मनोरंजन अपना सबके जीवन में बहुत आवश्यक छे, तहिना प्रकृति के सुरक्षित केनाई अपना सबके जीवन के सफल बनेनाई अपना सबके जीवन में एकदम आवश्यक छे। और देखिए कोनो चीज में कुशल जी जे बिना मनोरंजन के बिना गीत के जना एखन देखबे जे जना स्वतंत्रता दिवस आबि रहल अछि तो ठाम ठाम राष्ट्रीय गीत सुनवा के लेल मिलत अछि। तेकर बाद एखन पावनि जे अपने सब कनि देर पहिने कहलहुँ ओहो मे भोर से लऽ कऽ साँझ धरि गीते गीत होइत रहैए।
1: अभी जैसे सावन का महीना है, अगर आप घर से अगर निकलते हैं आसपास कोई अगर कोई भी शिव मंदिर या कहीं भी आप देखिएगा कि मनोरंजन हल्का हल्का मधुर संगीत चलते ही रहता है और कोई भी काम करते हैं तो मनोरंजन के बिना आनंद ही नहीं आता है। चाहे आप सफर में जा रहे हो, चाहे आप कोई कार्यक्रम कर रहे हो, चाहे आप घर में कोई काम कर रहे हो, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा फायदा है कि रेडियो अगर आपके पास है तो और बढ़िया है, क्योंकि रेडियो के साथ सुनने के साथ साथ आप कोई काम भी कर सकते हैं। लेकिन वही अगर आप टीवी के आगे टेलीविजन के आगे अगर बैठ गए तो उसमें आपका सारा समय भी बीत जाएगा और दिन का कोई काम भी नहीं हो पाएगा।
0: हाँ अस्त व्यस्त हो जात। और आप तो देखे छी सब लोग के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है आ सब लोग सोशल मीडिया से जुड़ल तो तहिना अपने सब के मोबाइल पर जो न्यूज ऑन या डाउनलोड कर ले छी तो अपन सब के कार्यक्रम सब तरह के रेडियो कार्यक्रम सुन सके।
1: लेकिन अब अंजनी जी कहना यह भी होगा कि जब मोबाइल होगा हाथ में तो हम रेडियो का आनंद क्यों लेंगे, लेकिन रेडियो में आपको क्या है कि आपको आप अगर ऑन करके रख दिए ऐप डाउनलोड करके तो उसमें आप न्यूज से लेके हालचाल से लेके
0: सब कुछ
1: लोकल खबरों से लेके आप फिल्म संगीत का भी आनंद ले सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप मोबाइल का आनंद ले रहे हैं तो सिर्फ गाना सुन के ही रह जाइएगा।
0: कहे के मतलब जी आजकल आधुनिक जीवन अपना सब जी रहल छी कुशल जी, और सबसे बड़का किनको से बातचीत करे तो कहता समय ये नहीं है। समय नहीं है तो मान लै छै कहता कि रेडियो हमरा चलबऽ के समय नहीं है या घर पर हमरा ये हम एत नहीं सुन सकै छी। ओहि के अनुसारे हम कहलहुँ है जे अहाँ ई बात मतलब सुन लिया जे न्यूज ऑन एआईआर जेनाहिते कोनो ऐप अपना सब डाउनलोड करै छी तेनाहिते डाउनलोड कऽ सकै छी, और घर पर तऽ अपना सबके रेडियो रहते अछि तऽ ओहिमे सुन सकै छी। तऽ मनोरंजन जे छै अपना सबके जीवन के अहम हिस्सा छै, और एहि दिस अपने सब जँ अग्रसर छी तऽ प्रकृति से प्रेम अनायास भऽ जायत। ओकरा से प्रेम भेला से जेना रेल के जे पटरी पर गाड़ी दौड़ैत रहै छै तहिना अपन सबके जीवन के गाड़ी दौड़ैत रहै छै, और अपना सबके जीवन में संगीत के सेहो महत्व छै। तऽ जेनाहिते अपना सबके जीवन में संगीत के महत्व छै तेनाहिते अपना कार्यक्रम में समय के सेहो महत्व छै।

0: और अपने सबके समय भ गेल अछि एहि कार्यक्रम से विदा लेबाक तऽ एहि संग जे काल्हि फेर उपस्थित होयब एहि समय पर तऽ हमरा अंजनी के
1: आ साथी कुशल को
0: दिअ इजाजत नमस्कार मिथिला।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: सब दिन भरतुहार आबै छल कहियो थमहु अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल मालू।
1: गुआ सुपारी के कहल जात अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझ के सुपारी बुझ के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: अब नन्हे मन्हे बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222481। मोबाइल नंबर है 9430029353।
4: हवाओं से होकर कुछ आवाजें गईं दूर दूर तक रेडियो तरंगों के वेश में। ये अनमोल तरंगे जिन तक पहुंची वे बने रेडियो श्रोता। बचपन गुजरा, जवां हुए, बुढ़ापे ने दस्तक दी। किसी का साथ रहा, किसी का छूटा, पर नहीं छूटा रेडियो, उसकी यादें, उसकी कही बातें। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दरभंगा के नए कार्यक्रम में। हर महीने के पहले रविवार को दोपहर 2:30 पर रेडियो की बात श्रोताओं के साथ।
5: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
6: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
7: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
6: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
5: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
4: घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आब रहल छी एक ही क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमारे सबक वेबसाइट

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा। तब बोला, अब लगवा ही लेता हूँ PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानी

0: में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा। सब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्मी ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए अपने सामूहिक संकल्प को नवीकृत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
4: हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
5: संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसे मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली पहल बताया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: महाराष्ट्र में देशभक्ति के उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। राज्य के कई जिलों में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा रैलियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीड में जिला प्रशासन, जिला खेल अधिकारी कार्यालय और विभिन्न खेल संगठनों ने मिलकर जिला खेल परिसर से एक तिरंगा रैली आयोजित की। बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका नेतृत्व करेंगे।
6: कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से आयोजित यह यात्रा सुबह 10 बजे जेपी गोलंबर से रवाना होकर कारगिल चौक पहुंचेगी। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर प्रखंड को जीविका के माध्यम से 4000 तिरंगे उपलब्ध कराए गए हैं। गौरतलब है कि तिरंगा यात्रा का बिहार में विशेष महत्व है, क्योंकि 11 अगस्त 1942 में बिहार के 7 वीर विद्यार्थी तत्कालीन पटना सचिवालय पर तिरंगा लहराने के क्रम में अंग्रेजों की गोलियों से एक एक कर शहीद हो गए थे। की शान के लिए जान की बाजी लगाने वाले इन छात्रों की याद में पटना विधानमंडल के सामने शहीद स्मारक बनाया गया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
3: मणिपुर में भी हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया है। ये अभियान 17 अगस्त 2026 को समाप्त होगा। अभियान के दौरान नागरिक अपने घरों पर तिरंगा ध्वज फहराएंगे। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने इम्फाल पश्चिम जिले के सिंगाजामी स्थित अपने आवास से अभियान में भाग लेते हुए लोगों से पहले खुद को भारतीय और फिर मणिपुरी मानने का आग्रह किया। दिल्ली मेट्रो रेल ने स्वतंत्रता की भावना का उत्सव मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम से सजी एक विशेष मेट्रो ट्रेन शुरू की है।

0: सोशल मीडिया पोस्ट में डीएमआरसी ने बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के तहत इस ट्रेन को तैयार किया गया है। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश करेंगी। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। एक रिपोर्ट।
1: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है, जिसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है। ये 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। मंत्रालय ने कहा कि 2025-26 के दौरान देश में जीवाश्म ईंधन रहित बिजली उत्पादन क्षमता में रिकॉर्ड 55.29 गीगावाट की वृद्धि हुई, जिसमें सौर ऊर्जा का 44.6 गीगावाट और पवन ऊर्जा के 6 गीगावाट का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये 2014-15 में लगभग 191 अरब यूनिट से बढ़कर 2025-26 में 477 अरब यूनिट से अधिक हो गई है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: झारखंड में पुलिस ने विधानसभा परिसर के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है और रांची में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
2: झारखंड में कथित भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्र आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और झारखंड सरकार के बीच लगातार 3 दौर की वार्ता में परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच, प्रभावित परीक्षाओं को रद्द करने, दोषियों पर कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में सुधार पर चर्चा हुई। सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने, टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं की विस्तृत जांच और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर सरकार ने कहा कि मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में है, इसलिए इसे सीधे रद्द करना संभव नहीं है। उधर छात्रों ने सरकार के प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा घेराव के अपने कार्यक्रम पर कायम है। महेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना अमरीकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की ईओडी टीमों और विशेषज्ञ गोताखोरों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुसलुनिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित दो रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार श्री खुसलुनिन ने कहा कि भारत तक पहुंच प्रदान करने के लिए तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाले रेल मार्गों का पता लगाया जा सकता है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 285 किलोग्राम भार उठाया। वियतनाम के वांग थाश ने 291 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
3: मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रांग सिस्टम सक्रिय है। मॉनसून तरफ और निम्न दबाव क्षेत्र के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं

0: छत्तीसगढ़, विदिशा, सीहोर, हरदा और देवास में मौसम विभाग ने अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश होने का अनुमान है। भोपाल और उज्जैन संभाग में रात से बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में तेज बारिश का दौर अगले 2 दिन तक रह सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मूसलाधार बारिश की संभावना के मद्देनजर अधिकारी कमजोर तटबंधों और निचले इलाकों पर कड़ी नजर रख रहे हैं।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है, जबकि भद्रक और जाजपुर में बैतरणी, सालंदी और कानी नदियों के पानी ने गांवों, खेतों और सड़कों को जलमग्न कर दिया है। केंद्रापड़ा के कई इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। IMD ने अगले 24 घंटे के दौरान कई उत्तरी और पश्चिम जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है और मौसम प्रणाली के कारण आने वाले दिनों में भी राज्य में बारिश जारी रहने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में आज बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। आज सावन माह का दूसरा सोमवार है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने श्रद्धालुओं और कांवड़ियों के लिए व्यापक व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
3: कांवड़ यात्रा ऐप श्रद्धालुओं और प्रशासन के बीच संवाद की सीधी कड़ी बन गया है। तीर्थयात्रियों को उनके मोबाइल फोन पर जरूरी जानकारी मिल रही है। वहीं नियंत्रण कक्ष और फील्ड अधिकारी एक साथ ही जमीनी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। ये ऐप श्रद्धालुओं को एक क्लिक पर यात्रा से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी उपलब्ध करा रहा है। ऐप में पूरे रास्ते का मानचित्र, मंदिर, शौचालय, चिकित्सा सुविधाएं और भोजन की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है। श्रद्धालु शिकायत या आपात स्थिति में तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए भी इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर राजेश सिन्हा भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। जनसत्ता की सुर्खी है, झारखंड में झुकी सरकार, JPSC के सभी सदस्यों का इस्तीफा, 3 परीक्षाएं रद्द करने पर सहमति, प्रदर्शनकारी CBI जांच पर अड़े। बिहार में शिक्षा परीक्षा सुधार के लिए बनेगी समिति, नवभारत टाइम्स लिखता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़, गुणवत्तापूर्ण और छात्र केंद्रित बनाने के लिए 4 बड़ी घोषणाएं की। संसद के मॉनसून सत्र को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका के अनुसार संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टूट सकता है गतिरोध, लोकसभा में आ जाएंगे 4 विधेयक। मेटा को भारतीय कानूनों का करना होगा पालन, दैनिक जागरण की खबर है। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की टर्बुलेंस फ्लाइट के मुख्य पायलट का ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट संदिग्ध पाया गया, दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार। परीक्षण की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार, जांच और परीक्षण प्रक्रिया पूरी होने तक DGCA ने उड़ान चालक दल के 2 सदस्यों को ड्यूटी से हटाया। डीमैट और म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जोड़ना ही होगा, हिंदुस्तान के बिजनेस पन्ने पर है। बाजार नियामक सेबी के नए नियम 1 सितंबर से लागू होंगे।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: एक छोटे से अंतराल के बाद
1: तंदुरुस्ती बहुत चीजों पर डिपेंड करती है, पर खाने के मामले में एक सिंपल फॉर्मूला है। बस यूं समझिए कि प्लस और माइनस का खेल है। देखिए, आटा, चावल, तेल, दूध और नमक खरीदते समय प्लस एफ के निशान को चुनिए। ये फोर्टिफाइड फूड्स हैं जिनसे आपको संपूर्ण पोषण मिलेगा। और खाने में घी, तेल, नमक और चीनी को कीजिए थोड़ा माइनस, तो प्लस एफ और थोड़ा कम, है ना सिंपल। ईट राइट, स्टे फिट, तभी इंडिया सुपर हिट।
2: खाद्य संरक्षा आयुक्त, स्वास्थ्य विभाग बिहार और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे यात्रा का नेतृत्व। प्रदेश में शिक्षा में सुधार के लिए चार विभागों को मिलाकर एक निदेशालय बनाया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए हर महीने आयोजित होंगे सहयोग शिविर। मौसम विभाग की आज कैमूर, रोहतास और किशनगंज जिले के कुछ भागों में भारी बारिश की चेतावनी। और राजस्थान में आयोजित 42वीं सब जूनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में पटना के श्रियांश यादव ने जीता कांस्य पदक। अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
2: कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से आयोजित ये यात्रा सुबह 10 बजे जेपी गोलंबर से रवाना होकर कारगिल चौक पहुंचेगी। इस तिरंगा यात्रा में राज्य सरकार के कई मंत्री, विधायक, अधिकारी और बड़ी संख्या में आम लोग शामिल होंगे। इधर प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर प्रखंड को जीविका के माध्यम से 4000 तिरंगे उपलब्ध कराए गए हैं। अभियान के दौरान वंदे मातरम का सामूहिक गायन, रक्तदान शिविर, तिरंगा प्रदर्शनी, सेल्फी विद तिरंगा और तिरंगा रंगोली सहित अन्य गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि तिरंगा यात्रा का बिहार में विशेष महत्व है, क्योंकि 11 अगस्त 1942 में बिहार के 7 वीर विद्यार्थी तत्कालीन पटना सचिवालय पर तिरंगा लहराने के क्रम में अंग्रेजों की गोलियों से एक एक कर शहीद हो गए थे। तिरंगे की शान के लिए जान की बाजी लगाने वाले इन छात्रों की याद में पटना विधानमंडल के सामने शहीद स्मारक बनाया गया है। सविता पारीक, आकाशवाणी।

0: ई समाचार पटना।
1: तिरंगा हर घर तिरंगा।
0: यात्रा को लेकर राजधानी पटना में सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, साथ ही कई मार्गों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह पूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प को दोहराने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वह भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। एक रिपोर्ट।
2: संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसे मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली पहल बताया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राज्य सरकार शिक्षा में सुधार के लिए चार विभागों को मिलाकर एक निदेशालय गठित करेगी। इसमें शिक्षा, उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और युवा रोजगार एवं कौशल विभाग को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। श्री चौधरी ने कहा कि शिक्षा और परीक्षा में सुधार के लिए दो राज्य स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये समितियां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कराने के साथ ही परीक्षाओं को सुचारू, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए कार्य करेंगे।
3: पूरे राज्य स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा आयोजन पर, जो बिहार जैसे बिहार के बच्चों को और अच्छा कैसे पढ़ाई कराया जा सकता है, उनको कैसे गुणवत्ता के साथ पढ़ाई कराए, इसकी पूरी संरचना का एक क्रिएशन करने का काम।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक महीने सहयोग शिविर लगाया जाएगा। इस शिविर में मंत्री और वरीय पदाधिकारी शिक्षण संस्थानों में जाकर छात्रों से संवाद करेंगे।
3: ये सजेशन के तौर पर उनको पोर्टल पर अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद यदि 30 दिन में हमने निदान नहीं किया तो मैं बिहार के नौजवानों को, छात्रों को स्पष्ट करता हूँ कि उसके मुख्यमंत्री के लेवल पर महीने में एक बार छात्रों के लिए अलग से सहयोग शिविर भी चलाने का काम।
0: राज्य के सभी नवगठित 211 डिग्री महाविद्यालयों में नियुक्त संविदा शिक्षकों का कॉलेजवार और विषयवार आवंटन कर दिया गया है। लोक भवन सचिवालय के अतिरिक्त सचिव संजय कुमार ने बताया कि इस संबंध में विश्वविद्यालयों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। लोक भवन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी शिक्षकों को आज आवंटित महाविद्यालयों में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी कामेश्वर राव के नाम की अनुशंसा की है। केंद्र सरकार की मंजूरी और नियुक्ति की अधिसूचना जारी होने के बाद वे पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे। श्री राव पटना हाई कोर्ट के 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी में स्वीकृत 2,09,000 आवासों में से 2,03,000 से अधिक आवास महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 16,600 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि करीब 22,000 आवास अनुसूचित जाति, 14,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति और 75,000 से अधिक आवास अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं। इस योजना में आवासों के स्वामित्व में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। पीएम आवास योजना शहरी की शुरुआत

0: वर्ष 2015 में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त हर मौसम के लिए उपयुक्त पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। आनंद कुमार के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में 1100 रुपए मासिक पेंशन की राशि DBT के माध्यम से भेजेंगे। इसके तहत मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना समेत 6 योजनाओं के लाभार्थियों को भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता मौजूद रहेंगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने प्रत्येक महीने की 10 तारीख को पेंशन भुगतान करना सुनिश्चित किया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल EIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। आज सावन की दूसरी सोमवारी है। इस अवसर पर मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चार से गुंजायमान है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ, मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, रोहतास के गुप्ता धाम, जहानाबाद के वाणावर, पटना के बैकटपुर धाम, लखीसराय के अशोक धाम, मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, सुपौल के तिलहेश्वर स्थान और सहरसा के मटेश्वरनाथ मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना कर जलाभिषेक कर रहे हैं। इधर भागलपुर के सुल्तानगंज में बड़ी संख्या में कांवरिया उत्तर वाहिनी गंगा का जल उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये कांवरिया 105 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। मॉनसून के प्रभाव से राज्य के विभिन्न भागों में बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज कैमूर, रोहतास और किशनगंज जिले के कुछ भागों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
1: दिनांक 10 अगस्त को राज्य के उत्तर पश्चिम भाग एवं दक्षिण भाग के कुछ स्थानों पर जबकि उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम इलाकों में कुछ जगहों पर आंधी तूफान बिजली गिरने की संभावना है। कैमूर, रोहतास और किशनगंज जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है।
0: इधर मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज जिले के गलगलिया और गया जिले के मदनपुर में भारी बारिश हुई। इस अवधि में गलगलिया में सबसे अधिक 128.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत प्रदेश में पंच सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि इस सम्मेलन में मुखिया, पंच और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हो रहे हैं। लोगों को इस योजना की जानकारी देने के उद्देश्य से प्रदेश भर में 15 अगस्त तक यह सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर अरविंद कुमार पनघड़िया ने कहा है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राज्य को अपनी नीतियों और कार्य प्रणालियों में आवश्यक सुधार लाने की जरूरत है। बिहार लोक भवन में आयोजित विशेष व्याख्यान को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास को गति देने के लिए सरकार, शिक्षा जगत और उद्योग जगत के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। व्याख्यान में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा

0: कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा कि जो खेलेंगे वे आगे बढ़ेंगे। उन्होंने नागरिकों से हमेशा भारत का उत्साह बढ़ाने की अपील की।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
0: राजस्थान के जयपुर में आयोजित 42वीं सब जूनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में पटना के युवा तैराक श्रेयांश यादव ने कांस्य पदक हासिल किया है। श्रेयांश यादव ने बालक 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में 1 मिनट 2 सेकंड और 5 नैनो सेकंड का समय लेते हुए यह उपलब्धि हासिल की। स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के 33 राज्यों के लगभग 550 तैराकों ने हिस्सा लिया। बेगूसराय जिले के मंझौल में अनुमंडलीय अस्पताल में घायल मरीज के इलाज में लापरवाही बरतने के मामले में प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अभिनव प्रदर्शी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

0: नैनोसेकेंड का समय लेते हुए यह उपलब्धि हासिल की। स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के 33 राज्यों के लगभग 550 तैराकों ने हिस्सा लिया। बेगूसराय जिले के मंझौल में अनुमंडलीय अस्पताल में घायल मरीज के इलाज में लापरवाही बरतने के मामले में प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अभिनव प्रदर्शी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए उन्हें मूल पदस्थापन मटिहानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में योगदान करने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि एक मरीज के इलाज के दौरान उसके पैर में गद्दे लगाए जाने से संबंधित समाचार सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले में संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की। पटना जिले के पालीगंज थाना क्षेत्र के मसौढ़ा के पास सोन नहर में कार के पलटने से दो भाइयों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान अरवल जिले के उसी गांव निवासी के रूप में की गई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, शिक्षा से जुड़े चार विभागों का एक कल्याण निदेशालय होगा। दैनिक जागरण ने लिखा है, मेटा को भारतीय कानूनों का ही करना होगा पालन। दैनिक भास्कर ने TRE4 भर्ती से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है, 2000 शिक्षक बढ़ेंगे, गणित और विज्ञान में सबसे ज्यादा। प्रभात खबर ने लिखा है, पटना समेत 18 जिले मानव तस्करी के हाई रिस्क जोन में, बिहार से महाराष्ट्र तक फैला जाल। आज अखबार ने राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल के बयान को तरजीह देते हुए लिखा है, बिहार भूमि पोर्टल पर ऑनलाइन सेवाओं से राजस्व मामलों के निष्पादन में आई तेजी। राष्ट्रीय सागर की सुर्खी है, जेपीएससी के तीनों सदस्यों का इस्तीफा, 10 अगस्त से सीआईडी करेगी पूछताछ। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे यात्रा का नेतृत्व। प्रदेश में शिक्षा में सुधार के लिए चार विभागों को मिलाकर एक निदेशालय बनाया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए हर महीने आयोजित होंगे सहयोग शिविर। मौसम विभाग की आज कैमूर, रोहतास और किशनगंज जिले के कुछ भागों में भारी बारिश की चेतावनी। और राजस्थान में आयोजित 42वीं सब जूनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में पटना के श्रेयांश यादव ने जीता कांस्य पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आसमान में बिजली के चमकने, गरजने, कड़कने के समय यदि आप खुले में हों, तो शीघ्रातिशीघ्र किसी पक्के मकान में शरण लें। जहां हैं वहीं रहें। हो सके तो पैरों के नीचे सूखी चीजें जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते रख लें। ऊंचे पेड़ के नीचे न खड़े हों। बिजली के सुचालक वस्तुओं से दूर रहें। समूह में न खड़े हों। रेडियो और टीवी पर मौसम के साफ होने का संदेश प्रसारित होने का इंतजार करें। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।

0: अंजुमन तेरे जलों की जब भी फलक से उतर कर हिलाला गया है, फलक से उतर कर हिलाला गया है, फलक से उतर कर, ये शेर देखे नहीं सके, मेरे दिल में उठने लगी गुदगुदी सी,
1: कहना मिश्रा भाई,
0: मेरे दिल में उठने लगी गुदगुदी सी, मेरे दिल में उठने लगी गुदगुदी सी, किसी का प्याम विसाला गया है, किसी का प्याम विसाला गया है, यहाँ जिक्र हुस्न शेर देखें, उभरता नहीं मेरा अक्से मोहब्बत,

0: अब्बा तेरे दिल के शीशे में बाल आ गया है, तेरे दिल के शीशे में बाल आ गया है।
1: अच्छी फनकारी है भाई, वाह वाह वाह।
0: तेरे दिल के शीशे में बहलता नहीं है, तेरी याद से दिल बहलता नहीं है, तेरी याद से दिल

0: तेरे दीद का आखिरी शेर देखे, अजब रंग है आज बस में सुखन का, अजब रंग है आज बस में सुखन का, अजब रंग है आज बस में सुखन का, सुखनवर कोई बा कमाला है, सुखनवर कोई बा कमाला गया है, सुखनवर कोई। मौका समाप्त करें, सबे हिजर मुश्ताक कैसे कटेगी, सबे हिजर मुश्ताक कैसे कटेगी, सबे हिजर मुश्ताक कैसे कटेगी, सरे शाम दिल को मलाला गया है, सरे शाम दिल को मलाला गया है, जहाँ जिक्र हुस्न जमाला गया है, तसव्वुर में तेरा ख्याल आ गया है।
1: बहुत खूब, बहुत अजब रंग है आज बज़्म में सुखन का, सुखनवर कोई बा कमाल आ गया है। तो आज के महफिल सुखन में भी लगता है इसी तरह के बा कमाल शोरा इकराम हाजिर हैं। तो अब मैं दावत सुखन देता हूँ जनाब नईम सभा साहब को कि वो अपने अशार पेश करें।
2: एक गजल के चंद अशार पेश खिदमत है, मतलब हाजिर है। आज भाई नहीं है भाई का, आज भाई नहीं है भाई का, ये जमाना है बेवफाई का, आज भाई नहीं है भाई का, ये जमाना है बेवफाई का, और दुश्मनों को खुशी मिली ऐसी, दुश्मनों को खुशी मिली ऐसी, दौर चलता रहा मिठाई का, दौर चलता रहा मिठाई का। और ये शेर तवज्जो चाहूंगा, बेटियां घूमती हैं बेपर्दा, बेटियां घूमती हैं बेपर्दा, यह अंजाम बेहयाई का, बेटियां घूमती हैं बेपर्दा, यह अंजाम बेहयाई का, और नेकियों का सिला नहीं मिलता, नेकियों का सिला नहीं मिलता, यह जमाना नहीं भलाई का, यह जमाना नहीं भलाई का, और आदमी के गुरूर का आलम, आदमी के गुरूर का आलम, अब है दावा उसे खुदाई का, अब है दावा उसे खुदाई का, खुद को कैसे बचा सकोगे तुम, खुद को कैसे बचा सकोगे तुम, दौर है सूद की कमाई का, फल मिलेंगे तुम्हारे कर्मों के, फल मिलेंगे तुम्हारे कर्मों के, बीज बोते हो जो बुराई का।

0: बीज बोते हो जो बुराई का, रास्तों से भटक गए वो खुद, रास्तों से भटक गए वो खुद, शौक था जिनको रहनुमाई का, शौक था जिनको रहनुमाई का। और आखिरी शेर है, काम वो भी मेरे नहीं आए, काम वो भी मेरे नहीं आए, भरते थे दम जो हम नवाई का, भरते थे दम जो हम नवाई का, ऐ सबा अब कोई नहीं अपना, ऐ सबा अब कोई नहीं अपना, वास्ता देना आशनाई का, वास्ता देना आशनाई का, आज भाई नहीं है भाई का, ये जमाना है बेवफाई का। दूसरी गजल भी सुन लीजिए, इसी गजल के चंद अशार
1: जी।
0: आईना देगा भी धोखा मुझे मालूम न था, आईना देगा भी धोखा मुझे मालूम न था, उफ बदल देगा चेहरा मुझे मालूम न था, उफ बदल देगा चेहरा मुझे मालूम न था, जहर भी पी लिया सुकरात ने जो हंसते हुए, जहर भी पी लिया सुकरात ने जो हंसते हुए, जहर भी होता है मीठा मुझे मालूम न था, जहर भी होता है मीठा मुझे मालूम न था। और ये शेर शायद आपको पसंद आए, इश्क आसान नहीं गालिब ने कहा था लोगों, इश्क आसान नहीं गालिब ने कहा था लोगों, इश्क है आग का दरिया मुझे मालूम न था, इश्क है आग का दरिया मुझे मालूम न था, दर गुजर करता रहा उसकी जफाओं को मगर। आखिरी शेर है, दर गुजर करता रहा उसकी जफाओं को मगर, वो करेगा मेरा शिकवा मुझे मालूम न था, वो करेगा मेरा शिकवा मुझे मालूम न था। मकता है, चल रही शहर में मसमूम हवाएं ऐ सबा, चल रही शहर में मसमूम हवाएं ऐ सबा, होगा दुश्वार भी जीना मुझे मालूम न था, होगा दुश्वार भी जीना मुझे मालूम न था, आईना देगा भी धोखा मुझे मालूम न था, उफ बदल देगा चेहरा मुझे मालूम न था।
1: शुक्रिया।
2: इश्क आसान नहीं गालिब ने कहा था लोगों, इश्क है आग का दरिया मुझे मालूम न था। तो ये थे जनाब नईम सबा जो अपने अशार पेश कर रहे थे, और अब मैं दावत सुखन देना चाहता हूँ जनाब अब्दुल गफ्फार साहब, जिन्हें हम अदब की दुनिया में रौनक शहरी के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं उनसे कुछ मुरस्सा कलाम।
3: हाजरीन कराम, मधुवीन शोरा कराम, मतला हाजिर खिदमत है, मुलाजा फरमाइए। करके कोशिश माह पारा चुन लिया है,
2: करके कोशिश,
3: करके कोशिश माह पारा चुन लिया है, था किसी को कब गवारा चुन लिया है,
2: था किसी को
3: करके कोशिश माह पारा चुन लिया है, था किसी को कब गवारा चुन लिया है। देखें ये शेर के, कर तसव्वुर तू भी अब तख्लीक रंग के, कर तसव्वुर तू भी अब तख्लीक रंग के, मैंने अपना इस्तारा चुन लिया, मैंने अपना इस्तारा चुन लिया है। ये शेर देखें, ये किस्मत कश्ती में ही सुराख था सो, किस्मत कश्ती में ही सुराख था सो, डर के लहरों से किनारा चुन लिया, डर के लहरों से किनारा चुन लिया है। अब कील कांटे की नहीं परवाह मुझको, कील कांटे की नहीं परवाह मुझको, फिर वही रास्ता दोबारा चुन लिया है, कील कांटे की नहीं परवाह मुझको, फिर वही रास्ता दोबारा चुन लिया है। और कब तेरी चश्मे करम मुझ पर नहीं थी, ऊपर वाले की शान में कि कब तेरी चश्मे करम मुझ पर नहीं थी, तेरे होने का सहारा चुन लिया है, तेरे होने का सहारा चुन लिया है। और ठहरे पानी में ये शेर देखें कि ठहरे पानी में मगरमच्छ कम नहीं थे, ठहरे पानी में मगरमच्छ कम नहीं थे, मछलियों ने तेज धारा चुन लिया है, मछलियों ने तेज धारा चुन लिया है। अब दोहे के चंद अशआर में पेश करता हूँ, देख लें, मुलाजा फरमाइए।

पहले रूठ गई तकदीर, मंजिल आने से पहले

0: खेच के हम जंजीर ऐ रौनक, खेच के हम जंजीर।
1: बहुत खूब,
2: बहुत खूब।
0: छोटी सी बार की एक गजल पेश कर रहा हूँ। हर तरफ गुहर चमके, हर तरफ गुहर चमके, हर तरफ गुहर चमके, सांप की नजर चमके, हर तरफ गुहर चमके, सांप की नजर चमके। दूसरा शेर देखें, वो

0: हो खुशी का
1: मुख्तसर सी बहर है लेकिन शेर अच्छे देखेंगे कि हो खुशी कभी दाखिल काश मेरा घर चमके, हो खुशी कभी दाखिल काश मेरा घर

0: चम के
1: बहुत बहुत बहुत।
2: मैं तो बुझ गया लेकिन अश्क रात भर चमके, उस तरफ उजाला हो तू जिधर जिधर चमके। ये अशार पेश कर रहे थे जनाब अब्दुल गफ्फार यानी रौनक शहरी साहब। और अब मैं दावत सुखन एक बार फिर से देना चाहता हूँ मुश्ताक अहमद खान साहब को।
3: शुक्रिया। मत्ता समाप्त करने का
2: इंसानियत के तौर तरीके नहीं रहे, इंसानियत के तौर तरीके नहीं रहे, इंसानियत के तौर तरीके नहीं रहे, इंसानियत के तौर तरीके नहीं रहे, लोगों में अब खुलूस के जज्बे नहीं रहे, लोगों में अब खुलूस के जज्बे नहीं रहे, लोगों में अब खुलूस
3: के मतलब देखें।
2: फुरकत के दिन जो गुजरे वो अच्छे नहीं रहे,
0: क्या कहे,
2: फुरकत के दिन जो गुजरे वो अच्छे नहीं रहे, फिर भी मेरी जबान पे शिकवे नहीं रहे, फिर भी मेरी जबान पर शिकवे नहीं रहे, फिर भी मेरी जबान पर।
3: शेर देखे जैनी साहब
0: जी साधु।
2: आबाद गुलसिता ने मोहब्बत वो किस तरह, आबाद गुलसिता ने मोहब्बत वो किस तरह, दुनिया में अब खुलूस के पौधे नहीं रहे, दुनिया में अब खुलूस के पौधे नहीं रहे।
3: ये शेर जो है तो इस पर जो है
2: ये ख्वाहिशों का शहर बसाने की फिक्र में, एक ख्वाहिशों का शहर बसाने की फिक्र में, इतने बने मकान।

0: इतने बने मकान के रास्ते नहीं रहे, इतने बने मकान के रास्ते नहीं रहे, और अपना यत्क जो भी थे आयवाल ढह गए, अपना यत्क जो भी थे आयवाल वह ढह गए, मजबूत आज खून के रिश्ते नहीं रहे, मजबूत आज खून के रिश्ते नहीं रहे, मजबूत आज खून के। आज आखिरी शेर है, कच्चे मकान थे तो घरों दे भी साथ थे, कच्चे मकान थे तो घरों दे भी साथ थे, पुख्ता मकान हुए तो घरों दे नहीं रहे, पुख्ता मकान हुए तो घरों दे नहीं रहे। और मक्ता से बात कर ले जा, मुश्ताक गैर से कोई उम्मीद क्या करे, मुश्ताक गैर से कोई उम्मीद क्या करे, अपने जो लोग थे वही अपने नहीं रहे, अपने जो लोग थे वही अपने नहीं रहे।
1: एक ख्वाहिशों का शहर बसाने की फिक्र में इतने बने मकान की रास्ते नहीं रहे। बहुत खूब, बहुत अच्छी शायरी की जनाब मुश्ताक अहमद खान ने। एक बार फिर से बता दें कि आज हमारे साथ जो शोरा इकराम मौजूद थे, जनाब अब्दुल गफ्फार और रौनक शहरी, जनाब नईम सबा और जनाब मुश्ताक अहमद खान। तो इसी के साथ आज का स्टूडियो मुशायरा महफिल सुखन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। एजाज हुसैन को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज।
2: سامعین محضر ہو رہے تھے محفل سخن سے، اب بزم موسیقی میں پیش خدمت ہے یہ عمدہ سی غسل، آواز ہے جگی سنگھ کی اور کلام ہے ابراہیم اشک کا۔

अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए फिल्मी भजन मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म है गोपी। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है और गीतकार है राजेंद्र कृष्ण।

साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन भर तुहार आबे छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काट लेला आ अपने बनल मालू।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनी आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार। घर घर के वाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय के वाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी। नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
3: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
4: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
3: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
2: आकाशवाणी दरभंगा, सुन

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। आप सुन रहे हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

1942 अ लव स्टोरी। इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति के आवाज में। जावेद अख्तर के लिखे इस गाने को संगीत दिया था ए आर रहमान ने।

अलका याग्निक कुमार सानो और कविता कृष्णमूर्ति को अभी आप सुन रहे थे फिल्म संग्राम में। समीर के लिखे इस गाने को संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

जान तेरे नाम। इस फिल्म का ये गाना भी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। रानी मलिक के लिखे इस गाने को संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। हमारे कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी।

दिल है तुम्हारा। इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार सानू के आवाजों में। समीर के लिखे इस गाने को संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

0: इंडिवर के लिखे इस गाने को हमने लिया था फिल्म माशूक से। आवाज कुमार सानू की, संगीत निर्देशन श्याम सुरेंद्र का था। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।
1: साहित्य संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहु अगला साल, हमर गर्दन काटि लेल आ अपने बनल मालूम।
1: गुआ सुपारी के कहल जात अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।

0: भोर होते उठ जाओ किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराय लगैत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल्हि लेल।
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप सँ सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
2: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं हैत तो खेती नहीं हैत, आ खेती जँ नहीं हैत उपजा नहीं हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
3: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
0: आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर संध्या।

लकी फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और अदनान सामी की आवाजों में। समीर के लिखे इस गाने को संगीत दिया था अदनान सामी ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। अब प्रस्तुत है विद्यापति गीतों का हमारा कार्यक्रम। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति रामकुमार मल्लिक के स्वर में ये विद्यापति गीत।

विद्यापति गीतों के कार्यक्रम में आज आपने सुना रामकुमार मल्लिक, प्रेम कुमार मल्लिक, समित कुमार मल्लिक, सूर्य नारायण पोद्दार, गौतम मिश्र और सूर्य नारायण यादव को। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, हमारे अगले उद्घोषणा की थोड़ी प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे श्रोतों की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। कलाकार हैं पंडित जसराज।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत में पंडित जसराज से कबीर भजन राग शुद्ध वाराणी में। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर, रतनमाला सुरेलकर जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: पेड़ जितना फलदार होता है उतना ही विनम्र होकर झुक जाता है और सफलता भाग्य से नहीं बल्कि सही सोच, निरंतर मेहनत और धैर्य से ही मिलती है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है

0: राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। आप हमारे चिर परिचित श्रोता हैं, लिखते हैं, विमलेश जी और अजीत जी आपको प्यार भरा नमस्कार। हमें दिनांक 21/7/2026 और 22/7/2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया। आगे आपने लिखा है,
1: जिसमें आपने ये भी जानिए के तहत भारत के अनूठे मेलों की जानकारी दी। इसमें आपने असम और नागालैंड के मेलों की जो दुर्लभ जानकारी दी वो हमें बेहद पसंद आई
0: जी।
1: दिनांक 22 जुलाई 2026 के ही प्रसारण में आपने सुंदरिया की कहानी सुनाई, वो भी हमें बेहद पसंद आई। ऐसा लगा मानो पूरा दृश्य आंखों के सामने दिख रहा हो। बहुत अच्छी कहानी थी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक शिकायत भी है हमारा संदेश प्रोग्राम में शामिल नहीं किए जाने की। कोई नाराजगी है तो माफ करें।
0: तो राजेश जी, आपको कहना चाहते हैं कोई नाराजगी नहीं है। देखिए, हमने आपका संदेश आज के प्रसारण में सबसे पहले शामिल कर लिया
1: जी। कुलगांव जम्मू कश्मीर से मोहम्मद असलम मीर
0: और राजा जी नगर बेंगलोर से हमारे चिर परिचित श्रोता एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी ने लिखा है।
1: अजीत जी, विमलेश जी, मिट्टी की पुस्तकों से भोजपत्र से लेकर तालपत्र और ई पुस्तकों तक पुस्तकों पर आधारित ये विषय सुनना वाकई शानदार था। वास्तव में आपकी चर्चाएं इतनी उत्कृष्ट थीं कि हमें ऐसा लगा मानो हम उन्हें ई पुस्तकों से ही पढ़ रहे हों
0: जी।
1: आपके वर्णन करने का तरीका और उन्हें सरल भाषा में समझाना बहुत ही बढ़िया था।
0: बहुत बहुत धन्यवाद एन आर प्रसाद जी और अखिला जी, आपको हम अपना आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे जी का और साथ में वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी का।
1: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा,
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया?
1: ये नारा दिया था प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI का आविष्कार किसने किया था?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। AI के आविष्कार का श्रेय जाता है अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी को।
0: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, मेघालय के मावली नोंग गाँव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है, क्यों?
1: इसका उत्तर है, मावलीनोंग गांव के पास जो पुल है वो जीवित पेड़ों की जड़ों से बनाया गया है, इसलिए इसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है।
0: तो श्रोताओं, प्रश्नोत्तरी में आप सबकी प्रतिभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है?
0: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
1: श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए विकल्पों और निर्देशों का पालन कीजिए और मनचाही पाठ्य पुस्तक को डाउनलोड कीजिए।
0: जी हाँ, और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ऑडियो बुक्स यानी ध्वनि पुस्तकों के रूप में सुनना चाहते हैं तो टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम भी आप इस चैनल पर सुन सकते हैं।
1: तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम,
0: वीर कुंवर सिंह।
1: ये कार्यक्रम महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी देशभक्त राजा वीर कुंवर सिंह के जीवन और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी वीरता की गाथा प्रस्तुत करता है। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने बिहार के शाहाबाद में गंगा नदी के तट पर अंग्रेजों से लोहा लिया।
2: हमका सिपाहियों के साथ मिलकर लड़क चाहिए, महाजनन के बही खातों को जरा डालो।
3: '1857 भारतीय इतिहास का वो समय है जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण और दमन के खिलाफ हिंदुस्तान के राजाओं, जमींदारों, किसानों, काश्तकारों और जनता ने विद्रोह कर दिया था। बैरकपुर में 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे लड़ते लड़ते फांसी पर चढ़ गए थे। ये देखकर अंग्रेजों के खिलाफ पूरा देश धधक रहा था और विद्रोह की लहर फैल गई थी। भारत माता के कई सपूत आगे आए, जैसे जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने के लिए जान की बाजी लगा दी।

0: मेरठ में 10 मई को विद्रोह का बिगुल बजा और 3 जुलाई को पटना में हुई पीर अली की फांसी की सजा ने आग में घी डालने का काम किया। जगदीशपुर, दानापुर और आरा पर पीर अली की फांसी का गहरा असर पड़ा। जनता बगावत करने लगी। कहा जाता है कुंवर सिंह और जगदीशपुर के लोगों ने पीर अली की याद में एक मजार बनवाई, जिससे अंग्रेज और खफा हो गए। पटना के कमिश्नर ने कुंवर सिंह को मना किया, पर कुंवर सिंह कहां रुकने वाले थे।
1: अगर तुम लोगों ने फौज को इकट्ठा किया तो हम तुम्हारा काम तमाम कर देगा, अंडरस्टैंड?
0: उनकी रगों में तो देशभक्ति का जज्बा उफान ले रहा था।
2: मस्ती की थी छिड़ी रागनी, आजादी का गाना था, भारत के कोने कोने में होता यही तराना था। उधर खड़ी थी लक्ष्मीबाई और पेशवा नाना था, इधर बिहारी वीर बांकुड़ा खड़ा हुआ मस्ताना था। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। सत्रह सौ 77 ईस्वी में कुंवर सिंह का जन्म साहबजादा सिंह के घर हुआ। लाड़ प्यार से पालन पोषण हुआ। पिता के निधन के बाद कुंवर सिंह ने सन 1826 ईस्वी में जगदीशपुर की जमींदारी की बागडोर संभाली। कुंवर सिंह के बारे में कहा जाता है कि वे एक बड़े नेक दिल इंसान थे। जो किसान समय पर लगान नहीं दे पाते थे या मुसीबत में पड़ जाते थे, वे उनकी दिल खोलकर मदद करते थे। इसी कारण कई बार वे लगान की पूरी राशि जमा नहीं करा पाते थे। उनके ऊपर धीरे धीरे कंपनी की बकाया राशि का कर्ज बढ़ता गया। अंग्रेज उनसे खफा थे, पर आम जनता बहुत खुश थी।
3: सुना तुमने?
4: क्या?
3: पूरे देश में लोगों ने कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया है।
4: हैं?
3: अब हमारे कुंवर सिंह क्या करेंगे?
4: मेरा तो मन कहता है कि कुंवर सिंह लड़ेंगे, वो समझौता करने वालों में से नहीं है।
3: ठीक कहते हो भाई। अभी देखा नहीं, जब पीर अली की मजार पर गए थे तब उनका मन कितना भारी हो गया था। अमर सिंह तो एकदम गुस्से में थे।
4: हाँ, मुझे भी लगता है कुंवर सिंह जरूर लड़ेंगे, कोई साथ दे या ना दे।
0: कुंवर सिंह चार भाई थे, वो सबसे बड़े थे। दूसरे भाई का नाम दयाल सिंह और तीसरे का नाम राजपति सिंह। अमर सिंह उनके सबसे छोटे भाई थे, वे हमेशा उनके साथ रहते थे। जब दानापुर की 40वीं देशी पलटन के सिपाहियों ने विद्रोह किया तो जगदीशपुर के लोग एकजुट हो गए। दानापुर के विद्रोही सिपाही नेता हरकिशन सिंह की चारों ओर चर्चा होने लगी।
5: बड़ बहादुर वा हरकिशन वा, अरे कैसे दानापुर में अंग्रेजन के छक्का छुड़ा दे। अरे का हो, अब हमार कुंवर सिंह का करें?
6: अरे सुने में आयल बा कुंवर सिंह के सब खबर हो गई बा, कभो कुछ हो सके ना। हाँ,
7: ऐसा करना चाहिए कि जिसके बारे में जाने
3: सब। हुजूर, अभी अभी खबर मिली है कि दानापुर की देशी पलटन ने विद्रोह कर दिया है, अंग्रेजों से सिपाही लड़ते हुए आरा की ओर बढ़ रहे हैं, हमें क्या आदेश है?
8: क्या कहते हो अमर सिंह? ये बड़ी मुश्किल की घड़ी है, सिपाहियों का मनोबल बढ़ाना जरूरी है। हमारे जाबाज अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपकी क्या राय है?
4: भैया, सभी अंग्रेजों से मुक्ति चाहते हैं और समय आ गया है अंग्रेजों से दो दो हाथ हो जाएं।

0: काफी समय से कैप्टन डनवर हमारे किसानों पर अत्याचार कर रहा है। अंग्रेज सैनिक हमारी खड़ी फसलों को रौंद देते हैं।
1: ठीक कहते हो अमर सिंह। रहीम खान
2: जी हुजूर,
1: सिपाहियों को संदेश भेजो कि हमसे आरा कोठी में मिले।
2: जी हुजूर।
1: तो ठीक है, आरा चलने की तैयारी करो।
3: छब्बीस जुलाई 1857, आरा में कुंवर सिंह की कोठी। चारों ओर सैनिकों की चहलकदमी। दानापुर से आए सैनिकों के सामने कुंवर सिंह खड़े हैं।
1: सैनिक भाइयों और बहादुर साथियों, अब समय आ गया है कि हम कंपनी की गुलामी की जंजीरें काटकर फेंक दें। आप सब ने विद्रोह करके हिम्मत और साहस का परिचय दिया है। हरकिशन सिंह और रंजीत राम दोनों बहादुर सिपाही हैं। इनका युद्ध करने का कौशल और क्षमता सबसे उत्तम है। ये दोनों सैनिकों का नेतृत्व करेंगे। आगे बढ़िए, सबसे पहले हमें अंग्रेजों को आरा से बाहर निकालना है, फिर पूरे देश से। मैंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और बेगम हजरत महल को खबर भिजवाई है। शीघ्र ही हम सारे देश में एकजुट होकर लड़ेंगे।
4: कुंवर सिंह जिंदाबाद, अमर सिंह जिंदाबाद, हरकिशन सिंह जिंदाबाद, कुंवर सिंह जिंदाबाद, रंजीत राम जिंदाबाद।
3: सैनिकों के नारों से आरा कोठी का प्रांगण गुंजायमान हो उठा। सैनिकों की चहल पहल बढ़ गई। तभी सैनिकों की तरफ से हरकिशन सिंह आगे बढ़े और कुंवर सिंह की बगल में आ खड़े हुए। अदब से उन्हें सलामी देते हुए वो सैनिकों की तरफ मुखातिब हुए।
5: साथियों, आप सबने दानापुर में अंग्रेजी फौजों और अफसरों के द्वारा किया गया शोषण और दमन देखा है। उनके यहाँ रहते हुए हम स्वाधीन नहीं है। हमारे किसान भाई कर्ज के बोझ

0: कहा जाता है कि कुंवर सिंह और हरकिशन सिंह के भाषण का सिपाहियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। 27 जुलाई को कुंवर सिंह के नेतृत्व में देशी सिपाहियों ने अंग्रेजी फौजों की आरा में घेराबंदी की। लड़ाई जमकर हुई। कई अंग्रेज सैनिक लड़ाई में मारे गए। कुंवर सिंह ने कैप्टन डनवर की फौज को पराजित किया। इतिहास में इसे कुंवर सिंह द्वारा आरा फतेह के नाम से जाना जाता है।
1: अंग्रेजी फौजों ने दोबारा तैयारी की और कुछ ही दिनों बाद मेजर आयर के कमांड में बीबीगंज के स्थान पर एक और युद्ध हुआ। कुंवर सिंह को अपने सिपाहियों के साथ जगदीशपुर लौटना पड़ा। 12 अगस्त को एक घमासान युद्ध हुआ। कुंवर सिंह की सेना पराजित हुई। चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। कुंवर सिंह और उनके सिपाहियों को जगदीशपुर छोड़ना पड़ा। फिर फौज संगठित की। देश को आजाद कराने के लिए नौजवान स्वयं फौज में आगे आए। लोगों का जोश देखकर मिर्जापुर, रीवा,

0: बांदा और कानपुर आदि स्थानों पर अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए कुंवर सिंह की सेना लखनऊ पहुंची।
1: कुंवर सिंह
2: जिंदाबाद!
1: कुंवर सिंह
2: जिंदाबाद!
1: भारत माता की
2: जय!
1: भारत माता की
2: जय!
0: लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कुंवर सिंह और उनके सहयोगियों का जोरदार स्वागत किया।
3: अल्लाह की मेहरबानी से आज हमारे बीच शाहबाद के बाबू कुंवर सिंह मौजूद हैं। इन्होंने अंग्रेजी फौज को कई जगह बड़ी शिकस्त दी है। अंग्रेज हुक्मरान इनसे घबराते हैं। हमने कुछ फैसले लिए हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करें। खुदा जानता है कि आजमगढ़ से अंग्रेजों को हटाना कितना मुश्किल काम था। हम आजमगढ़ की मिल्कियत बाबू कुंवर सिंह के सुपुर्द करते हैं।
4: आमीन। खुदा आपकी मुराद पूरी करे।
3: हम चाहते हैं कि बाबू कुंवर सिंह आजमगढ़ के बाकी इलाकों से अंग्रेजों को निकालकर बाहर करें।
5: बेगम साहिबा, आपके इस सम्मान से हम आपके एहसानमंद हैं। आपने एक नई जमीन दी है। अल्लाह को मंजूर होगा तो हम आजमगढ़ से भी अंग्रेजों को निकाल बाहर करेंगे।

ये एक ऐतिहासिक क्षण था। जगदीशपुर पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। कुंवर सिंह को एक नई रियासत का मालिकाना हक देकर बेगम हजरत महल ने उन्हें राज सम्मान प्रदान किया था। कहते हैं कि वहीं से लोग कुंवर सिंह को राजा कुंवर सिंह के नाम से संबोधित करने लगे। कुंवर सिंह ने बेगम हजरत महल के विश्वास को नहीं तोड़ा। 17 मार्च को कुंवर सिंह और देशी सिपाहियों की टुकड़ियां अतरौलिया के मैदान में इकट्ठा हुईं। 22 मार्च को आजमगढ़ जिले में तैनात कर्नल मिलमैन ने कुंवर सिंह के सिपाहियों पर भारी हमला किया।

0: अतरौलिया का मैदान सिपाहियों के खून से लथपथ हो गया। छब्बीस मार्च को मिलमैन को पराजित करते हुए कुंवर सिंह ने आजमगढ़ और अन्य इलाकों पर कब्जा कर लिया।
1: आजमगढ़ पर विजय के बाद कुंवर सिंह जगदीशपुर लौटने लगे। रास्ते में ब्रिगेडियर डगलस की सेना के साथ घमासान युद्ध हुआ। ब्रिगेडियर डगलस की हार हुई। अंग्रेजी सेना फौजी सामान छोड़कर भाग गई। दूसरी ओर जनता ने राजा कुंवर सिंह का स्वागत किया।
2: अरे देखो देखो, अरे घोड़े पर सवार होकर हमारे राजा कुंवर सिंह कैसे जा रहे हैं।
1: कुंवर सिंह गाजीपुर पहुंचे पर डगलस ने उनका पीछा जारी रखा। कहा जाता है शिवपुर घाट से गंगा नदी पार करते हुए राजा कुंवर सिंह की दाहिनी बांह में गोली लगी।

0: जिसे बाएं हाथ की तलवार से काट कर उन्होंने गंगा में बहा दिया।
1: लो मां गंगे, आज तुझको ही देता हूं ये।
0: दुश्मन तट पर पहुंच गए जब कुंवर सिंह करते थे पार। गोली आकर लगी बाह में, दाया हाथ हुआ बेकार। हुई अपावन बाहुजान, बस काट दिया लेकर तलवार। ले गंगे ये हाथ, आज तुझको ही देता हूं उपहार। वीर भक्त का वही जाह्नवी को मानो नजराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था।
2: कहते हैं कुंवर सिंह को अपना हाथ काटते देख ब्रिगेडियर डगलस अवाक रह गया।
3: ओह माय गॉड, देखाओ शाहबाद खबर करो कि कुंवर सिंह नदी पार कर गया है।
4: यस सर।
2: घायल अवस्था में कुंवर सिंह जगदीशपुर पहुंचे। कंपनी ने 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में तोपों से लैस एक बड़ी फौज जगदीशपुर भेजी। ये 1857 के संग्राम का चरम सीमा

स्मृतियां दर्ज हैं। वहां के लोक गीतों के वे नायक हैं। ऐसे नायक बार बार जन्म नहीं लेते।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम वीर कुंवर सिंह, और आइए अब सुनते हैं ओज और वीर रस से परिपूर्ण सुंदर कविता वीर तुम बढ़े चलो।
1: हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि द्वारका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित ये कविता बच्चों और युवाओं को साहस, संकल्प और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां और प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों न हों।
0: जी,

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वीर तुम बढ़े चलो। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग।

श्रोताओं ने आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आप आनंद लेंगे हमारे केंद्र से नए फिल्मी गीतों का। गीतों की शुरुआत हम करने जा रहे हैं फिल्म महादेव का गोरखपुर। गायक कलाकार हैं अगम अग्रवाल। गीत रचना ऐश्वर्य शर्मा ने किया है, संगीत दिया है अगम अग्रवाल और चेतन प्रजापति ने।

अभिनव शेखर और प्रदीप दश गुप्ता की आवाज में भी अब सुने थे फिल्म मिस्ट्री ऑफ द टैटू का यह गीत। गीत और संगीत अभिनव शेखर के थे। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म मिशन मंजू से। गायक कलाकार हैं जुबिन नौटियाल, गीत लिखा है शब्बीर अहमद ने, संगीत दिया है तनिष्क बागची ने। आइए सुनते हैं मिशन मंजू फिल्म का यह गीत।

आइए सुनते हैं अगला गीत इसे फिल्म से। गायक कलाकार हैं राज बर्मन, राघव सचर, गीतकार रोहित शर्मा, संगीतकार राघव सचर।

हरजोत कौर को भी आप सुन रहे थे फिल्म द फैमिली स्टार में। गीतकार रश्मि विराग और संगीत निर्देशन गोपी सुंदर ने किया था। श्रोता, अगला गीत मैं आपको सुनाने जा रही हूं विशाल मिश्रा और पलक मुचल की आवाज में फिल्म वनवास से। गीत रचना शहीद कादरी ने की है और संगीत दिया है विशाल मिश्रा ने।

फिल्म रास में भी आप सुन रहे थे विशाल मिश्रा और पलक मुछल को। इसी के साथ नए फिल्मी गीतों का सिलसिला अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है सखी बहनों का कार्यक्रम नारी संसार।

नारी संचार कार्यक्रम सुनने वाली समस्त श्रोता बहनों को अपनी रेडियो सखी लालती का प्यार भरा नमस्कार। प्यारी बहनों, आज सोमवार के दिन आपका अपने ही पसंदीदा कार्यक्रम में स्वागत है। साथ ही नव विवाहितों के लिए खासकर परम पुनीत और अखंड सौभाग्य के प्रतीक मधुश्रावणी व्रत की हार्दिक शुभकामना। जैसा कि आप जानती हैं बहनों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे जुड़ते हैं मधुर फिल्म संगीत एवं समसामयिक मुद्दों पर चर्चा लेकर। तो सदा की भांति आज भी हम मीठी मीठी बातें करेंगे, जिसका विषय होगा महिला और परिवार, जिम्मेदारियों के बीच खुद को ना भूलें। श्रोता बहनों, एक महिला परिवार की धुरी होती है। वह बेटी बनकर स्नेह देती है और पत्नी बनकर साथ निभाती है, माँ बनकर ममता लुटाती है तथा बहू बनकर एक नए परिवार को अपना बना लेती है। इन रिश्तों को निभाते निभाते अक्सर महिला अपनी इच्छाओं, सपनों और जरूरतों को पीछे रख देती है। श्रोता बहनों, परिवार की खुशी महत्वपूर्ण है, लेकिन उस खुशी की कीमत खुद को खो देना नहीं होनी चाहिए। परिवार का ध्यान रखते हुए अपने मन

की आवाज़ सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अपने लिए थोड़ा समय निकालना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है बहनों। इसलिए कभी कभी खुद के लिए भी समय निकालना चाहिए, जैसे कोई किताब पढ़ना, अपने पसंद का कार्य करना, दोस्तों से बात करना, कुछ नया सीखना या कुछ देर शांति से बैठना। ये छोटी छोटी बातें महिलाओं को अपने से जुड़े रखती हैं। श्रोता बहनों, हर एक महिला को यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी पहचान केवल किसी की पत्नी, माँ, बेटी या बहू होने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारा अपना भी एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है, जिसमें हमारे सपने हैं, हमारी पसंद है और हमारी एक अलग पहचान है। श्रोता बहनों, कोई भी परिवार वास्तव में तभी सुखी हो सकता है जब उसकी देखभाल करने वाली महिला भी अंदर से खुश और संतुष्ट हो। इसलिए बहनों, जिम्मेदारियों को भी निभाइए, रिश्तों को भी संभालिए और अपना भी ध्यान भरपूर रखिए। अपने लिए जीना परिवार से दूर जाना नहीं है बहनों, बल्कि स्वयं को संभालकर परिवार को और मजबूत बनाना और बेहतर ढंग से संभालना है। तो बहनों, आगे फिर हम इस कार्यक्रम में आपसे बातें करेंगे। आइए अब हम आपको ले चलते हैं संगीत की दुनिया में, सुनवाते हैं प्यारा सा फिल्म संगीत।

श्रोता बहनों, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नारी संचार और मैं आपकी रेडियो सखी लालती। बहनों, अब हम जिस विषय पर बातें कर रहे हैं उसका शीर्षक है काकोरी हत्याकांड। श्रोता बहनों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में काकोरी हत्याकांड एक ऐसी घटना है जिसने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की। यह घटना ब्रिटिश शासन को चुनौती देने और स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत क्रांतिकारियों को अधिक संसाधन उपलब्ध कराने का एक साहसिक प्रयास था। श्रोताओं, 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने लखनऊ के निकट काकोरी रेलवे स्टेशन के पास एक ट्रेन को रोककर उसमें ले जाया जा रहा सरकारी खजाना लूट लिया। इस कार्रवाई का नेतृत्व रामप्रसाद बिस्मिल और उसके साथियों ने किया था। श्रोताओं, क्रांतिकारियों का उद्देश्य यात्रियों को लूटना नहीं बल्कि अंग्रेज सरकार का धन हासिल करना था। काकोरी कांड ने भारतीय युवाओं में देशभक्ति और क्रांतिकारी चेतना को मजबूत किया। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत के युवा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने के लिए तैयार है। श्रोताओं, इस घटना के सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से

एक थी हिंदू मुस्लिम एकता। यह मित्रता और बलिदान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का साझा राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बन गया। स्वतंत्र काकोरी हत्याकांड के बाद क्रांतिकारी आंदोलन ने आगे चलकर नए रूप में गति प्रदान की। इसी परंपरा ने आगे चलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जैसे संगठनों और भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों को प्रभावित किया। तो बहनों, काकोरी हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में के इतिहास में साहस, त्याग और देशभक्ति का प्रतीक है। तो श्रोताओं, आगे अब हम आपको सुना रहे हैं छोटी मुलाकात आधारित वार्ता।

0: नमस्कार, मैं हूँ रजनी। आज हम बात कर रहे हैं जीवन में संतुष्टि सबसे आवश्यक है के विषय पर। किसी भी व्यक्ति के जीवन में संतुष्टि या संतोष आवश्यक है। जिस मनुष्य के पास संतोष नहीं है, पूरे जीवन में उनके पास कभी भी किसी भी चीज की पूर्ति संभव नहीं है। संस्कृत में कहा जाता है संतोषम परम सुखम, अर्थात संतोष परम सुख की जननी होती है। जिस व्यक्ति के पास संतोष होता है, वही व्यक्ति आगे चलकर किसी भी चीज में हर हमेशा खुश दिखाई देता है। धार्मिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या फिर अन्य क्षेत्र, जिसके पास संतुष्टि या संतोष नहीं होता है वह हमेशा दुखी रहता है। व्यक्ति को ईश्वर से जो भी मिलता है उसके भाग से मिलता है, तो हर हमेशा उस पर खुश रहना चाहिए। ईश्वर का आभार मानकर संतुष्ट रहना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों को सारी सुख सुविधाएं धन दौलत होने के बाद भी वह गरीबी का रोना रोते रहते हैं, जो कहीं ना कहीं असंतोष निशानी होती है। असंतोष तो कतई न होना चाहिए। हमें हर समय भगवान से प्राप्त धन और ऐश्वर्य को अधिक ही मानना चाहिए, संतोष कर लेना चाहिए। जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे तब तक मन विचलित रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति के मन में विकास की आकांक्षा होती है, यह गलत भी नहीं है। वह सफल और सार्थक जीवन जीना चाहता है। कोई भी निरर्थक और विफल जीवन जीना पसंद नहीं करता है, पर सफल जीवन जीने के लिए कितना प्रयत्न और पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसकी यदि तैयारी हो तो सफलता निश्चित मिल सकती है। यदि वह तैयारी नहीं है तो सफलता की आकांक्षा छोड़नी होगी। विश्व में उन लोगों का इतिहास पढ़ना चाहिए जिन्होंने अपने प्रयत्न से मानव के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की है। हर युग में ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो कोई भी समय ऐसे लोगों से वंचित नहीं रहा है। उनकी राह आसान नहीं थी, सफलता उन्हें तुरंत नहीं मिली, बहुत परिश्रम किया तब जाकर मेहनत हुई, मेहनत सफल हुई और एक बदलाव आया। हमारे लिए आवश्यक क्या है और अनावश्यक क्या है, यह हमें तय करना होगा। एक आदमी को रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा 3-4 कमरे वाला मकान चाहिए, जिसमें रसोई और स्नानागार हो। हमने देखा है कि 3 या 4 सदस्यों का परिवार या मकान 3 मंजिला, उद्देश्य और मतलब अपनी संतुष्टि के लिए वह अपना कमरा रोज बदले, और इसमें सार्थकता कुछ भी नहीं। सोने के लिए एक कमरे में 6 फुट लंबाई वाली एक चारपाई ही पर्याप्त है। लेकिन आदमी अगर समर्थ है तो उसे संतोष कहाँ। बड़ी बिल्डिंग उसके अहंग को पोषण देती है, उससे एक अव्यक्त सुख मिलता है, लेकिन इससे कोई समस्या तो हल नहीं होती। जिनके पास जरूरत से ज्यादा है उनसे पूछ कर देखें कि क्या वे संतुष्ट है। उत्तर नकारात्मक ही मिलेगा। सुख और शांति के लिए बहुत जरूरी है कि हम विकास की आज की प्रचलित अवधारणा पुनर्विचार करें। खुशी से जीवन यापन कर सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, अतिथियों का सत्कार जिसमें हो सकता है उतना ही काफी है जीने के लिए। तो जीवन में संतुष्ट रहिए, खुश रहिए।
1: श्रोता बहनों, अभी आप भेंटवार्ता सुन रही थी रजनी कुमारी से। बहनों, अब हम आपसे बातें करते हैं। विषय है बदलते मौसम में रखें सेहत का ध्यान।

खासकर बच्चों के। श्रोताओं, मौसम का बदलना प्रकृति का सामान्य चक्र है, लेकिन तापमान में अचानक होने वाला बदलाव हमारी सेहत को प्रभावित कर सकता है। खासकर बच्चे बदलते मौसम में सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, गले में खराश और एलर्जी जैसी समस्याओं के चपेट में जल्दी आ जाते हैं। इसलिए बहनों, इस समय अपने सेहत के साथ साथ बच्चों के सेहत, बूढ़े की सेहत के प्रति भी थोड़ी सी अधिक सावधानी की जरूरत है। प्यारी बहनों, बदलते मौसम में बच्चों को मौसम के अनुसार कपड़े पहनाएं। बहुत अधिक गर्म कपड़े पहनाने या अचानक ठंडे वातावरण में ले जाने से बचें। उनके कमरे में पर्याप्त वेंटिलेशन रखें और धूल, धुएं तथा प्रदूषण से यथासंभव दूर रखें। प्यारी बहनों, बच्चों के खान पान पर भी विशेष ध्यान दें। उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी और पौष्टिक भोजन दें। मौसमी फल, हरी सब्जियां, दालें और घर का ताजा भोजन उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में मदद करते हैं। श्रोताओं, बहुत अधिक तला भुना तथा पैकेज्ड भोजन से बचना सेहत के लिए फायदेमंद है। सेहत के लिए स्वच्छता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बहनों, बच्चों को नियमित रूप से हाथ धोने की आदत डालें और खांसते या छींकते समय मुंह ढकने के लिए प्रेरित करें। बहनों, पर्याप्त नींद और थोड़ी शारीरिक गतिविधि भी बच्चों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यदि बच्चे को लगातार तेज बुखार, सांस लेने में कठिनाई, अत्यधिक सुस्ती, पानी की कमी के लक्षण या कोई अन्य गंभीर परेशानी दिखाई दे तो चिकित्सक की सलाह अवश्य लेना चाहिए। श्रोता बहनों, बदलते मौसम में थोड़ी सी सावधानी बच्चों को कई परेशानियों या मौसमी बीमारियों से बचा सकती है। हमारे बच्चे तभी खिलखिलाकर हंसते हैं जब हम उनका स्वास्थ्य अच्छा रखते हैं, और बच्चे जब खुश रहते हैं तो हम भी उसके साथ खुश रहते हैं। तो बहनों, क्यों ना हम और हमारे बच्चे दोनों खुश रहें। तब आगे चलते चलते हम पुनः आपको ले चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में, सुनवाते हैं ये प्यारा सा फिल्म संगीत।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। अब लालती को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में विपक्ष के शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति, योग्यता में एक रूपता तथा प्रशासन और कामकाज में कुशलता बढ़ाने, स्वतंत्रता पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे, लेकिन सदन में लगातार नारेबाजी के कारण कार्यवाही पहले 12 बजे फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च किया। सरकार का दावा है कि विद्यार्थियों की 98% मांगे स्वीकार कर ली गई हैं। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुरानी विधानसभा के पास पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी और नई विधानसभा की ओर बढ़ते रहे। रांची में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 विद्यार्थी अब भी अनिश्चितकालीन अनशन है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं। इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। 42,000 से अधिक स्टार्टअप भी पोर्टल पर पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने डिजिटल खरीद के माध्यम से जवाबदेही मजबूत की।

है। भारत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट से अधिक हो गई है। 31 जुलाई तक हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष के समारोहों का प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी में वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता

0: अपील की है। आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी में वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशिष्ट प्रजातियों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस आलेख में कहा है कि वर्ष 2015 में 523 शेरों की संख्या बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है। इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। उन्होंने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ नारे लगाए और नागरिक संगठन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 112 अंक बढ़कर 78,611 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:05 हो रहे हैं। अब आप जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे केंद्र से होने वाले आज के आगामी कार्यक्रमों के संदर्भ में।

श्रोताओं 1:10 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से देशभक्ति गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्मी गीतों का आनंद लेंगे श्रोता दोपहर काल में 1:15 पर। रोजगार सूचना हम आपको सुनवाएंगे दोपहर 2:10 पर।

दोपहर 2:30 पर पुनः पाना ले सकेंगे फिल्मी गीतों का। दिन के 3 हम आपको सुनवाएंगे लोकगीत। संध्या 5 आप सुनेंगे युवा को संबोधित कार्यक्रम युवाणी। युवाणी के अंतर्गत श्रोता सुनेंगे तरुण कुसुम।

संध्या काल 7:50 पर आप आनंद लेंगे हमारे केंद्र से फिल्मी गीतों का। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे हम दिल्ली केंद्र से संसद समीक्षा। 8:15 पर आप सुनेंगे मैथिली साहित्य का कार्यक्रम सिंगर हार। रात्रिकाल 10:00 आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। 11:10 पर सभा की समाप्ति होगी। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यही समाप्त होता है।

संध्या काल में श्रोता आनंद लेंगे फिल्मी गीतों का। विद्यापति गीत आप सुनेंगे शाम 6:10 पर। संध्या 6:30 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से कार्यक्रम गांव घर। गांव घर के अंतर्गत श्रोता सुनेंगे अनुभव के

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रस्तुत होने वाले आज के कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

फिल्म स्वर्ग से सुंदर का गीत। गीत रचना आनंद बख्शी ने किया है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुने थे फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का यह गीत। गीत रचना, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किया था। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर उनके साथियों की आवाज़ में फिल्म पारख से। गीत रचना शैलेंद्र की है, संगीत दिया है सलील चौधरी ने।

शंकर जय किशन के संगीत निर्देशन में गाए इस गीत को अभी आप सुन रहे थे फिल्म मयूर पंख से। गीत रचना शैलेंद्र की थी। गायक कलाकार लता मंगेशकर और आशा भोसले। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म ये कली से। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। गायक कलाकार लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी।

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म ऊंचे लोग में। गीतकार मजहूर सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म पगला कहीं का से। गीत रचना हसरत जयपुरी ने किया है और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे फिल्म आन मिलो सजना से। गायक कलाकार लता मंगेशकर और किशोर थे। संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किया था। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं समझौता से, मोहम्मद रफी और मुकेश की आवाज में। गीत रचना इंदिवर की है और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

मुकेश और मोहम्मद रफीक को अभी आप सुन रहे थे फिल्म समझौता में। इसी के साथ फिल्मी गीतों का सफर अब यहीं समाप्त होता है। अब समय हो चला है प्रादेशिक समाचार और इलाकाई खबरों का।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में निकाली गई यह यात्रा गांधी मैदान स्थित जेपी कोलंबर से शुरू हुई और करगिल चौक के पास समाप्त हुई। 1.5 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य, विधायक और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों

0: अतिक्रमण पूरी होने के बाद ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। श्री प्रकाश ने कहा कि फिलहाल पंचायत चुनाव की समय सीमा तय करना संभव नहीं है। प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 के विरोध में राज्य के सभी सरकारी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के 12,000 से अधिक शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी सामूहिक अवकाश पर हैं। ये सभी विश्वविद्यालय मुख्यालय पर अपनी मांगों के समर्थन में धरना दे रहे हैं। शिक्षक संगठनों ने प्रस्तावित अधिनियम से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए सरकार से पुनर्विचार की मांग की है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आज सावन की दूसरी सोमवारी है। इस अवसर पर मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चार से गुंजायमान है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ, मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ, सोनपुर के हरियरनाथ, रोहतास के गुप्ताधाम जाना

से गुंजयमान है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ, मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ, सोनपुर के हरियरनाथ, रोहतास के गुप्ता धाम, जहानाबाद के वाणावर, पटना के बैकटपुर धाम, लखीसराय के अशोक धाम, मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, सुपौल के तिलेश्वर स्थान और सहरसा के मटेश्वरनाथ मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना कर जलाभिषेक कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में पहली बार कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी हिस्सों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। पूर्णिया के श्रीनगर में सबसे अधिक 58.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन ने जिला प्रशासन और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान की शुरुआत की। 20 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के तहत लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई जाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

बारिश की गई। इधर भागलपुर के सुल्तानगंज में बड़ी तादाद में कांवरिया उत्तरवाहिनी गंगा का जल उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये कांवरिया 105 किलोमीटर से जायद की दूरी तय करके झारखंड के देवघर वाके बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। रियासत में मानसून की सरगर्मी से बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है। महकमा मौसमियात से मिली इत्तला के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के शुमाली हिस्सों में कई मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश हुई है। पूर्णिया के श्रीनगर में सबसे ज्यादा 58.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पेशगोई में कहा गया है कि आज रियासत के जनूबी हिस्सों में कई मकामात पर तेज हवा के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान बर्फबारी की भी वार्निंग जारी की गई है। अररिया के जिला मजिस्ट्रेट विनोद दुहन ने जिला इंतजामिया और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ऐश्वर्य यूनिवर्सिटी के मुश्तरका ज़ेरे एहतमाम नशा से पाक अजाइम मुहिम की शुरुआत की। 20 अगस्त तक चलने वाली इस मुहिम के तहत लोगों को नशा से पाक करने का हलफ दिलाया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:10 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से रोजगार सूचना।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई में कुल 395 पद निकाले हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 1 सा 2026 थी और आवेदन जमा होने की अंतिम तिथि 10/8/2026 यानी आज। इस पद के लिए आवेदक की न्यूनतम उम्र सीमा 25 साल और अधिकतम उम्र सीमा 50 साल। पद का नाम एसओ। श्रोताओं, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च IGCAR ने कुल 200 पद निकाले हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 20/7/2026 थी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19/8/2026 है। इस पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम 24 वर्ष। इस पद की विस्तृत जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.igcar.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। NRF रेलवे ने कुल 6,777 पद निकाले हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 20/7/2026 रखी गई थी और आवेदन जमा होने की अंतिम तिथि 19/8/2026 है। इस पद के लिए आवेदक की उम्र सीमा 15 वर्ष न्यूनतम रखी गई है और अधिकतम 24 वर्ष। इस पद की विस्तृत जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.nfrrequirement.in पर जाकर देख सकते हैं। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए कुल पद 163 रखे गए हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 22/7/2026 और आवेदन जमा होने की अंतिम तिथि 10/8/2026 है। इस पद के लिए आवेदक की न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम 40 वर्ष। आवेदक इसकी विस्तृत जानकारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट hcraj.nic.in पर आप जाकर देख सकते हैं। रोजगार सूचना समाप्त हुई।

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब समय हो चला है दोपहर समाचार का, जिसका प्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे। कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील, गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया, 3 अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च, हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कहा कि सरकार विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
2: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
1: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की थी।
3: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, अब सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे ना।
1: इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया गया। दिन के 12 बजे तक स्थगित रहने के बाद सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता तथा नियुक्ति में एक रूपता सुनिश्चित करने और प्रशासन तथा कामकाज में कुशलता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खदान और खनिज विकास तथा नियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक 1957 के संबंधित अधिनियम में संशोधन करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम संशोधन विधेयक 2026 सदन के समक्ष रखा। ये विधेयक केरल राज्य के नाम में परिवर्तन का प्रावधान करता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसके माध्यम से 1962 के संबंधित अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संबंधित हितधारकों से परामर्श पूरा होने के बाद राष्ट्रीय

0: विद्युत नीति 2026 का मसौदा अंतिम रूप देने के चरण में है। फिलहाल दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। केंद्रीय मंत्री और रांची से सांसद संजय सेठ ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच का आदेश देने में राज्य सरकार की अनिच्छा पर सवाल उठाया है। संसद भवन परिसर में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री सेठ ने कहा कि यदि विद्यार्थी ये परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वे इससे मानने से क्यों इनकार कर रही है।
1: छात्र अडिग हैं कि हम तो जाएंगे और विधानसभा घेरेंगे। कई मांग है कि CBI जांच करा दो और JSSC के एग्जाम कैंसिल करा दो, जो दोषी है उनको पकड़ो और ED जांच करा दो। सरकार को क्या आपत्ति है।
0: भाजपा सांसद तरुण चुघ ने विपक्ष के कुछ नेताओं पर झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को जानबूझकर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये नेता इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन है, जबकि राज्य में उनके गठबंधन सहयोगियों की सरकार है।
2: मेरा निवेदन है कि छात्रों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए और मेरा सभी से निवेदन है, आंदोलन हम सबका राइट है, सत्याग्रह हम सबकी ताकत है, लेकिन हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।
0: उधर झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में जारी विद्यार्थी आंदोलन का आज 17वां दिन है। विद्यार्थी विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
3: JPSC JSSC रिफॉर्म मंच के नेतृत्व में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने तथा कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन छात्र अपनी प्रमुख मांगों पर अड़े हुए हैं। मार्च के दौरान छात्रों ने पुरानी विधानसभा के पास बैरिकेडिंग पार की और 7वें तथा आखिरी बैरिकेडिंग तक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 छात्र अब भी अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। 3 JPSC सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन और तेज हुआ है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
4: श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। मंत्रालय ने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में राष्ट्रगीत का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करेगी। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कश्मीर के सभी जिलों में तिरंगा यात्राएं और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
5: अभियान की शुरुआत के साथ ही पुलवामा के त्राल इलाके, अनंतनाग, बारामुल्ला और कई दूसरी जगहों पर तिरंगा यात्राएं निकाली गई, जिनमें युवाओं, छात्राओं, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया। श्रीनगर में भी इस अभियान के तहत एक बड़ी तिरंगा रैली की तैयारी चल रही है। कश्मीर भर में जिला प्रशासन आने वाले दिनों में कई तिरंगा यात्राएं और जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। स्थानीय लोग भी इस अभियान के तहत तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उत्साहपूर्वक इसमें भाग ले रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए

0: मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज राजधानी पटना में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
2: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गांधी मैदान स्थित जेपी सर्कल से शुरू यह यात्रा कारगिल चौक के पास समाप्त हुई। यात्रा में स्कूली बच्चों, एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स और आम लोगों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। इस दौरान पूरा शहर तिरंगे के रंगों में सराबोर होने के साथ ही वंदे मातरम और हर घर तिरंगा के नारों से गुंजायमान रहा। इधर तिरंगा यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से इस अभियान के तहत जिला, नगर निकाय और पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली यात्राओं में शामिल होने का आग्रह किया। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उधर नागालैंड के कोहिमा में आज भारतीय जनता पार्टी की नागालैंड इकाई ने हर घर तिरंगा दोपहिया रैली का आयोजन किया। अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं, इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ, असम और मेघालय में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में कल तक बिजली चमकने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा आज शाम दिल्ली के कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन से राज्य के कई हिस्सों में 100 से अधिक सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
3: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक क्षेत्रों में रुक रुक कर हल्की वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, सिरमौर, मंडी और कुल्लू में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के चेतावनी के मद्देनजर लोगों को एहतियात बरतने और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इस बीच भारी वर्षा से हुए भूस्खलन के कारण राज्य में 100 से अधिक सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जबकि 255 बिजली ट्रांसफार्मर और लगभग 20 पेयजल परियोजनाएं भी प्रभावित हैं। कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी से वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशेष प्रजातियों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। श्री भूपेंद्र यादव ने अपने आलेख में कहा है कि वर्ष 2015 में 523 शेरों की संख्या बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
4: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
1: इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। दुनिया के विभिन्न देशों में कश्मीरी प्रवासी समूहों के ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक बढ़कर 78,585 जबकि निफ्टी 28 अंक

की बढ़त के साथ 24,599 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील, गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया, 3 अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च, हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और आज विश्व सिंह दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:30 हो रहे हैं। पुनः हम आपको लिए चलते हैं अपने फिल्मी गीतों के सफर पर। सफर का पहला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं फिल्म मिलन से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और मुकेश। गीत रचना आनंद बख्शी की है, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आनंद मिलिंद के संगीत निर्देशन में गाए इस गीत को अभी आप सुन रहे थे फिल्म आई मिलन की रात से। गीत रचना समीर ने की थी। गायक कलाकार अनुराधा पौडवाल और

मोहम्मद अजीज। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म जुर्माना से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार एसडी बर्मन।

जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा की आवाज में भी आप सुन रहे थे फिल्म सावन को आने दो का यह गीत। संगीत निर्देशन राजकमल ने किया था और गीत लिखा था घूमर कानपुरी ने। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म बिन बुलाए बराती से। गायक कलाकार हैं शान गौरीशा, गीतकार आनंद राज आनंद, संगीत भी आनंद राज आनंद के हैं।

टोनी कक्कर के गीत और संगीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म क्रीचर का यह गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। इसी के साथ फिल्मी गीतों का सफर अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीत कलाकार हैं राखी कुमारी, आइए इनसे सुनते हैं नचारी।

राखी कुमारी के स्वर में भी आप सुन रहे थे लोकगीत के अंतर्गत नचारी। आइए सुनते हैं इन्हीं की आवाज में अगला लोकगीत देवी गीत।

श्रोता राखी कुमारी के सुर में भी आप सुन रहे थे लोकगीत। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3:20 हो रहे हैं। यह सभा यही समाप्त होती है। पुनः हम उपस्थित होंगे अपने आगामी कार्यक्रम के साथ संध्या 5:00। तब तक के लिए दीजिए अनुमति।

यूं भी उसे देर से उतरता था, पर लड़कों की बेर उसे नाना प्रकार की दूधवर्धक औषधियां खिलाई जाती, बार बार शिशु को छाती से लगाया जाता, यहां तक कि दूध उतर ही आता था। पर अब की ये आयोजनाएं न की गईं। फूल से बच्ची कुमलाती जाती थी, मां तो कभी उसकी ओर ताकती भी न थी। हां, लक्ष्मी कभी चुटकियां बजाकर चुमकारती तो शिशु के मुख पर ऐसी दयनीय, ऐसी करुण वेदना अंकित दिखाई देती कि वो आंखें पोंछती हुई चली जाती थी। बहू से कुछ कहने सुनने का साहस ना पड़ता था। बड़ा बेटा सिद्धू बच्चे को बाहर ले जाकर खिलाने के लिए बार बार जिद करता तो मां उसे झिड़क देती।

0: 3-4 महीने हो गए। दामोदर दत्त रात को पानी पीने उठे तो देखा कि बालिका जाग रही है। सामने ताख पर मीठे तेल का दीपक जल रहा था। लड़की टकटकी बांधे उसी दीपक की ओर देखती थी और अपना अंगूठा चूसने में मग्न थी। चुप चुप की आवाज आ रही थी। उसका मुख मुरझाया हुआ था, पर वो ना रोती थी ना हाथ पैर फेंकती थी। बस अंगूठा पीने में ऐसी मग्न थी मानो उसमें सुधा रस भरा हुआ है। वो माता की ओर मुंह भी ना फेरती थी मानो उसका उन पर कोई अधिकार नहीं, उसके लिए वहां कोई आशा नहीं। बाबू साहब को उस पर दया आई।
1: अरे बच्चे, कितनी प्यारी है गुड़िया। इस बेचारी का मेरे घर जन्म लेने में क्या दोष है? मुझ पर या इसकी माता पर जो कुछ भी पड़े उसमें इसका क्या अपराध? हम कितनी निर्दयता कर रहे हैं। कुछ भावी अनिष्ट की आशंका के कारण उसका इतना तिरस्कार कर रहे हैं। माना कि कुछ अमंगल हो भी जाए तो क्या उसके भय से इसके प्राण ले लिए जाएंगे? अगर अपराधी है तो मेरा प्रारब्ध है। इस नन्हे से बच्चे के प्रति हमारी कठोरता क्या ईश्वर को अच्छी लगती होगी? आ जाओ गुड़िया, आ जाओ।
0: उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगे। लड़की को कदाचित पहली बार सच्चे स्नेह का ज्ञान हुआ। वो हाथ पैर उछालकर गुंगुंग करने लगी और दीपक की ओर हाथ फैलाने लगी। उसे जीवन ज्योति सी मिल गई।

0: यहाँ क्यों ले आए? पड़ी रहने दो ना वहीं पर। ऐसी कौन सी बड़ी सुंदर है? अब आगन कहीं की, रात दिन तो प्राण खाती रहती है, अब मर भी नहीं जाती कि जान छूट जाए।
1: अरे बस भी करो, मैं से बाहर ले जाता हूँ।
2: दामोदर दत्त उसे बाहर लाए और अपने बच्चों के साथ बैठकर खिलाने लगे। उसके मकान के सामने थोड़ी सी जमीन पड़ी हुई थी। पड़ोस के किसी आदमी की एक बकरी उसमें आकर चरा करती थी। इस समय भी वो चर रही थी। बाबू साहब ने बड़े लड़के से कहा,
1: सिद्धू सिद्धू जरा उस बकरी को पकड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ला ला ला ला ला, लाओ तेरी बहन को दूध पिलाएंगे, शायद भूखी है बेचारी। देखो तुम्हारी नन्ही सी बहन है ना, इसे रोज हवा में खिलाया करो।
2: सिद्धू को दिल लगी हाथ आई, उसका छोटा भाई भी दौड़ा। दोनों ने घेर कर बकरी को पकड़ा और उसका कान पकड़े हुए सामने लाए। पिता ने शिशु का मुंह बकरी के थन में लगा दिया। लड़की चुबलाने लगी और एक क्षण में दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी, मानो टिमटिमाते दीपक में तेल पड़ जाए। लड़की का मुंह खिल उठा, आज शायद पहली बार उसकी शुधा तृप्त हुई थी। वो पिता की गोद में हुमक हुमक कर खेलने लगी। लड़कों ने भी उसे खूब नचाया कुदाया।

कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। आज आपने सुना इस कहानी का पहला भाग। पिता का प्यार, भाइयों का दुलार मिलने से नन्ही बच्ची दिन ब दिन निखरती जा रही है। आगे क्या होता है इसके लिए सुनिए इस कहानी का दूसरा भाग। इसका दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। कहानी में भूमिका सहित पात्रों का परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार जी श्याम, वृद्ध दादी रेणु चतुर्वेदी, दामोदर दीपक के सावलेकर, दामोदर की स्त्री स्वप्निल श्रीवास्तव, लक्ष्मी चंचल वर्मा, बाल कलाकार प्रज्वल सिंह, वेदांत सिंह और रुद्र सिंह। प्रस्तुति अनुश्री पाठक, संकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: सोनाली, हमने बरखा फिल्म का ये गाना सुन लिया और उससे पहले हमने मुंशी प्रेमचंद की कहानी तेतर उसका पहला भाग भी सुन लिया। अगला भाग हम जरूर सुनेंगे अगले सोमवार के दिन, लेकिन अभी
1: अब ब्रेक लेते हैं।
0: हाँ,

0: ब्रेक का समय पूरा हो चुका है और हम फिर से हाजिर हैं सखियों से बातचीत करने के लिए। और अब अपने विषय पर आते हैं, उससे पहले तुम कुछ कहना चाहती हो?
1: एक हमारे साथी ने लिखा है,
0: हाँ?
1: मंजू जी, कि इस समय मेरी धर्म पत्नी और मैं स्वयं डल लेक के सामने श्रीनगर के होटल के रूम में आनंद ले रहे हैं। अपने शहर अजमेर से लगभग 1500 किलोमीटर दूर ये हमारी दीवानगी विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है। जो सुबह सुरीला सफर जो प्रोग्राम चल रहा था ना, तब भी हमारे इन्हीं श्रोता का फोन आया, मैसेज आया था, और उसमें भी उन्होंने कुछ इसी तरह की बात लिखी थी कि वो घूमने गए हैं और वहां पर जो नजारे हैं उसके बारे में लिखा था। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह के अपडेट्स जो है वो हमें देते रहते हैं। और आज हमारा जो विषय है, बुजुर्गों में बढ़ता हठीलापन, इसके बारे में भी हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें लिखी है। पहले कुछ बात हम अपनी यानी जो हम कहना चाहते हैं वो करते हैं कि कहा जाता है कि बचपन और बुढ़ापा जीवन के दो ऐसे पड़ाव होते हैं जहां व्यक्ति को सबसे अधिक स्नेह, धैर्य और अपनापन चाहिए होता है। फर्क केवल इतना ही होता है कि बचपन की जो जिद होती है वो मासूमियत भरी होती है, लेकिन बुढ़ापे की जो जिद होती है वो कई बार हट का रूप ले लेती है। यानी बच्चों की जिद तो हमें समझ में आती है, हमें ऐसा लगता है कि हाँ बच्चे हैं, जिद तो करेंगे, लेकिन वही जब बुजुर्ग व्यक्ति करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, इन्हें ये कैसे हट कर सकते हैं,
1: क्यों ऐसा कर रहे हैं, है ना। वैसे मंजू जी, आज के समय में ये शिकायत अक्सर सुनने को मिलती है कि हमारे पिताजी या माताजी बहुत जिद्दी हो गए हैं, लेकिन यदि इस व्यवहार के पीछे के कारणों को अगर समझा जाए तो पता चलता है कि उनका हट केवल स्वभाव नहीं बल्कि परिस्थितियां, अकेलापन और भावनात्मक असुरक्षा का ये परिणाम हो सकता है।
0: तो हमें इन कारणों को जानने के बारे में सोचना चाहिए या जानना चाहिए। तो हठीलापन वो स्थिति होती है जब व्यक्ति अपनी बात, अपनी आदत या अपने निर्णय पर अड़ जाता है और दूसरे के विचारों को स्वीकार करने में उसे कठिनाई महसूस होती है। बुजुर्गों में ये जो व्यवहार, ये अक्सर उम्र, अनुभव, स्वास्थ्य और बदलते सामाजिक परिवेश के कारण दिखाई देते हैं। यानी कारण कोई भी हो सकता है,
1: हमें समझ कारण होते हैं,
0: हमें समझना पड़ेगा।
1: अब जैसे बदलते समय में ये जो स्वीकारना है, इस बदलते समय में खुद को यानी उसके हिसाब से ढालने, इसमें उन्हें कठिनाई आ सकती है। और जिस समाज में उन्होंने जीवन बिताया, आज वही समाज पूरी तरह बदल चुका होता है। नई तकनीक है, नई सोच है, नई जीवन शैली है और नई पारिवारिक मूल्य उनके लिए सहज नहीं होते हैं।
0: बिल्कुल। और जैसे कि इसके बारे में अगर हम एक उदाहरण दें तो हमारे घर में कोई भी बुजुर्ग हो सकते हैं, दादा, दादी, नाना, नानी, ससुर, कोई भी हो सकते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि पूरा परिवार जो है वो रोज एक साथ बैठ करके भोजन करे, लेकिन होता क्या है कि आजकल जिस तरह से नौकरी लोग कर रहे हैं और उनका समय बहुत ज्यादा होता है, नौकरी का, पढ़ाई है या अलग अलग समय के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि परिवार टूट रहा है, जबकि अगर वास्तविकता की तरफ अगर हम नजर डालें तो यही कहा जा सकता है कि दिनचर्या सबकी अलग अलग है, तो परिस्थितियां कुछ बदल गई।

0: कुछ लोगों को इन परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, तो ये भी एक कारण हो सकता है उनके हठीलेपन का।
1: पर हम एक उसमें बीच का एक रास्ता चुन सकते हैं कि भाई ठीक है, दादाजी का मन है, उनकी इच्छा है, तो हम हफ्ते में एक बार या दो बार तो हम कर ही सकते हैं।
0: हाँ, जब संभव
1: तो कर ही सकते हैं
0: जी।
1: तो होता यूं है कि लोग खाना खाने बैठे हैं, उस वक्त भी उनका ध्यान नहीं होता है कि खाने में नमक ज्यादा है या कुछ कम है या कुछ है, वो तो उस मोबाइल देखते हुए खाते हैं।
0: हाँ, और या तो टीवी देखते हुए या मोबाइल देखते हुए, जबकि पहले के समय में ऐसा नहीं होता था, पूरा परिवार साथ में बैठ करके एक दूसरे से बातचीत करते हुए भोजन करते थे, तो उसमें सुख दुख का बंटवारा भी हो जाता था, सब अपने मन की बात कहते थे, दिन भर क्या हुआ उसके बारे में एक विश्लेषण होता था, तो वो एक बहुत ही अच्छा एक तरीका था जो अभी भी होना चाहिए। लेकिन जब नहीं होता है तो कई बार बुजुर्ग लोगों को ये बात ठीक नहीं लगती है,
1: तकलीफदायक हो जाती है।
0: बिल्कुल।
1: और एक बात है मंजू जी कि आजकल ना सम्मान थोड़ा सा कम देने लगे हैं लोग, कि पुराने जमाने में हमारे जो दादाजी हुआ करते थे वे अपने पिताजी को या उनके दादाजी को बहुत सम्मान देते थे, उन्हें महत्व देते थे, हर काम में कोई भी बड़ा या छोटा काम करने से पहले उनकी सलाह ली जाती थी। पर आजकल हर व्यक्ति चाहता है कि जैसे ना कि खुद की जैसी इच्छा हो उसी तरह से व्यवहार करे, पर बुजुर्गों को थोड़ा सा अगर मान सम्मान दिया, उनसे पूछ परख लिया, अगर उनसे सलाह ले ली तो उन्हें भी अच्छा लगता है। पर ऐसी बात अगर उन्हें इस तरह से उन्हें शामिल नहीं किया गया तो वे नाराज हो जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि हमारे जमाने में कैसे बुजुर्ग बैठ कर आपस में पूछते थे, परखते थे, फिर कोई घर का निर्णय लेते थे। आजकल तो हमें सब काम होने के बाद में पता चलता है कि भी नया घर खरीदा जा रहा है या फिर कोई शादी विवाह का मामला है या फिर कोई अन्य मामला है, बच्चों के एडमिशन की भी बात हो तो भी अरे हमें तो पूछा भी नहीं कि एडमिशन भी हो गया। तो ये छोटी छोटी बातें ना बुजुर्गों को थोड़ी तकलीफ जाती है, हो सकती है।
0: बिल्कुल। और पहले के जमाने की तुम बात कर रही हो तो जो बड़े लोग होते थे ना, एक बार अगर उन्होंने कह दिया कि ये होना है यही होगा, तो हमारे जो पिताजी थे वो उनकी बात को बिना सोचे समझे मान लिया करते थे। लेकिन अब शायद थोड़ी सी परिस्थितियां बदली हैं और लोग ये सोचते हैं कि नहीं, नए जमाने या नई तकनीक या नए जो चाल चलन या जो तरीका जो है चलन में जो तरीका है उसके बारे में शायद बुजुर्गों को इतना पता ना हो, तकनीक बहुत कुछ बदल गई है तो हमें क्या करना है ये हमें ही ज्यादा अच्छी तरह से मालूम है। शायद इस सोच की वजह से भी हम पूछते नहीं हैं उनसे, और ये भी एक कारण है कि ये उनके मन में कुछ इस तरह की भावनाएं पैदा करते हैं बुजुर्गों के मन में कि अरे अब हमारी तो कोई आवश्यकता ही नहीं बची, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, और फिर वो अपने महत्व को शायद ये चाहते हैं कि हमारा भी कुछ महत्व बताने के लिए भी हो सकता है, ये एक कारण कि उनमें हठीलापन आ जाए
1: और कभी कभी रूठ भी जाते हैं।
0: बिल्कुल। तो उन्हें मनाना ये भी हमारी जिम्मेदारी होती है। गीत सुन लें, आप
1: सुनते हैं गीत।

0: मंजू जी, हमारे एक सखी ने लिखा है, मैं इस समय बेटी के घर बर्लिन से सखी सहेली कार्यक्रम सुन रही हूँ। इस समय यहाँ 12:05 हुए हैं, इंडियन टाइम से 3.5 घंटे पीछे हैं।
1: क्या
0: कितना अच्छा
1: है।
0: लगता है ना।
1: हाँ, समय कोई भी हो, लेकिन अगर आप विविध भारती सुन रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी आनंद की बात है। चलिए, हमारा जो विषय है उस पर हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारी बातें लिखी। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज के मोबाइल और डिजिटल युग में सबसे बड़ा बुरा हाल जो है वो उम्र दराज और बुजुर्गों का है। जो कभी समाज के ऊपरी पायदान पर होते थे, उसे आज समाज कोई पूछता भी नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा जीवन का अनुभव उनके पास होता है और उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहले समाज और परिवार के सभी बड़े काम जिन वडिलों को पूछे, वडिल यानी बड़े लोगों से पूछे बिना नहीं होता था, आज उनको पूछा नहीं जाता है। तो ये गलत है। अगर आप किसी भी घर में ऐसा होता है तो ये नहीं होना चाहिए।
0: एक साथ ही लिखते हैं मंजू जी कि मैं भी 75 साल का बुजुर्ग व्यक्ति हूँ, मुझमें कोई हठीलापन नहीं है। घर के सभी सदस्य मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मैं उन सभी की खबर ख्याल रखता हूँ। सुबह विविध भारती पर जागो, सुबह हो गई सुनते हुए व्यायाम प्राणायाम कर लेता हूँ, शाम को इवनिंग वॉक करने चला जाता हूँ। इन सभी के अलावा विविध भारती फेसबुक पेज से कई श्रोता मित्र, उनसे जुड़ा हुआ हूँ मैं, और उनके लिए विविध भारती के लिए यही कहता हूँ कि तेरे पास आकर मेरा वक्त गुजर जाता है। 2 घड़ी के लिए नहीं, जिंदगी की हर घड़ी के लिए गम जाने किधर चला जाता है पता ही नहीं चलता।
1: क्या बात है। जिंदगी के प्रति हमारा जो नजरिया होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है।
0: सकारात्मक होना चाहिए।
1: बिल्कुल। शारीरिक अवस्था चाहे कुछ भी हो, चाहे हम जवान हो या ढलती उम्र हो या बुढ़ापा हो, लेकिन जब हमारा नजरिया सही होता है तो जो शारीरिक परिस्थितियां हैं उनमें भी कुछ तो बदलाव आ ही जाता है।
0: यानी और है ना, छोड़ देने की आदत, ठीक है उनके हिसाब से चलो, या फिर है ना कि हर चीज को दिल से लगाने की जरूरत नहीं है।
1: हमें भी ये सोचना चाहिए कि अगर हमारी उम्र इतनी बड़ी है तो परिस्थितियों में बदलाव आना स्वाभाविक बात है। उन परिस्थितियों से अगर थोड़ा सा सामंजस्य बनाने की कोशिश की जाए, अपने नजरिए को थोड़ा बदल दिया जाए कि हाँ ये बदलाव तो होगा ही, हमारे जमाने में ऐसा होता था लेकिन इस जमाने में ऐसा हो रहा है, तो हमें भी इस समय के अनुसार चलना है, ये अगर सोच थोड़ी सी कर ली जाए तो भी बहुत सारी परेशानियों से हम बचे रह सकते हैं। एक हमारे साथ लिखते कि बढ़ती उम्र और बुजुर्गों का हटीलापन। भाई, बढ़ती हुई उम्र एक तो वैसे ही खतरे की घंटी है, ऊपर से उनका हटीलापन, यह तो ऐसे ही हुआ जैसे सोने पे सुहागा नहीं। ये हमारा सोचना ऐसा है कि ऐसी बात नहीं है, सोने पे सुहागा वाली बात नहीं है ये। तो इन्होंने ऐसा कहा है कि हटीले लोगों से लगता है कि आप सभी का पाला पड़ा नहीं है, और इस तरह की बात लिखी है। हमारा इनसे ये कहना है कि बुजुर्गों के बारे में आप इस तरह से ये लिखना थोड़ा ठीक नहीं है, उन्हें थोड़ा आदर भाव से समस्या, बिल्कुल उनकी जो समस्या है उसकी तरफ हमारी नजर होनी चाहिए, और उसे कैसे दूर किया जा सकता है और उनकी समस्या को समझने का प्रयास हमें जरूर करना चाहिए। कि जैसे कई बार होता है कि उम्र के हिसाब से हमारे जो सिर के बहुत सारे अंग होते हैं वो थोड़े से मंद पड़ने लग जाते हैं, सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे कम होने
0: भूलने लगते हैं।
1: तो इस तरह के जो बदलाव आते हैं उससे भी ये समस्या होती है। हमें ऐसा लगता है कि हटीलापन है, जबकि ऐसा वो करते नहीं है, बल्कि ऐसा हो जाता है कि वो अपनी एक बात से चिपक जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो हटीलापन कर रहे हैं, तो हमें इन बातों को समझना होगा।
0: एक साथ ही लिखते हैं कि बुजुर्गों की

0: इससे निपटने के उपाय धैर्य से सुने, उनकी बातों को काटे नहीं, उन्हें महसूस कराए कि उनकी राय क्या में महत्वपूर्ण क्या है, सम्मान दे, उनके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाए, आदेश देने के बजाय प्यार से सुझाव दे, सक्रिय रखे उन्हें सैर योग या पारिवारिक गतिविधियों में शामिल करे।
1: बिल्कुल, एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि बुजुर्गों का हठीलापन को बीमारी नहीं बल्कि उनके जीवन के इस पड़ाव की एक पुकार है जो अपनों का साथ और सम्मान चाहती है, उन्हें बदलने की कोशिश करने के बजाय उनके इस व्यवहार को धैर्य और प्रेम से संभालना ही एक परिपक्व समाज और परिवार की पहचान होता है। तो ये बहुत सारे श्रोताओं ने बातें लिखी है, और भी कोई बात अगर तुम्हारे पास है तो तुम पढ़ के बता सकती हो हमें।
0: एक साथी लिखते हैं कि बढ़ती उम्र में बुजुर्गों में हठीलापन आना एक बहुत ही मुख्य समस्या है, आम समस्या है। मुख्य कारणों में बढ़ती उम्र तो है, इसके चलते मुख्य कारणों में स्वतंत्रता खो देने का डर होता है, शारीरिक या संज्ञात्मक कमी, डिमेंशिया के कारण पराधीन होने का मनोवैज्ञानिक डर बना हुआ रहता है, जिसके कारण हमें उनमें बच्चों की तरह हठीलापन का एहसास होने लगता है। खासकर जब बढ़ती उम्र में उनकी उपेक्षा होने लगती है तब उनके स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है। इसलिए उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, प्यार से समझाकर उनकी भावनाओं का सम्मान करें।
1: बिल्कुल, अब हम संगीत का भी सम्मान करते हैं, एक गीत सुन लेते हैं।
0: सुनते हैं गीत।

0: ये फिल्म अगर देखी हो ना तो इसमें जो ये गाना है ना दादी अम्मा मान जाओ, तो दादी के जो पोते होते हैं वो किस तरह से बड़े प्यार से दादी अम्मा को मनाते हैं, तो वो वाकई में देखने लायक है।
1: और ऐसे ही अगर दादी को या दादा को मनाया जाए तो दादी या दादा रूठेंगे नहीं, बिल्कुल से मान जाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही प्यार और ऐसा ही सम्मान उनके प्रति होना बहुत आवश्यक है। अब कुछ खाने पीने की बातें हो जाए।
1: आज हम पश्चिम बंगाल की ओर जाने वाले हैं।
0: हाँ, जो बसंती चावल और सौंदेश की हम बात कर रहे हैं, एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बसंती चावल

0: पंजाब के बहुत सारे प्रांत में बसंत पंचमी के दिन बनाया जाता है, जिसमें बासमती चावल को घी में पकाते हैं और उसमें केसर, ड्राई फ्रूट और चीनी का सिरप मिलाकर बनाते हैं। और मैंने अपने पड़ोसी के घर ये खाया है और बहुत ही अच्छा लगता है। और इसी के साथ एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि सौंदेश तो खाने के लिए मिठाई की दुकानों से मिल जाता है, बंगाली सहेली के घर पर बहुत सारे हमने बंगाली व्यंजन खाए हैं।
1: एक ने सौंदेश की रेसिपी लिखकर भेजी है हमारे एक साथी ने। इसकी सामग्री और तैयारी, तो दूध 1 लीटर फुल क्रीम दूध लेना है, चीनी 3 से 4 बड़े चम्मच लेना है, इलायची पाउडर छोटा 1/2 चम्मच और नींबू का रस या सिरका 2 बड़े चम्मच दूध को फाड़ने के लिए।
0: बिल्कुल।
1: बनाने के लिए छेना बनाए, दूध को उबाले, फिर गैस बंद कर दे और नींबू के रस या सिरके में थोड़ा सा पानी मिलाकर धीरे धीरे दूध में डाले ताकि वे आराम से फट जाए। अब पानी निकाल ले। अब फटे हुए दूध को सूती कपड़े में छान ले और साफ पानी से धोकर अतिरिक्त पानी निकालकर उसे निचोड़ ले। अब उसको अच्छे से मैश करना है, उसको मसलना है। छेने को प्लेट में निकालकर हथेलियों से 7 से 8 मिनट तक चिकना होने तक मस ले। अब इसको पकाना है। इसमें अब पकाने के लिए इसमें पीसी चीनी डालना है मसलने के बाद में और इलायची पाउडर मिलाए और मिश्रण को पैन में धीमी आंच तक 3 से 4 मिनट तक नरम होने तक पकाए और ठंडा करें और इसे आकार देना है। हाथों में घी लगाकर मिश्रण की छोटी छोटी लोइयां बनाएं और मनचाहा आकार देकर पिस्ता से या फिर काजू या फिर बादाम से सजा दे।
0: बिल्कुल सही बात तुमने कही है कि किस तरह से सजाया जाए। लेकिन सोनाली एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि पहले के जमाने में चाहे कोई त्योहार आए या कोई पर्व हो, कोई उत्सव हो, तो घर में ही सारी मिठाइयां
1: बनाई जाती थी।
0: हाँ, और वो बड़ी स्वादिष्ट भी लगती थी और कई कई दिनों तक हम उसे खाते थे। स्वाद मुंह से जाता ही नहीं था। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं कि बनाने का समय ही नहीं है तो बस बाजार से ले आओ और खा लो
1: और फ्रिज में रख दो।
0: हाँ, फ्रिज में रख दो। तो इसकी बजाय हम कभी कभी ये बनाने की अगर कोशिश करें तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि घर की बनी हुई जो मिठाइयां होती है उसका स्वाद एकदम अलग होता है और शुद्धता की भी तो बात है ना। हमें पता है कि हमने कौन कौन सी सामग्री इसके अंदर मिलाई है, किस तरह से बनाया है। और अगर घर में बनता रहेगा तो ये जो रेसिपी है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होती रहेगी। अन्यथा अगर आगे हम नहीं बनाएंगे तो आगे वाली पीढ़ी को तो पता ही नहीं चलेगा कि इन पर्वों पर, इन उत्सवों पर क्या बनता था हमारे घर में और कैसे बनाया जाता है। तो ये भी एक बात है ना।
1: और जब हम घर में बनाते तो अच्छे हाइजीन का ध्यान रखते हैं।
0: हाँ।
1: साफ हाथ धोकर फिर हम ढक कर रखते हैं, उसमें कुछ कीड़ा ना लग जाए, इसलिए हम कितना ध्यान रखते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और ध्यान रख के बनाना बहुत जरूरी है।
0: और पहले के जमाने में तो मैंने ये भी देखा है कि जब ये ऐसे पर्व उत्सव आते थे तो अपने घर में क्या बना है, एक प्लेट भर के हम अपने पड़ोसियों के और रिश्तेदारों के घर भी देने के लिए जाते थे और वहां से भी प्लेट भर के आता था। तो हमें ये पता चलता था कि वहां क्या बनता है और उनकी उसी जो मिठाई है उसका स्वाद वहां का कैसा है। अगर हमें ऐसा लगता था कि नहीं, ये हमारे स्वाद से ज्यादा अच्छा है, तो हम कोशिश करते थे कि
1: वैसा
0: बनाया जाए।
1: यानी संस्कृतियों का भी आदान प्रदान पहले हुआ करता था,
0: होता था। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि घर में इस तरह की रेसिपी बनाना चाहिए हमें। चलिए, बसंती पुलाव किस तरह से बनाया जाए, हमारे श्रोता ने ये बात लिख करके भेजी है। तो बसंती पुलाव एक पीले सुनहरे रंग का सुगंधित मीठा सा चावल का व्यंजन है। बसंती नाम इसके सुंदर पीले रंग से जुड़ा है। इसे विशेष अवसरों, पूजा और पारिवारिक समारोहों में बनाया जाता है। मुख्य विशेषताएं उन्होंने लिखी कि आमतौर पर सुगंधित चावल का इस्तेमाल किया जाता है। घी, हल्दी या केसर से इसका आकर्षक रंग और खुशबू आती है। इसमें किशमिश और काजू जैसे मेवे डाले जा सकते हैं। इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता आदि मसाले इसकी सुगंध बढ़ाते हैं और बंगाली भोजन में इसे अक्सर आलू की या दम या अन्य सब्जियों के साथ परोसा जाता है। और बसंती पुलाव की खासियत यह है कि इसमें मीठे और मसालेदार स्वाद का एक सुंदर संतुलन मिलता है। ये बात इन्होंने लिख करके भेजी है। और अगर इसकी रेसिपी भी हमारे साथियों ने लिख करके भेजी है तो वो भी हमें बताना चाहिए
1: कितना उसमें, यानी 2 कटोरी चावल है तो उसमें कितना तेल लेना है, फिर कौन से खड़े मसाले का इस्तेमाल किया जाता है, पानी कितना डालना है। इस तरह से भी अगर लिख के भेजे ना तो अन्य श्रोता जो घर में सुन रहे हैं उन्हें भी और भी सहूलियत होगी बनाने
0: बिल्कुल।
1: में
0: बिल्कुल। और यहाँ एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारे इन व्यंजनों की इन्होंने बात की कि इसमें गरम मसाले भी मिलाए जाते हैं और मीठा भी स्वाद आता है, तो जो गरम मसाले एक संतुलित मात्रा में मिलाए जाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बड़े हितकर होते हैं। तो पहले के जमाने के जो भी मीठे व्यंजन, चाहे कोई भी और व्यंजन हो, तो उनमें स्वाद के साथ सेहत का भी पूरा खजाना छिपा हुआ था। तो ये इसलिए भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि घर में बनाएंगे तो हम इन बातों का भी ख्याल रखेंगे।
1: और है ना, घर में मंजू जी जो बनाए जाते हैं ना,

0: मौसम के हिसाब से बनाए जाते हैं कि जैसे सर्दियों में गोंद के लड्डू सबके घर में बनते ही बनते थे उस जमाने में। फिर अभी बारिश का मौसम आएगा तो अभी मकई आ रही तो मकई के व्यंजन बनते ही थे, क्योंकि हम साल भर उस वक्त सब चीजें नहीं मिलती थी।
1: बिल्कुल, तो इन बातों का ख्याल रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलो एक गीत सुनते हैं।
0: सुनते हैं।

0: चल।
1: सुना ली, इस गाने में जो एक शब्द है ना, धीरे से तेरा ये मुस्काना, बड़ा प्यारा लगता है। घर में भी जब कोई अच्छी सी कोई मिठाई मम्मी दादी नानी के हाथ से बनती है और वो हमें पसंद हो तो धीरे से एक मुस्कुराहट हमारे भी चेहरे पर आती है ना,
2: और वो खुशबू है ना। हाँ, वो खुशबू से ही हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। खाने के पहले, चखने के पहले ही उस खुशबू से जो घर में इतनी खूबसूरत महक आ जाती है ना, कि हमें ऐसा लगता है अरे वाह, आज तो कुछ अच्छा खाने को मिलेगा हमें।
1: बिल्कुल।
2: और एक हमारी सखी ने भी लिखा है कि हम जो संदेश है वो हम गुड़ का हमारी सहेली बनाती है।
1: अच्छा।
2: तो आजकल जो हेल्दी ऑप्शन लोग चुन रहे हैं कि शक्कर के बजाय गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। उसमें स्वाद भी बहुत अच्छा होता है और सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और कहते हैं कि रसोई घर तो एक प्रयोगशाला होती है, जितने प्रयोग करेंगे उतनी नई नई बातें हमें पता चलेगी। चलिए, अब एक बात हमें ये पता चल गई कि कार्यक्रम का समय पूरा हो चुका है, तो अब हमें सखियों सखाओं से आज्ञा लेनी होगी। तो आज्ञा दीजिए आप सभी को मंजू द्विवेदी
2: और सोनाली पाठक का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। सेहतनामा कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर संजय भदादा से, जो एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, यानी ऐसे विशेषज्ञ जो हार्मोन्स, ग्रंथियों और एंडोक्राइन सिस्टम के विशेषज्ञ होते हैं। तो चलिए करते हैं बातें डॉक्टर संजय भदादा से। इनसे बातचीत आपके इस दोस्त यूनुस खान ने ही की है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और इस समय सेहतनामा कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय भदादा, जो चंडीगढ़ के पीजीआई में एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट में हैं और इस दिशा में उन्होंने बहुत सारा रिसर्च का काम भी किया है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में।
1: धन्यवाद बुलाने के लिए विविध भारती से।
0: जी डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, जिसका नाम लेना ही बड़ा मुश्किल है, इसका काम क्या है?
1: सो अगर आपको मैं सिंपल शब्दों में समझाना चाहूंगा तो एंडोक्राइन डिपार्टमेंट या एंडोक्राइन जो ब्रांच है, हार्मोन से डील करती है।
0: जी।
1: और हार्मोन्स एक तरह से एक पदार्थ है जो आपके शरीर में है, जो बहुत सारी ग्लैंड्स इसको सिक्रीट करती है, और ये बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, लेकिन इसका असर बहुत ही सीरियस होता है। चाहे वो कम हो जाए तो भी उसका असर बहुत सिग्निफिकेंट होता है, और वो जरूरत से ज्यादा हो जाए तो भी उसका असर काफी गंभीर होता है। तो एक तरह से एक बैलेंस होना चाहिए हार्मोन के लेवल में। अगर हार्मोन्स के लेवल का बैलेंस खराब हो गया तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होंगे, और ये बहुत सारे हार्मोन्स है बॉडी के अंदर और नए नए और निकलते जा रहे हैं, जैसे जैसे रिसर्च हो रहा है, साइंस प्रोग्रेस कर रहा है वैसे वैसे।
0: महिलाओं में ये समस्या आमतौर पर ज्यादा देखी जाती है।
1: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारी जो डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। तो जो हमारे वार्ड में एडमिशंस होते हैं उसमें भी फीमेल पेशेंट्स ज्यादा होते हैं कंपेयर टू मेल पेशेंट्स के।
0: जी डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आने से पहले जब मैं आपसे कुछ बातें कर रहा था तो आपने कुछ दिलचस्प बिंदु उठाए थे अपने अनुभव के, और उसमें हार्मोन्स के जरिए हड्डियों पर होने वाले असर की आपने बातें की, तो हम सब इसे सुनकर चौंक गए। तो मुझे लग रहा है कि क्यों ना इस कार्यक्रम में वो बातें आप बताएं कि ये कितना महत्वपूर्ण है, हार्मोन्स आपकी हड्डियों पर सीधे असर करते हैं।
1: बहुत ही अच्छा सवाल है और इस सवाल का जवाब देने में मुझे बहुत मजा आएगा।
0: जी,
1: क्योंकि ये जो एरिया आपने चूज किया या अपन ने जो चूज किया कि कैसे बोन्स हार्मोन्स को अफेक्ट करती है, तो इसके बारे में जो जानकारी, तो सबसे पहले मैं इसमें आपसे और हमारे विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूं कि बोन डिसऑर्डर्स हार्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। और सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे महिलाओं में महीना बंद हो जाता है जिसको हम मीनोपॉज बोलते हैं या महावा

0: बंद होना बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हार्मोन्स बनता है उसका नाम होता है एस्ट्रोजन। वो एस्ट्रोजन का हार्मोन का लेवल एकदम कम आने लग जाता है, और उसकी वजह से जो कॉमन सिम्टम्स तो महिलाओं में होता ही है कि जैसे चेहरे पे पसीना आना है, घबराहट होना है, मन उदास होना है, ये सारे सिम्टम्स उस टाइम पे होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन का इफेक्ट बोन्स पे भी बहुत होता है। तो अगर वो हार्मोन का जो एक पर्टिकुलर लेवल चल रहा है, अचानक हार्मोन्स लेवल गिर जाता है, तो उससे बोन्स वीक होना शुरू हो जाती है, और उससे जो प्रॉब्लम होती है उसको हम बोलते हैं पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये बहुत ही कॉमन बीमारी है, और ऑलमोस्ट 30-40% 50% महिलाओं को होता है, और वो पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जबकि उस टाइम उसको इंटरवीन करके उनकी बोन हेल्थ को अपन अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं।
1: क्या ये मुमकिन है कि इस तरह के मरीज पहले ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के पास जाएं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उनकी समस्या की जड़ क्या है और चीजें दूसरी दिशा में चली जाएं?
0: बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, और उसका एक रीजन है कि आम पब्लिक को एंडोक्राइन डिपार्टमेंट के बारे में ज्यादा पता नहीं है, और ज्यादा पता है तो उनको यही जानते हैं कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मतलब

0: सकते हैं।
1: क्या ये मुमकिन है कि इस तरह के मरीज पहले ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के पास जाएं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उनकी समस्या की जड़ क्या है और चीजें दूसरी दिशा में चली जाएं?
0: बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और उसका एक रीजन है कि आम पब्लिक को एंडोक्राइन डिपार्टमेंट के बारे में ज्यादा पता नहीं है, और ज्यादा पता है तो उनको यही जानते हैं कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मतलब है कि वो डायबिटीज को देखता है, थायराइड डिसऑर्डर्स को देखता है या मोटापे को देखता है। तो ये एक तीन डिसऑर्डर्स के लिए उनको पता है कि ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट देखते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो आपकी बोन्स की देखरेख करते हैं, उसमें जैसे एक हार्मोन का नाम होता है पैराथायरॉयड हार्मोन, एक होता है विटामिन डी, एक होता है और भी कुछ कुछ हार्मोन्स होते हैं, वो तो मैं यहाँ पे बताने का फायदा नहीं, पर ये दो इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं। और इन दोनों इंपॉर्टेंट हार्मोन के बारे में जिनका कैसे बनता है, ये कैसे काम करता है, इसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसके अंडरस्टैंडिंग जो पढ़ाई जाती है समझी जाती है वो एंडोक्राइन डिपार्टमेंट वालों के थ्रू होती है। तो अगर इससे कोई बीमारी होती है तो अगर आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का कंसल्ट करेंगे तो बीमारी जल्दी से पता चल सकती है और जल्दी से उसका इलाज हो सकता है, उसका आउटपुट बहुत अच्छा हो सकता है। पर आम पब्लिक को ये पता है कि ये हड्डी का बीमारी, तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का इसमें कोई रोल नहीं है। बट ऐसा नहीं है, मैं यही बताना चाहूंगा कि अगर आपको हड्डी का किसी भी तरह का प्रॉब्लम है आप एक बार जरूर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। और जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने सुना है या देखा है हमने कि जो छोटे बच्चे होते हैं 2 साल के 4 साल के या जन्म के तुरंत बाद उनको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, तो इस तरह के फ्रैक्चर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं हॉर्मोन्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से। तो उसका अगर टाइम पे पता चले तो उसका बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। ऐसे एक दूसरा डिसऑर्डर्स होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड की वजह से, जब हार्मोन ज्यादा बन जाता है तो उसकी वजह से आपके शरीर के अंदर कैल्शियम ज्यादा बनता है, आपको रीनल स्टोन्स हो जाते हैं, आपको बार बार पथरी बनती है और आप बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं, पथरी का ऑपरेशन करके निकलवाते हैं, पर आप उसके जड़ में नहीं पहुंच रहे। और उसकी जड़ में नहीं पहुंचने की वजह से कि आपका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, उसका सही इलाज नहीं हो रहा, तो आपको प्रॉब्लम चलता ही रहता है और अल्टीमेटली इसकी वजह से किडनी खराब हो जाती है, आपको किडनी डिजीज होता है, किडनी फेलियर हो जाता है। तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आपको, जैसे मैंने एक और चीज बता दी एक तरह से कि आपको बार बार पथरी बन रही तो आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए।
1: यहां मुझे एक कंफ्यूजन हो रहा है और वो ये हो रहा है कि अब जैसे आपने कहा कि हड्डियों की समस्याएं हैं, तो अब अमूमन क्या होता है कि हड्डियों के डॉक्टर के पास व्यक्ति जाता है, तो कैसी परिस्थितियों में व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि ये पथरी की समस्या है तो मुझे किडनी स्टोन के डॉक्टर के पास नहीं जानी है, ये हड्डियों की समस्या है तो मुझे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास नहीं जाना है, ये यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना है, ये डिसाइड कैसे होगा?
0: तो मैं सबसे पहले ही आपको बोलता हूं, अपन एक ही क्वेश्चन में 3-4 आंसर पूछे हैं तो वन बाय वन लेता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपको हड्डी के फ्रैक्चर के बारे में।
1: जी जी।
0: तो मैं ये बोलूंगा कि कोई भी फ्रैक्चर जो कि ट्रोमा की वजह से हुआ है, जैसे रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, जैसे और किसी वजह से चोट लगी फ्रैक्चर हो गया, तो उसका बेस्ट डॉक्टर है ऑर्थोपेडिक सर्जन।
1: टूट फूट हुई
0: उसके लिए जाना, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट का नाम ही हड्डी जोड़ तोड़ विभाग।
1: अच्छा,
0: है ना, तो उनके पास जाना है। लेकिन सपोज आप बाथरूम में स्लिप कर गए,
1: जी,
0: फ्रैक्चर हो गया, या हल्का धक्का लग गया फ्रैक्चर हो गया, 2 सीढ़ी स्किप हो गए गिर गए फ्रैक्चर हो गया, या अपने आप फ्रैक्चर हो गया, इन सब के लिए आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना। तो अगर फ्रैक्चर एक्सटेंसिव ट्रॉमा की वजह से हुआ तो आपको जाना है ऑर्थोपेडिक्स के पास। पर जो माइनर ट्रॉमा से फ्रैक्चर हो रहा है, अपने आप हो रहा है, फैमिली में फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, उसके लिए आपको जाना है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट।
1: बिल्कुल साफ कर दिया आपने इस मामले को।
0: अब उसके बाद दूसरी बात जो आती है कि आपने पूछा पथरी के बारे में।
1: जी।
0: तो पथरी क्या होता है कि आमतौर पर पथरी 2-4% लोगों को पानी कम पीने की वजह से बन जाती है। पर अगर पथरी बार बार बन रही है, अगर जिंदगी में किसी को पथरी एक बार बन गई ठीक है वो बन सकती है, लेकिन आपको बार बार पथरी बन रही, बार बार दर्द हो रहा है, इमरजेंसी जाना पड़ रहा है, या आपके यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं वो आपको ऑपरेशन करके पथरी निकाल रहे हैं, 3 साल बाद फिर पथरी बन गया, इस तरह का तो प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब है कि वो यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि उसका इलाज लेना हो सकता है। लेकिन उसको क्यों बन रहा है उसका कारण जानने के लिए आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा।
1: जी, मेनोपॉज की बात चल रही थी और आपने कहा कि कुछ खास लक्षण होते हैं जिनसे हर महिला को उस समय गुजरना पड़ता है, अचानक वजन बढ़ जाना, वाटर रिटेंशन, है ना, ये तमाम चीजें हैं। तो क्या ऐसे समय में ये दौर अपने आप निकल जाता है या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की मदद लेनी जरूरी होती है?
0: इसका आंसर ऐसे

0: हो सकता है कि बहुत बार जो ये सिम्टम्स होते हैं सभी महिलाओं को एक जैसे नहीं होते हैं।
1: जी
0: कुछ महिलाओं को पता भी नहीं चलता कि उनका मेनोपॉज हुआ और निकल गया, तो उनको लिए कुछ करने का जरूरत नहीं है, बट उनके लिए करना है कि अच्छा एक्सरसाइज करना चाहिए। अक्सर अमूमन ये होता है कि हमारे घर परिवार में माताएं बहनें अपने आप को इग्नोर करती है अपनी हेल्थ को, और घर के सब लोगों की हेल्थ का ध्यान रखती कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, बेटे ने खाना खाया कि नहीं खाया, पोते ने दूध पिया कि नहीं पिया, लेकिन वो अपने दूध पीने का ध्यान नहीं रखती है, अपना दही खाने का ध्यान नहीं रखती है, अपनी एक्सरसाइज नहीं करती, वो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो अगर बिना किसी सिम्टम के लिए निकल जाए तो कुछ नहीं करना, अपना एक्सरसाइज चालू रखो, अपना कैल्शियम विटामिन डी का डाइट अच्छा रहो और वजन नहीं बढ़ने दो। लेकिन कुछ लोगों को बहुत मूड स्विंग होता है, अचानक पसीना आ जाता है, घबराहट होता है
1: जी,
0: और ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा। इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी से होते हैं। तो इस तरह के लोगों को आपको कंसल्ट करना चाहिए विदाउट टाइम वेस्टिंग। जैसे मैं एक इंस्टीट्यूट में काम करता हूं, तो हमारे जो रेसिडेंट्स आते हैं उनको पढ़ाने के लिए जब बात चलती तो किसी महिलाओं की हिस्ट्री लेनी होती है, तो मैं उनको पहला एक सवाल पूछता हूं कि उनको उनके महीने के बारे में आप जरूर पूछें कि महावारी कैसी चल रही है। महावारी ठीक चल रही है तो उनको कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होने का चांस है। इसलिए हम बोलते हैं कि वुमेन्स के अंदर महावारी रेगुलर होना एक बैरोमीटर ऑफ हेल्थ है। अगर आपकी महावारी ठीक चल रही है तो आपका हेल्थ बिल्कुल ठीक है। और हमने ऐसा देखा भी हमारे घर परिवार में, बचपन में मम्मी कहती थी कि अरे महीना एक महीना भी चूक गया तो आगे लग गया तो घर वालों को टेंशन रहता है ये क्यों हो रहा है, होना नहीं चाहिए। तो सेम चीज है यहाँ पे भी, वो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। उस हिस्ट्री से बहुत सारी डिजीज आपको पता चल सकती है। अगर किसी का महीना गड़बड़ हो रहा है तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर से बहुत कॉमन होता है,
1: तो डॉक्टर के पास तुरंत
0: बिल्कुल जाना चाहिए, बताना चाहिए ये। और बहुत सारी चीजें शकल देख के डायग्नोस कर सकते हैं हम,
1: तो इस बारे में बात करेंगे कि शकल देख के आप कैसे डायग्नोस
0: बिल्कुल,
1: करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि आप कहीं नहीं जाइएगा।
0: बिल्कुल,
1: पहले डॉक्टर साहब से एक गाने की फरमाइश करते हैं, उसके बाद शकल देख के कैसे आप मरीज पहचानते हैं ये बात होगी।
0: हाँ, तो हम इसमें माताओं बहनों की बात कर रहे हैं, तो एक अच्छा फेमस गाना है, फूलों का तारों का सबका कहना है मेरी एक बहना है।
1: क्या हरे रामा हरे कृष्णा का ये गीत आनंद बख्शी के बोल आर डी बर्मन की तरह सुनते हैं ये गाना।

0: कहना है।
1: डॉक्टर साहब, ये तो बहन को समर्पित गाना, और आप इस गाने से पहले कह रहे थे कि आप चेहरा देखकर मर्ज भांप लेते हैं, ये तो बड़ी चमत्कारिक बात
2: और है। बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्चुअली मैं जब उदयपुर मेडिकल कॉलेज में ग्रेजुएट था तो हमारे प्रिंसिपल होते थे डॉक्टर सूरवीर सिंह
1: जी जी,
2: तो उनके बारे में ये फेमस था कि वो इतने बड़े डॉक्टर हैं, इतने अच्छे डॉक्टर की जब मरीज उनके कमरे में घुसता तभी बीमारी बता देते हैं।
1: अरे गजब।
2: तो अब वो
1: ऑब्जर्वेशन
2: उस टाइम हमारा इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था कि ये कैसे बता देते बीमारी। लेकिन जब मैं एंडोक्रिनोलॉजी के अंदर मेरा सुपर स्पेशलाइजेशन किया तो मुझे पता चलता है कि हाँ, कुछ ऐसी बीमारियां हमारी है जो हम बता सकते हैं कि ये मरीज अंदर घुस रहा है, इसको ये बीमारी होने की संभावना है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि हम 100% बता देंगे, ऐसा नहीं, लेकिन 80% 90% बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन को ये बीमारी होने की ज्यादा संभावना, इसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे।
1: जी जी।
2: जैसे अभी आपने एक दो बीमारियां होती है कि ऑस्टियोपोरोसिस का एग्जांपल देता हूं, बोन की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई पर्सन जिसको कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, कोई हिस्ट्री नहीं है ट्रॉमा की, और वो ऐसे झुक के चलने लग जाए, आगे झुक करके चलने लग जाए
1: जी,
2: तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका स्पाइन का हाइट कम हो गया।
1: अच्छा,
2: उसका स्पाइन का हाइट कम होने की वजह से वो आगे झुक गया, तो ये बीमारी क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस है। और आपने बहुत बार देखा होगा अपने आस पड़ोस से महिलाएं बहुत झुक जाती है, हम जनरली ये समझते हैं तो उम्र के हिसाब से हो गया, एक कोई बीमारी नहीं है, बट वो एक्चुअली ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी की वजह से हो गया। अगर उनका टाइम पे इंटरवेंशन किया जाए तो वो ऐसे नहीं झुकेंगे
1: जी। कई बुजुर्गों को दिखाई गई, उनकी कमर दोहरी हो जाती है,
2: बल्कि
1: पुराने जमाने में
2: ज्यादा होता था,
1: देखा जाता था।
2: और दूसरा बीमारी होता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड होती है, जो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल।
1: जी जी।
2: तो वो हार्मोन जब ज्यादा बनता तो शरीर भारी हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, गोल हो जाता है, और कहीं भी छोट हल्का चोट लगे तो निशान बनने लग जाते हैं, नील पड़ जाती है। ये सारी बीमारियां बहुत बार शक्ल देख के बता सकते हैं इस पर्सन को ये बीमारी है।
1: कॉर्टिसोल तो हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस है ना?
2: ये बिल्कुल, कॉर्टिसोल स्ट्रेस का हार्मोन है कि अगर आपका जब भी स्ट्रेस होगा तो ये बढ़ जाएगा।
1: हाँ, ये, तो वो कम हो तब हैप्पी है आदमी।
2: हाँ, वो उसका ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए। जैसे कि मैं इसको लाइन को शायद मैं बार बार जब भी अपना डिस्कशनों को बोलूंगा कि हमारे सारे हार्मोन के लेवल ऑप्टिमम होना चाहिए, अगर आप बढ़ गया तो भी खतरनाक है। कॉर्टिसोल कम हो गया आपका ब्लड प्रेशर चला जाएगा।
1: ओके ओके।
2: हाँ, तो इसलिए हर चीज बैलेंस में चलती है, इसलिए एंडोक्राइनोलॉजी को हम बोलते हैं ब्रांच ऑफ डिसिप्लिन।
1: क्या बात,
2: सब चीज वैसे रहना चाहिए,
1: अनुशासित।
2: जैसे डायबिटीज भी एक ऐसा बीमारी जिसमें अनुशासन रहना चाहिए।
1: हाँ,
2: अगर आप अपना खाना ठीक से नहीं करेंगे, आप अपना एक्सरसाइज ठीक से नहीं करेंगे, दवाई ठीक से नहीं लेंगे, तो आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। लेकिन अगर आप ये तीन चीजों को प्रॉपर करेंगे तो आप जितना जी सकते हैं उतना जिएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: और चेहरा देख के कौन कौन सी चीजें समझ में आ जाती हैं?
2: और चेहरा देखने से जैसे कि हार्मोन्स होते हैं, जिन हार्मोन्स को मेल हार्मोन्स और फीमेल हार्मोन्स बोलते हैं
1: जी,
2: तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि महिलाओं के अंदर फेशियल हेयर नहीं होंगे
1: जी,
2: पर अगर महिलाओं में फेशियल हेयर आना शुरू हो गए तो इसका मतलब उनको ये पर्टिकुलर जो मेल हार्मोन्स का लेवल बढ़ गया है। तो वो मेल हार्मोन्स लेवल बढ़ने के मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं, वो कितना सीवियरिटी है, जैसे बहुत सारी महिलाओं में बहुत ज्यादा एक्सेसिव फेशियल हेयर आ जाते हैं, तो इसका मतलब वो कोई ट्यूमर हो सकता है जो कि ये हार्मोन ज्यादा बना रहा है।
1: ओके।
2: तो वो पता कर सकते हैं। फिर उसके बाद में कि कोई पुरुष है उसके चेहरे पे बाल नहीं है, तो वो इसका मतलब उसके अंदर मेल हार्मोन है वो नहीं है, उसकी वजह से चेहरे पे बाल नहीं आ रहे, तो वो हम बीमारी बता सकते हैं, कह सकते हैं कि इसको ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी। फिर एक हार्मोन होता है जिसको हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, वो आपकी ग्रोथ को रेगुलेट करता है। अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस हो जाए तो बंदा
1: 7 फीट
2: का हो सकता है, और चेहरा बड़ा हो जाएगा, हाथ बड़े हो जाएंगे।
1: अच्छा।
2: जैसे आपने WWF में कुछ लोगों को देखा होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बट वो जैसे बहुत बड़े हो जाते हैं, हेल्थ लंबा चौड़ा, तो वो उनको बेसिकली एक तरह से वो ग्रोथ हार्मोन का एक बीमारी वो ज्यादा है, उसकी वजह से वो ज्यादा बढ़ गए।
1: क्या बात। मध्य प्रदेश में एक पुलिस के व्यक्ति हुआ करते थे जो एशिया के सबसे लंबे,
2: पंजाब में भी कुछ है
1: जी,
2: वो भी है। और दूसरा उसका उल्टा है, अगर आप

0: उस हार्मोन नहीं बना आपको तो आपका हाइट कम रह जाएगा। तो इसलिए फिर मैं बोल रहा हूं हार्मोन ऑप्टिमम इज रिक्वायर्ड टू हैव ए नॉर्मल। अगर कम है ग्रोथ हार्मोन तो आपका लंबाई नहीं बढ़ेगा, अगर ज्यादा हो गया तो आपका बहुत लंबाई बढ़ जाएगा, वो भी ठीक नहीं। तो ये हर हार्मोन जैसे ज्यादा है तो अलग प्रॉब्लम करता है, कम है तो अलग प्रॉब्लम करता है, और नॉर्मल है तो ठीक रहता है। तो आप बहुत सारी चीजें इसलिए देख के पहचान सकते हैं कि इसको क्या पॉसिबिलिटी है बीमारी होने की।
1: बिल्कुल, बड़ी दिलचस्प बात आपने बताई है। और यहां एक चीज जो हड्डियों से जुड़ी बातें हो रही हैं, हड्डियों और हार्मोन्स के रिलेशन की बातें, तो कुछ केसेस जो आपने देखे हैं जिनके जरिए हमारे सुनने वालों को मदद मिलेगी कि ये क्या सिम्टम्स थे और इनका क्या उपाय हुआ।
0: तो ऐसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूं और उदयपुर मेडिकल कॉलेज से मेरी अपनी पढ़ाई करी। तो जब मैं एक किसी कॉन्फ्रेंस में वहां पे गया तो मेरे टीचर थे डॉक्टर डीसी शर्मा साहब, तो उन्होंने कोई पेशेंट उनके पास गया तो उनको समझ नहीं आया, उन्होंने बोला कि यहाँ पे फैसिलिटी नहीं कि हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, तो संजय तुम अगर ठीक समझते हो तो इसको वहां भेज देता हूँ। वो वहां पे आ गए पेशेंट, जब उन पेशेंट का हमने हिस्ट्री लेना शुरू किया तो बोला कि मैं पूरे सब जगह में गया हूँ, दिल्ली बॉम्बे सब जगह पर, कोई बीमारी का ठीक से पता नहीं चला। तो फिर वो पेशेंट हमारे पास आ गया, वो जब आया था स्ट्रेचर पे आया था, हमने उसको एडमिट करा और उसको हम धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन शुरू करें कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। हम एक डेढ़ महीने में उसका बीमारी का हम पता लगाए कि ये बीमारी है, और दुनिया में उस बीमारी केवल उस टाइम में 25 केसेस थे केवल पूरी दुनिया के अंदर,
1: इतनी दुर्लभ,
0: इतनी दुर्लभ। अब दुर्लभ बीमारी है तो उसका बारे में ज्यादा पता नहीं है, दुर्लभ बीमारी उसका इलाज भी नहीं है, तो इलाज कैसे किया जाए
1: जी।
0: तो हमने उसको स्टडी करके एक प्लान किया कि भाई ये दवाई कोशिश करना चाहिए, और भगवान की दया से गॉड्स ग्रेस वो बीमारी के अंदर वो दवाई लग गई और चल गई, और वो पेशेंट हमारे पास से लेट के आया था और चल के गया। फिर उसका छोटा भाई भी आया, उसको भी यही बीमारी थी, वो भी ऐसे ही चल के गया, और उसके जब हिस्ट्री पूछा तो उसकी मदर और उसकी मामी मामा जी उनको भी ये बीमारी थी। तो एक तरह से एक काइंड ऑफ जेनेटिक हो सकता है या एक एनवायरमेंट की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो पेशेंट को हमने ग्रोथ हार्मोन से ट्रीट किया और वो बिल्कुल ठीक होके गए।
1: महिलाओं में इस तरह के कुछ केसेस जिनका जिक्र आप करना चाहें?
0: महिलाओं में इस तरह की बीमारियों में अगेन मैं अगर बोन्स की बात करूंगा तो क्या होता है कि मेनोपॉज के टाइम पे बोन्स खराब होना शुरू होता है
1: जी,
0: और अगर उनको पहले से कोई बीमारी अंडरलाइन चल रही बोन की तो एकदम एक्सजर्बेट हो जाती है।
1: ओ
0: जैसे आपको ऑलरेडी मेनोपॉज में कैल्शियम कम होना शुरू हो जाएगा, एस्ट्रोजन चला गया, और आपको ऑलरेडी कुछ बीमारी है, जैसे हमारे एक पेशेंट थी सीलिएक डिजीज जिसको हम बोलते हैं व्हीट एलर्जी, मे बी नॉर्थ इंडिया में काफी कॉमन है जहां पे व्हीट मेन डाइट है, साउथ इंडिया में उतना कॉमन नहीं होगा। तो उसमें उस लेडी को क्या हुआ कि 45 साल की उम्र में जब महीना बंद होना शुरू हुआ तो उसको अचानक बोन्स वीक होना शुरू हो गई, और बोन्स इतनी वीक हो गई कि वो बेड पे आ गई और उसकी मालिश करने से उसकी फ्रैक्चर हो गया हाथ का।
1: मालिश करना कितना गलत हो गया।
0: हाँ मतलब मालिश करने से ही फ्रैक्चर हो गया, मतलब हल्का ही किया होगा ये तो पता नहीं, बट उससे फ्रैक्चर हो गया, तो उसका बोन्स इतना वीक हो गया।
1: ओहो।
0: और जब उसको हम भर्ती करके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उसमें पता चला कि उसको वीट एलर्जी है, और वीट एलर्जी पहले भी होगी लेकिन जब महीना बंद होना तब वीट एलर्जी और महीना बंद होना दोनों साथ जुड़ गए, तो एक और एक दो की जगह एक और एक 11 हो गया और उसको फ्रैक्चर हो गया। उसको फिर एडमिट करा और उसका इन्वेस्टिगेट किया, उसका कुछ नहीं किया हमने, उसका केवल वीट बंद कर दिया
1: जी।
0: और वो 3 महीने बाद में हमारे पास चलती हुई आई, तो पहले हम उसका वजन कम हो रहा उसके लिए इलाज कर रहे हैं, उसके मोटापे का इलाज करना पड़ रहा है।
1: तो ऐसे दिलचस्प मामले भी आते हैं। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि हार्मोन्स का असर हड्डियों पर भी पड़ता है, जो आज के इस कार्यक्रम का फोकस है।
0: बिल्कुल।
1: और डॉक्टर साहब अब एक गाने पर फोकस किया जाए, आपकी पसंद का अगला गाना बताइएगा।
0: तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था।
1: क्या बात है, ये गाना सुनते हैं, चांद सी महबूबा हो, आनंद बख्शी साहब के ये बोल हैं, सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, बातें हो रही हैं हार्मोन्स और हड्डियों के कनेक्शन की, और आपने बताया कि किस तरह से बीमारी कुछ और है और उसको समझा कुछ और जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: ये आम आदमी के लिए भी उतनी बड़ी चुनौती है जितनी डॉक्टर्स के लिए।
1: या एक्चुअली मैं कह सकता हूं कुछ हद तक, पूरी तरह से नहीं पर कुछ हद तक, बिकॉज बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज होती है जिसके बारे में लोगों को उतना अवेयरनेस नहीं होता है
0: जी,
1: या उसका प्रॉपर रेफरल समझ में नहीं आता। उसका रीजन ये भी हो सकता है, अगर बीमारी पता नहीं तो कैसे रेफर करें, किसको रेफर करें। तो ऐसा डॉक्टर्स में भी हो सकता है, आम आदमी में तो होता ही है पर डॉक्टर्स में भी हो सकता है। और दूसरा, बोन्स की प्रॉब्लम का एक दूसरा दिक्कत उसमें है कि एक कहावत आपने सुना होगा, राजस्थानी में बोलता हूं मैं, बहुत मामे के भांजे भूखे रह जाते हैं। समझ गए
0: जी।
1: मतलब उसमें ऐसा होता है कि भाई वो भांजा उस मामा जी के यहाँ खाना खा लेगा, उसके यहाँ खा लेगा, उसके यहाँ खा लेगा, और अल्टीमेटली भूखा रह जाता है कोई। तो उसी तरह से हड्डी भी बहुत सारे डिपार्टमेंट देखते हैं इसको
0: जी।
1: अब जैसे आपने बताया मीनोपॉज का जिक्र कर रहे, तो अभी ऑब्वियसली मीनोपॉज पे महिला गायनी वाले के पास जाएंगी
0: जी।
1: फ्रैक्चर की बात करें तो पर्सन ऑर्थोपेडिक्स वाले के पास चला जाएगा, और हो सकता है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास आ जाए, या कभी कभी वो रूमेटोलॉजी की बीमारी से कंफ्यूज हो जाता है कि जोड़ में दर्द हो रहा है,
0: संधिवात जैसी संधि।
1: तो उस तरह से बंदा कंफ्यूज रहता है, उसको खुद तो पता नहीं होता कहां जाना होता है, तो वो फिर चक्कर लगाता रहता है। तो उसमें वो अगर सही डॉक्टर के पास पहली बार ही पहुंच गया तो बहुत अच्छा है, अगर वो नहीं पहुंचा, घूमते घूमते लास्ट में उस डॉक्टर के पास आया जिसका ये बीमारी है, तो उसमें उसको काफी टाइम लग जाता है और बीमारी काफी बढ़ भी जाती है, तो उसको फिर नियंत्रण करने के लिए भी थोड़ा और ज्यादा टाइम लग जाता है।
0: एक सही मार्गदर्शन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है।
1: बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मेरे को लगता है आपका ये जो प्रोग्राम आप जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हॉर्मोन्स एंड डायबिटीज, इससे हमारे श्रोताओं को काफी समझ में आएगा और वो सही जगह पे सही डॉक्टर से कंसल्ट कर पाएंगे।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, हड्डियों की बातें तो हमने की, अब दो चीजों की बातें मुझे लगता है कि करना चाहिए, एक तो डायबिटीज की बात और दूसरी थायराइड की बात।
1: बिल्कुल,
0: ये बताइए कि किन हार्मोन्स से ये तब्दीली आती है और किसी को थायराइड उभर के आता है, दोनों तरह के थायराइड, और इसको पहचाना कैसे जाए अर्ली स्टेज पर।
1: थायराइड हार्मोन का भी ऐसा होता है, ऑप्टिमम रहना चाहिए
0: जी,
1: अगर कम हो गया लेवल तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म
0: जी,
1: और अगर लेवल ज्यादा हो गया उसको हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म।
0: दो तरह के हो गए।
1: अब इनमें हाइपोथायरॉयडिज्म काफी कॉमन होता है, ज्यादा कॉमन होता है, और जैसा कि हमने पहले भी बताया महिलाओं में काफी कॉमन होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, और उसका प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, जो कि पहले आज के कुछ सालों पहले ज्यादा उसके बारे में ध्यान नहीं होता था। और उसकी वजह से क्या होता था कि मां को तो प्रॉब्लम है पर बच्चे को भी प्रॉब्लम होता, होने वाले बच्चे को, तो इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड का टेस्टिंग और उसका इलाज बहुत ही जरूरी होता है।
0: ये बहुत याद रखने वाली बात है सभी श्रोताओं की।
1: बिल्कुल, फिर हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में होता है, उसके सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड होते हैं कि जैसे थकान हो रहा है, सुस्ती हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है, किसी को भी कभी भी हो सकते हैं, तो उसमें समझ में नहीं आता कि क्या है। लेकिन इसमें बात यह कि अगर वो सिम्टम लॉन्ग टर्म से चल रहे हैं कि आपको कब्ज रह रहा है, अभी 3 महीने 6 महीने से चलता जा रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको कुछ बीमारी हो सकती है, उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म एक बीमारी हो सकती है
0: जी। जी,
1: जैसे कि आपका चेहरे का एक, भगवान ने बहुत ही फीचर्स हमारे शार्प बनाए, अगर इन पूरी दुनिया में अरबों लोग हैं लेकिन किसी की शक्ल एक दूसरे से बहुत कम मिलती है। तो ये जो कंप्यूटर भगवान ने जो बनाया चेहरे का कंप्यूटर, बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक दूसरी शक्ल नहीं मिलती है
0: जी।
1: लेकिन जब थायराइड डिसऑर्डर्स होता है, अगर वो बहुत एक्सटेंसिव हो जाता है, मतलब बहुत ही हाइपोथायरॉयडिज्म एक्सटेंसिव ग्रेड

0: हो जाए तो उसमें एक शक्ल एक धुंधली हो जाती है, जैसे आपने फोटो कोई खींचा है, फोटो हिल गया है
1: जी,
0: धुंधला हो जाता है, तो एक चेहरे की जो शार्पनेस है वो चली जाती है,
1: नूर चला जाता है,
0: या नूर चला जाता है, तो वो एक हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में सिम्टम्स कॉमन होते हैं, लेकिन अगर लंबे हो तो आपको डॉक्टर्स को कंसल्ट करना है।
1: फिर महिलाओं में भी इस समस्या को लेकर,
0: महिलाओं में दूसरी समस्या उनका अगर महीने में कुछ गड़बड़ हो रही है
1: जी,
0: तो ये थायराइड की बीमारी की वजह से हो सकती है, तो इसलिए उसको जरूर से टेस्ट करना चाहिए, अगर गड़बड़ है तो, और इलाज होने से बिल्कुल ठीक हो जाता है।
1: क्या थायराइड की दवा जीवन भर खानी पड़ती है?
0: बहुत ही कॉमन सवाल है, सब लोग पूछते हैं। मैं ये बोलूंगा कि यस 99.9% हाइपोथायरॉयडिज्म है तो 99.9% लोगों, हमने एक ओपीडी में एक सील बनवा के रखी है
1: जी,
0: कि लाइफ लॉन्ग फॉलोअप।
1: अच्छा, वो सील ही बना ली,
0: सील लगा दी, क्योंकि हम मरीज को कभी कभी बताना भूल जाते तो सील लगा दी कि भैया उस पर रेड कलर में उनको पढ़ने को मिल जाता है कि इसमें लिखा हुआ लाइफ लॉन्ग फॉलोअप, मतलब बराबर लेना है,
1: बहुत ध्यान रखना है।
0: हाँ, कुछ एक पेशेंट्स को रिवर्स हो जाता है बट जनरली नहीं होता है।
1: ये कौन सा वाला है?
0: हाइपोथायरॉयडिज्म बात
1: जी जी।
0: दूसरा, इसका कारण क्या होता है, भगवान ने जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाई उसकी कैपेसिटी बहुत बनाई है
1: जी,
0: जब तक उस ग्लैंड का 90% हिस्सा खराब नहीं होता है, काम करना बंद नहीं करता, तब तक वो बीमारी नहीं होती है।
1: ओके,
0: तो अगर आपका जब बीमारी हो रहा था इसका 90% पर्टिकुलर ऑर्गन पर्टिकुलर ग्लैंड की सेल्स ने काम करना बंद कर दिया, तो केवल 10% बची है। अब वो 10% में कितना रिवाइव हो सकता है कुछ भी करने से, उसका कहना थोड़ा मुश्किल होगा
1: जी।
0: तो इसीलिए 90% डैमेज होने में टाइम भी लगता है, और अगर एक बार 90% डैमेज हो गया, आपको सिम्टम्स आ गए, तो फिर आपको ट्रीटमेंट लगभग लाइफ लॉन्ग ही लेना।
1: और इस 90% डैमेज होने के सिम्टम्स नहीं होते,
0: वो धीरे धीरे होते हैं, कुछ कुछ होना शुरू हो जाते हैं, बट पूरा 100% नहीं होते हैं, कुछ कुछ होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या हो गया, आजकल जो एक इंपॉर्टेंस बढ़ गया रेगुलर चेकअप का, ईयरली
1: जी जी,
0: ईयरली चेकअप में आपको उस बीमारी का पता चल जाता है कि आपका ये बीमारी एबनॉर्मल आना शुरू हो गया, और एबनॉर्मल आना शुरू होने के बाद में आप उसके पीछे लग करके इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पता चल जाएगा ये, तो आपको टाइम से ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। तो फिर उसका दवाई का मात्रा भी उतना नहीं लेना पड़ेगा
1: जी,
0: नहीं तो जब 90% डैमेज हो गया तो दवाई का मात्रा भी ज्यादा लेना पड़ेगा। ये हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। अब रहा हाइपरथायरॉयडिज्म, जब ग्लैंड ज्यादा तो इसमें उल्टा हो जाता है कि इसमें पसीना कम आता है उसमें पसीना ज्यादा आता है, उसमें वजन थोड़ा बढ़ सकता है उसमें काफी कम हो जाता है, उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन होता है उसमें डायरिया होता है
1: जी,
0: इसमें कलर हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म में, उसमें कलर गहरा हो जाता है, डार्कनिंग हो जाती है। और इसके अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म में आंखें बाहर आना शुरू हो जाता है, मोटी हो जाती है, उसमें आंखों पे काफी असर होता है, तो वो भी एक उसका सिम्टम है। तो बहुत सारे लोगों का आंखें प्रोमिनेंट होता है, तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हो सकता है, थायराइड हार्मोन के एक्सेस की वजह से हो सकता है।
1: तो ये सब जो सिम्टम्स हैं उन पर एक तो नजर रखनी चाहिए, और दूसरा आपने जोर दिया कि सालाना चेकअप करा लेना सबसे अच्छा
0: मतलब
1: उपाय है।
0: जैसे 35 साल की उम्र के बाद में अभी गवर्नमेंट भी बोलती है कि भाई आपको कुछ कुछ टेस्ट कराने चाहिए, तो ऐसे ही खास तौर से उनकी पारिवारिक हिस्ट्री है थायराइड की बीमारी की, महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान है, या कुछ जो सिम्टम्स हमने आपको बताए वो लॉन्ग टर्म से चल रहे हैं, तो उन लोगों को अपने थायराइड का टेस्ट जरूर कराना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, थायराइड की बात हमने की, डायबिटीज की बात अब कीजिए।
0: बिल्कुल, उसके बिना तो ये टॉक पूरा नहीं होना चाहिए।
1: तो बताइए कि ये जो मामला है
0: डायबिटीज, एक तरह से कभी किसी जमाने में इसको राज रोग बोलते थे।
1: जी जी,
0: क्या बोलते थे, राज रोग, मतलब राजा महाराजा
1: लोगों को होता था।
0: अभी ये क्या हो गया, आम रोग
1: जी,
0: अब हर किसी को डायबिटीज हो रहा है।
1: इंडिया एक तरह से डायबिटीज कैपिटल,
0: आप ये कह सकते हैं कैपिटल बनता जा रहा है। ऑब्वियसली हमारे श्रोताओं के इसके कारण सबको पता है
1: जी,
0: मैं जस्ट इसको कोरम को कंप्लीट करने के लिए बोल देता हूं कि किस वजह से डायबिटीज ज्यादा हो रही है
1: जी।
0: तो एक कंसेप्ट होता है कि कुछ बीमारियां होती है जेनेटिक्स की वजह से होती है, कुछ एनवायरमेंट की वजह से होती है।
1: बिल्कुल,
0: नेचर एंड नर्चर। तो आपके एनवायरमेंट में जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो तो आपके एक्सपोजर से हो रही है, लेकिन आपको जीन्स की वजह से जो प्रॉब्लम हो तो पिताजी माताजी से आपको जो मिले उसकी वजह से होगा। तो इन जनरल हिंदुस्तान में ये जेनेटिकली वी आर डायबिटीज के लिए प्रीडिस्पोज्ड है जेनेटिकली। और उसका बेस्ट आइडिया, जैसे आप दुबला पतला पर्सन है उसको भी थोड़ा सा तो पेट निकला होगा, वैसे दुबला पतला लेकिन पेट थोड़ा निकला होगा, तो जो पेट निकला हुआ होता है ये एक तरह से आपका खराब हेल्थ का निशानी है। मे भी आज के 40 साल पहले लोग बोलते यार बहुत ही हेल्दी बंदा है, मोटा अच्छा खासा हट्टा कट्टा है, तो उसको

0: बोलते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग हो गया वो हेल्दी नहीं, वो अनहेल्दी है।
1: जी जी।
0: तो जब इस तरह का ये जो पेट आगे निकल गया, ये जो प्रॉब्लम है, ये एक तरह से प्रीडिस्पोज करता है डायबिटीज को। तो हम सब लोगों के लिए एक मैसेज है कि आपका पेट नहीं निकलना चाहिए, उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि जो वजन बढ़ता है सबसे पहले यहीं बढ़ता है।
1: जी जी।
0: और सबसे बाद में यहां से जाता है।
1: जी।
0: तो ट्रेन वाला सिस्टम है, जो ट्रेन लेट हो गई उसको लेट होती रहती है। तो ये भी इस तरह से।
1: जी।
0: तो वजन नहीं बढ़ना चाहिए। अब वजन बढ़ना कॉमन हो गया आजकल, क्यों? कि हम खान पीन उधर से सिस्टर स्विगी और मदर जोमेटो 24 आवर्स खाना सप्लाई करता
1: है। गजब।
0: है ना
1: जी।
0: तो रात को 11 बजे भी खाना खा रहे हैं, 12 बजे भी खाना खा रहे हैं हम लोग,
1: ऐप के जरिए खाना मंगा रहे हैं,
0: ऐप के जरिए खाना मंगा रहे। तो उससे क्या हो रहा है कि आपका खाने का टाइमिंग गड़बड़ हो गया। और खाने का टाइमिंग गड़बड़ होने की वजह से आपका वजन बढ़ जाता है। इसीलिए अगर आपने देखा होगा तो अपने माइथोलॉजी में, इंडियन माइथोलॉजी में ऐसे बोलते हैं कि सूरज के टाइम पे खाना खाना चाहिए, जब सूर्यास्त होने के बाद खाना नहीं खाना। जैसे खासतौर से जैन समाज वगैरह में ऐसा होता है कि वो लोग सूर्यास्त हो गया तो खाना नहीं खाते और सुबह में टाइम पे। तो उसका मतलब ये होता है कि आप खाना खाने के बाद आपको घूमने फिरने का टाइम रहता है थोड़ा, तो आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है। और आपने एक नया शब्द सुना होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग।
1: जी, आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। बहुत ज्यादा चल रहा है।
0: इस पे एक चीज कहना चाहूंगे, हम लोग ना अंग्रेजों से बहुत सीखते हैं, अपने आप से नहीं सीखते हैं। ठीक है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग हिंदुस्तान में कोई नई चीज नहीं है।
1: जी।
0: जैसे रमजान रखते हैं तो हम लोग 12 घंटा खाना खाते हैं, 12 घंटा भूखे रहते हैं।
1: हाँ।
0: ठीक है। अब कुछ नवरात्र व्रत रखते हैं तो उसके अंदर आप दिन में खाना नहीं खाते हैं, आप फलाहार लेते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: ठीक है। तो पहले से कंसेप्ट है। या हमारी दादी नानी जो व्रत उपवास रखती है, कॉमन है उनको भी, अमावस्या करेंगी, पूर्णिमा करेंगी, या और अलग अलग धर्म में अलग अलग तरह से होता है, मुझे दूसरों का उतना शायद पता नहीं, तो ऐसे फास्ट रखते थे तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती थी। पर अब क्या, जब अंग्रेजों ने बोला कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है तो हमने उसको लपक लिया भी, इंटरमिटेंट फास्टिंग होना चाहिए।
1: जी, जी, जी।
0: जबकि हमारे कंसेप्ट में पहले से इंटरमिटेंट फास्टिंग है। तो ये एक अच्छा चीज हो सकता है कि हम ये एक हैबिट डेवलप करें कि खाने का हम टाइम फिक्स करें कि हम 7 बजे बाद नहीं खाएंगे। जैसे कुछ कंट्री के अंदर डिनर टाइम होता है, अगर आप उसके बाद डिनर के लिए ऑर्डर करोगे तो डिनर नहीं मिलेगा आपको।
1: जी जी।
0: तो उसका रीजन ये है कि आपको अच्छा हेल्थ रखने के लिए खाना टाइम पे खाना चाहिए। तो ये एक चीज अच्छा आपके डे टू डे हैबिट में हम कर सकते हैं। और मैं अपने श्रोताओं को एक छोटा सा टिप दे रहा हूं कि वो अगर अपना खाना शाम का खाना 7 बजे के पहले खा सकें और सुबह का खाना 8 बजे खाएं ब्रेकफास्ट से, तो आपका पूरा लगभग 12 से 14 घंटे आप भूखे रह गए। तो आप हर रोज इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो।
1: क्या बात।
0: और उसका बहुत अच्छा असर होने वाला आपके हेल्थ के ऊपर में। कोई अगर इस चीज को 15 दिन भी करके देखेगा तो उसका मुरीद हो जाएगा कि मुझे ये सिस्टम करना चाहिए।
1: आपने जो बताया उसमें लंच नहीं है ना, उसमें सुबह लंच ब्रंच जैसा कुछ? हाँ, है।
0: नहीं, उसमें आप लाइट लंच ले सकते हैं कि जैसे आप ऑफिस में हैं तो आप ऑफिस में एक फ्रूट ले सकते हैं, एक सिंपल एक चपाती ले सकते हैं, या आधा एक सैंडविच ले सकते हैं, ऐसा लाइट रख सकते हैं। ब्रेकफास्ट ले लिया, फिर ऑफिस आवर्स में आप
1: कुछ ले लिया,
0: कुछ लाइट ले लिया, तो आपको 7 बजे फिर से भूख लग जाएगी, तो फिर आप खाना टाइम पे खा पाओगे।
1: यही होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग। 12-13 घंटे
0: 12-13 घंटे होगी, आपकी सेहत बिल्कुल फिट रहेगी।
1: बिल्कुल। तो अब यहाँ एक गाना सुनते हैं।
0: हाँ।
1: और उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
0: इसका गाना आप सुन, चांद सा रोशन चेहरा।
1: क्या बात है, कश्मीर की कली फिल्म का ये गाना है, ओपी नय्यर का संगीत। सुनते हैं
0: ये चांद।

0: का।
1: डॉक्टर साहब आप एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, मैंने ठीक बोला ना?
2: बिल्कुल ठीक।
1: आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो शाखा है वो और क्या क्या चीजें देखती है?
2: बहुत ही बढ़िया सवाल है और मेरे को जवाब देने में बहुत मजा आएगा।
1: अच्छा,
2: एंडोक्राइनोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जिसमें मल्टीपल ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती है
1: जी,
2: और ये ग्लैंड्स टॉप से लेके बॉटम तक आपकी बॉडी में रहती है।
1: हाँ, ये बात हमें नहीं पता
2: तो
1: थी।
2: सबसे पहले मैं बोलूंगा तो ब्रेन में दो ग्लैंड्स होती है, तीन ग्लैंड्स होती है।
1: अच्छा,
2: एक ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरी ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस, और तीसरी ग्लैंड होती है पीनियल ग्लैंड। जो पीनियल ग्लैंड होती है उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, जो आपका स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है।
1: अच्छा,
2: कि आप कितनी बजे उठ रहे हैं तो उसका क्या असर होगा, कितनी बजे सो रहे हैं तो उसका क्या असर होगा, ये सब कंट्रोल करती है। हाइपोथैलेमस होता है और एक पिट्यूटरी होता है, दोनों
1: जी
2: पेयरिंग में काम करते हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस एक तरह से पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, और ये करीब 6 हार्मोन सिक्रीट करती है ब्रेन से
1: जी,
2: और ये 6 हार्मोन्स बाकी की बॉडी की रिमेनिंग ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, जिसमें आपका थायराइड ग्लैंड आता है, जिसमें आपका एड्रेनल ग्लैंड आता है जो कि किडनी के ऊपर होता है, जिसमें आपका ओवरीज होती है जो महिलाओं के अंदर अंडा
1: प्रजनन का काम है,
2: या और मेल में टेस्टिस होती है जो कि जहां से स्पर्म बनते हैं। तो इन सबको ये इसके ऊपर के थ्रू कंट्रोल करती है। तो एक तरह से आपका एक सिस्टम हो गया, एक हाइपोथैलेमस, एक पिट्यूटरी, और फिर उसके बाद में सारी ग्लैंड्स।
1: तो पूरा शरीर कवर हो गया,
2: पूरा शरीर कवर हो गया। उसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स जो रह गई है, एक है पैराथायराइड ग्लैंड जो थायराइड के पास में होती है और उसका बोन पे बहुत इफेक्ट होता है
1: जी,
2: और एक पेनक्रियाज आपका जिससे डायबिटीज का रिलेशन है। इनका अभी ऊपर से कंट्रोल पता नहीं है, पर मेरा ऐसा मानना कुछ कंट्रोल होगा, हम रिसर्च करेंगे तो मिल जाएगा, कुछ रिलेशन होना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: क्योंकि बाकी सब चीजें कंट्रोल हो रही तो ये कैसे कंट्रोल नहीं हो गया ऊपर से
1: जी जी,
2: ऐसा शायद होगा। तो ये सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, तो सारी की सारी पूरी बॉडी में है। तो अब बॉडी का कोई भी प्रॉब्लम होगा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास हो सकता है। इसलिए कभी कभी मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि अगर आपको कोई बीमारी समझ में नहीं आ रही है, जो एमडी स्टूडेंट्स, उनको एक बार एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जरूर भेज देना। हो सकता है कि वो बीमारी वहां से पता चल जाए कि इनकी क्या बीमारी है।
1: बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपने पैंक्रियास का जिक्र किया, इससे जुड़ी बीमारियों के बारे में मैं आजकल यहां वहां काफी पढ़ रहा हूं, क्या ये बढ़ रहा है?
2: तो पैंक्रियास का बीमारी सीधा सीधा डायबिटीज ही है एक तरह से, आप देखेंगे तो पैंक्रियास से रिलेटेड डायबिटीज है। पैंक्रियास का टाइप 2 डायबिटीज सबसे कॉमन है, तो डायरेक्टली उसमें नहीं होता, पर उसमें एक तरह से वजन बढ़ने से आपका जो इंसुलिन सिक्रीट होता है पैंक्रियास से वो इफेक्टिव नहीं रहता है। तो इसी तरह का कि आपके पास ताला लगा हुआ है, चाबियां बहुत सारी है पर कोई चाबी उसमें फिट नहीं हो रही है
1: जी जी,
2: तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। तो आपका इंसुलिन तो बहुत है बॉडी के अंदर, लेकिन वो आपकी सेल में नहीं जा पा रहा है। क्यों? कि वो सही सिग्नल नहीं दे रहा वहां पे। ठीक है, ऐसे कमरे में जाना, आपको ताला की चाबी खोल के जाना, लेकिन आपके पास सही चाबी नहीं तो ताला नहीं खुलेगा। इसी
1: क्या वजह होती होगी इसकी?
2: इसकी वजह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वजह है कि वजन ज्यादा होना।
1: अच्छा,
2: डायरेक्ट रिलेशन है उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस का वजन ज्यादा होना से। और या फिर आप पेनक्रियाज को खराब कर लेते किसी कारण से, जो कि कॉमन है हमारी सोसाइटी में, अल्कोहल, उसकी वजह से आपका पेनक्रियाज खराब हो जाता है। तो उससे फिर वो आपका पेनक्रियाज का बीटा सेल्स डैमेज हो जाएगा, तो फिर इंसुलिन बनेगा ही नहीं। जब बनेगा ही नहीं तो आपको डायबिटीज हो जाएगा। टाइप 2 में इंसुलिन ज्यादा बन रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, अतिवृष्टि और अनावृष्टि दोनों ही हो रही है।
1: दोनों हो रही है, मतलब बैलेंस की जो आपने बात की थी,
2: फिर से बैलेंस की जरूरत है। बिल्कुल
1: डॉक्टर साहब, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस किस किस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर आता है? एक अधेड़ उम्र में पहुंचने के बाद जिस तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उससे महिलाएं कैसे निपटें खासतौर पर?
2: या अधेड़ उम्र में मैं ये बोलता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो रोल प्ले करता है वो मेनोपॉज में जो चेंजेस होते हैं वही महत्वपूर्ण है। और उसमें ऐसा देखा गया कि जैसे मन उदास रहना है, या काम में कंसंट्रेशन नहीं करना है, या आपको अचानक पसीना आना है, घबराहट होना है, धड़कन बढ़ जाना है, ये सारा कुछ होता है। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इन सब चीज़ों का एक तो जानना जरूरी है। बहुत बार पेशेंट्स को हम बोल देते हैं कि भाई आपको ये बीमारी है, चिंता करने का जरूरत नहीं, आप ठीक हो जाओगे। तो

0: 50% पेशेंट ठीक हो जाते हैं कि यार पहले वो सोचें कुछ बड़ी बीमारी तो नहीं है हमारे को, तो अगर उनको आप एक्सप्लेन कर देते हो कि भाई आपका बीमारी नहीं है, ये आपका जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं मोस्ट लाइकली आपका महीना बंद होने की वजह से हो रहे हैं, आप ठीक हो जाओगे, तो काफी लोग ठीक हो जाते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम नहीं आती ज्यादा। लेकिन कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है क्योंकि उनको थोड़ा सीवियरिटी ज्यादा होता है, तो सीवियरिटी ज्यादा, तो ऐसे लोगों को फिर आपको दवाई देना पड़ता है।
1: ये दवाएं हार्मोन्स की होती हैं?
0: हाँ, एक तरह से हार्मोन्स होते हैं, तो अगर बहुत पसीना आ रहा घबरा रहा उसके लिए हार्मोन्स दे सकते हैं, बट वो भी एक प्रॉपर तरीके से सुपरविजन में होता है, तो इसमें गायनेकोलॉजिस्ट का भी काफी रोल रहता है और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का भी रोल रहता है, तो ये दोनों मिलकर के इस तरह की बीमारी के लिए ट्रीटमेंट लिखते हैं।
1: क्या बालों का झड़ना जो है वो हार्मोन से जुड़ा हुआ है?
0: या फिर मैं आपको बोलूंगा कि ये ऑप्टिमम लेवल ऑफ हार्मोन्स बहुत जरूरी है बालों के हेल्थ के लिए, क्योंकि बॉडी को क्या लगता है कि जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है उनका देख रेख करना ज्यादा जरूरी है, न कि जो बाहर की सुंदरता है। बॉडी को बाहर की सुंदरता से लेना देना नहीं है ज्यादा। तो आपको कोई प्रॉब्लम है तो पहले हॉर्मोन्स या बॉडी अपने इंटरनल जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है उनका देख रेख करेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और उसके बाद में बाहर की चीजों पे आएगी।
1: हाँ, तो एक पूरा बैलेंस होना।
0: बिल्कुल, अगर बैलेंस
1: सही चलना ज्यादा जरूरी है।
0: थायराइड हार्मोन का प्रॉब्लम है तो बाल गिर सकते हैं, कोर्टिसोल हार्मोन एक्सेस में तो बाल गिर सकते हैं, तो ये इस तरह के अगर उनका हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस है तो ये प्रॉब्लम होती है।
1: जी डॉक्टर साहब, आप न केवल मरीजों को देखते हैं बल्कि आप एक प्रोफेसर भी हैं एक बहुत बड़ी संस्था, बहुत बड़े हॉस्पिटल में, तो ये दोनों चीजों का जो अनुभव है ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो इससे जुड़े कुछ दिलचस्प अनुभव हमारे साथ बांटिए।
0: या तो इसमें ऐसा है कि बड़े हॉस्पिटल में काम करने का एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि हम बहुत पेशेंट्स देखते हैं जो आम डॉक्टर्स उतने पेशेंट नहीं देखते हैं।
1: अमूमन आप दिन भर में कितने पेशेंट्स देखते हैं?
0: अमूमन पीजीआई चंडीगढ़ का जो मेरा डिपार्टमेंट है, एंडोक्राइन डिपार्टमेंट है, उसमें एक दिन के 1200 पेशेंट्स आते हैं लगभग।
1: अरे 1200?
0: हाँ, तो ये तीन दिन हमारा ओपीडी होता है, उसमें लगभग 1200 पेशेंट आते हैं।
1: जी,
0: तो ऑब्वियसली आप जितने पेशेंट देखोगे उतना आप सीखोगे,
1: अनुभव बढ़ेगा,
0: उसका आपका एक्सपीरियंस उतना होगा। आप कॉमन डिजीज तो देखोगे, बहुत रेयर से रेयर डिजीज भी देखोगे, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। फ्यूचर में आपने एक कोई पेशेंट देख लिया जिसका ये प्रॉब्लम आपने डायग्नोस कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम में जैसे वो पेशेंट है आप पहचान जाओगे, यार ये पेशेंट तो इस तरह का हमने देखा, तो हमारा एक्सपोजर और एक्सपीरियंस बहुत कई गुना ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू जो लोग दूसरी जगह काम करते हैं जिनको उतना पेशेंट एक्सपोजर नहीं है।
1: जी जी।
0: तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो रेयर डिजीज आप डायग्नोस करते हो, आप ट्रीट करते हो, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, ग्रेटिफिकेशन मिलता है कि यार हमने ये काम अच्छा किया है, तो उसमें बहुत मजा आता है। तो आपको इसके साथ साथ फिर उसके अलावा इंस्टीट्यूट में रहने से, जैसे मेरे इंस्टीट्यूट में एक रिसर्च जुड़ा हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, तो रिसर्च करते हैं, तो हम नया कोई दवाई उसका ट्रायल करते हैं, कोई नया दवाई बनाते हैं, या बहुत बार अभी हम ऐसा भी करते हैं कि हमारी बहुत सारी इंडियन मेडिसिंस हैं उनके बारे में प्रॉपर डॉक्यूमेंट करके हम बताते हैं कि ये दवाई काम करता है, इसको इस तरह से यूज करने से बेटर काम करेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा एंगल है और मेरे को लगता है कि इस फील्ड में और ज्यादा काम करने का जरूरत भी है, ताकि हम स्वदेशी चीजों का जो कि ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में, क्योंकि अल्टीमेटली सारी दवाइयां आई कहां से, नेचर से आई है। कोई भी दवाई आई पहले तो नेचर से आई, फिर उसको केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन करके हमने फैक्ट्री में बनाना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है कि हर बीमारी का इलाज
1: नेचर के जरिए
0: कहीं कहीं है। तो हमें जो हमारे हिस्ट्री में या जैसे हमारे यजुर्वेद है वो एक तरह से मेडिसिन का वेद है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, तो हमें वो पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए उसमें क्या चीजें है। तो हम उस तरह से कुछ कुछ फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी बताया उसके लिए हमने हड्ड जोड़ करके एक प्लांट होता है, वो प्लांट का इफेक्ट हमने देखा है कि इट इज वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस।
1: क्या बात है।
0: हाँ,
1: तो रिसर्च एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है मेडिकल की दुनिया।
0: एक्साइटिंग है, जैसे वो इस तरह से एक्साइटिंग है, जैसे आप सुबह सुबह उठ करके फटाफट ईमेल चेक करते हो, यार रात को क्या ईमेल आया देखते हैं क्या है ना, ऐसा लगता है ना कि आप उठ करके व्हाट्सएप देखते हो, अरे कुछ मैसेज तो नहीं आया। तो इसी तरह से रिसर्च में आपको अगर इंक्विजिटिवनेस है, कुछ सीखना नया करना है, कोई बीमारी आपको पता है यार इसका क्या हो सकता है।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज़ ऑन AIR ऐप एवं DTH के माध्यम

युववाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है युवाओं के विशेष कार्यक्रम युववाणी में। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम करते हैं कुछ बातचीत युवाओं से जुड़े मसलों पर, उनके मुद्दों पर, और सुनते हैं कुछ बेहद खूबसूरत गीत। सावन का महीना चल रहा है और आज दिन है सोमवार, यानी बेहद खास दिन सावन के महीने का। तो चलिए युववाणी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस नचारी के संग।

0: शारदा सिन्हा जी के स्वर में अभी आप आनंद ले रहे थे इस नचारी का। कार्यक्रम युववाणी जारी है संतराल के बाद।
1: काटे तो समय ना गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
2: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
0: अंतराल के बाद पुनः स्वागत है आपका आपके प्रिय कार्यक्रम युववाणी में। जो युवा श्रोता हैं हमारे, जो हमसे जुड़े हैं इस वक्त, हम एक अहम चीजों पर बात करने वाले हैं। एक ऐसे अहम मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं आपके साथ जो दिन प्रतिदिन हमारे दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए लेकिन कहीं ना कहीं व्यस्तता में हम इसे भूल जाते हैं। हम खुद की सफाई रोज कर लेते हैं, दांतों को मांजते हैं, स्नान करते हैं, नाखून काटते हैं, घरों की भी सफाई कर लेते हैं, अपने कमरे में झाड़ू पोछा करते हैं, जंगले लगे हुए हो तो उसे हटा देते हैं। लेकिन समाज के प्रति जब ये दायित्व तो हमारे सामने आता है तो कहीं हमसे चूक हो जाती है, हम पीछे रह जाते हैं। और यही कारण है कि हम निर्भर हो गए हैं कि सरकार जो कर रही है उतने से ही सफाई हो जाएगी, जबकि यह सामाजिक दायित्व है। विशेषकर युवा वर्ग अगर संज्ञान लें तो हमारे गांव, हमारे शहर, हमारा अपना क्षेत्र, मोहल्ला काफ़ी साफ सुथरा रह सकता है। और केवल साफ सुथरा ही क्यों, जब साफ सुथरा होगा तो स्वच्छ होगा, स्वच्छ होगा तो स्वास्थ्य बढ़ेगा और धीरे धीरे फिर सुंदरता भी बढ़ेगी। अपने क्षेत्र को सुंदर बनाने के लिए कई युवाओं ने कई जगह विशेष प्रयास किए हैं। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोगों ने भी देखा होगा, चाहे वो गंगा नदी की सफाई हो, अपने गांव के तालाब की सफाई हो, इलाहाबाद में नालों की सफाई हो, यमुना नदी की सफाई हो, युवा वर्ग आगे बढ़कर आया और एक चमत्कारी परिणाम उन्होंने दिया है। हम सब भी ऐसा कर सकते हैं। हम सब भी नदियों वाले क्षेत्र में रहते हैं, विशेषकर जलाशय वाले क्षेत्र में। हमारे यहाँ पग पग पोखर कहा गया है, यानी हर कदम पे जहाँ तालाब हो और तालाब गंदा हो कितना बुरा लगता है। आइए हम युवा मिलकर ये तय करें कि अब

अपने क्षेत्र के सभी जलाशयों को, तालाबों को, कुओं को, पेयजल वाले चापाकलों को, नल वाले स्थलों को स्वच्छ रखने के लिए दृढ़ संकल्पित होंगे।

0: शिव शिव ग्रहण करूं जलधारा। अभी आप सुन रहे थे मीरा मिश्रा एवं सहेलियों के सुर में यह गीत। कार्यक्रम युववाणी जारी है एक अंतराल के बाद।
1: सांप काटे तो समय ना गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
2: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी आपकी आवाज आपके साथ।
0: आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी।

अभी सुन रहे थे वीरेंद्र कुमार मिश्र के स्वर में यह शुभ भजन। बातचीत चल रही थी समाज, स्वच्छता और युवा के विषय में। हमने बात किया कि अगर युवा जागृत हों और जलाशयों की सफाई पर ध्यान दें तो हम यह कर सकते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण भी हमारे सामने हैं। साथ ही साथ युवा श्रोताओं ध्यान देंगे हम कि हर जगह कचरे के निपटान के लिए, कचरे का निपटारा करने के लिए बहुत उचित व्यवस्था नहीं होती है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में जगह अधिक होने के कारण कचरे का बहुत ज़्यादा अंबार नहीं लगता, शहर में ज़्यादा लगता है। लेकिन इसके बावजूद हम यदि ठान लें कि हम कूड़े को एकत्रित करेंगे इस तरह कि गीला और सूखा कचरा अलग अलग हो, और गीले कचरे से अगर हम खाद तैयार कर पाएं जिसे जैविक खाद कहा जाता है, तो यह उपाय अगर युवा मिलकर करें तो अपने क्षेत्र के कृषि के विकास में भी योगदान दे सकते हैं। साथ ही साथ हमारे कचरे का निपटारा भी हो जाएगा। और जो सूखा कचरा है उसमें भी दो तरह के कचरे हमारे पास आते हैं, एक जो रिसाइकल किया जा सकता है, जिसका दोबारा प्रयोग किया जा सकता है, और दूसरा जिसका दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। दोबारा प्रयोग किए जा सकने वाली चीज़ों का अगर हम उपयोग करें, उन्हें दोबारा प्रयोग में लाने योग्य बनाकर हम बाजार तक पहुँचाएँ, तो यह अपने आप में एक प्रकार का स्टार्टअप होगा। अभी आपने प्रधानमंत्री जी कह रहे थे मन की बात में, सीतामढ़ी में इस तरह का एक प्रयोग किया जा रहा है जो प्लास्टिक से बनाए जा रहे हैं खाट, और वो बाजार में बिक रहे हैं। तो हम आप भी इस तरह की चीज़ों के विषय में सोच सकते हैं। पुराने खाली शीशे के बॉटलों को गुलदस्ते में बदला जा सकता है, गुलदान में बदला जा सकता है। प्लास्टिक की बॉटलों से तार निकाला जा सकता है, उन्हें अलग अलग तरह से बिना जा सकता है, और अलग अलग चीज़ें बनाई जा सकती हैं। अगर हम सोच कर देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके दिमाग में इस वक्त, बहुत ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं। मुझसे भी ज़्यादा आप सोच सकते हैं कि किन चीज़ों का क्या उपयोग किया जाए, तो वो नए तरीके से फिर से यूज़ हो जाएंगे, रीयूज़ हो जाएंगे। तो युवाओं, हमें चाहिए इस देश के नागरिक होने के नाते, अपने क्षेत्र के नागरिक होने के नाते, अपनी जगह को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें। किसी एक दिन नहीं, हफ्ते भर नहीं, जीवन भर। यह हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है, और खुद को संतुष्टि देने के लिए कि हम राष्ट्र की सेवा कर पा रहे हैं इसी रूप में, यह भी हमारे मन में जागृत होता है। तो चलिए संकल्प लीजिए कि हम आज से गीला और सूखे कचरे का सही निपटारा करेंगे।

0: सांप काटे तो समय न गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
1: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatna.com@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी आपकी आवाज आपके साथ।
3: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
4: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
5: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथी सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
4: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
3: आकाशवाणी दरभंगा

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा से कार्यक्रम युववाणी और घड़ी की सुई आप कह रही हैं कि हमारे विदा लेने का वक्त आ गया है। आज हमने बातचीत की समाज, स्वच्छता और युवा विषय पर। युवा अगर एक दूसरे को प्रेरित करें, एक दूसरे का साथ दें तो हम अपने पूरे समाज को स्वच्छ बना सकते हैं। कूड़े कचरे का सही निपटारा, समय समय पर सफाई अभियान चलाना और समाज की गंदगी को दूर करने में अपना योगदान देना, ये हम युवाओं का कर्तव्य बनता है। और नैतिकता भी यही कहती है कि हम जिस जगह रहते हैं उस जगह को साफ और स्वच्छ रखें। उम्मीद है आज का अंक आपको पसंद आया होगा। यदि आप चाहते हैं किसी खास विषय पर हम बातचीत करें तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं अपने सुझाव। हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी दरभंगा, 8460004। तो अब दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।

युववाणी युवा श्रोताओं को संबोधित यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से सुन रहे थे। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

आकाशवाणी दरभंगा से प्रस्तुत है नए जमाने के नए तराने। सुनिए पहला गाना अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म एनिमल से।

आप सुन रहे हैं नए जमाने के नए तराने, आकाशवाणी दरभंगा से। अगला गाना हमने लिया है फिल्म दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी से। आवाज है अरुण देव यादव की।

नए जमाने के नए तराने। अगला गाना सुनिए उदित नारायण की आवाज में, फिल्म है श्रीकांत।

नए जमाने के नए तराने। कार्यक्रम के आखिरी में सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में गाया ये गाना, जिसे हमने लिया है लापता लेडीज से।

नए जमाने के नए तराने का ये सफर यहीं तक, दीजिए इजाजत। अभी आप आकाशवाणी दरभंगा से फिल्म संगीत का आनंद ले रहे थे। अब से कुछ ही देर में समाचार का प्रसारण होगा, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। इस विधेयक के माध्यम से भुगतान

0: एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन किया गया है। संसद ने बैंककार बहिस्साक्ष विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी, लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसका उद्देश्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि यह विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैंककार बहिस्साक्ष अधिनियम 1891 में बनाया गया था, जब बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह से कागजी थी। लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 बिना चर्चा के पारित हो गया। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुए कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य सलाहकार समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
1: छात्र आंदोलन पर पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूरी तरह से सुनेंगे।
0: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की।
2: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
0: ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि जब तक अमेरिका ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखेगा तब तक होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से नहीं खोला जाएगा। श्री बघाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की सैन्य कार्रवाई के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और harghartiranga.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप से पहले इसकी संरचना में बदलाव किए गए हैं। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप एवं DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रम एवं कल पहली सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आकाशवाणी दरभंगा से अब से कुछ ही देर के बाद यानी संध्या के 6:10 पर सुनिएगा विद्यापति गीत। मैथिली संवाद का प्रसारण करेंगे संध्या 6:25 पर। गांव घर अनुभव के चश्मा सा ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे संध्या 6:30 पर। इसी के अंतर्गत सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। खेती गृहस्थी सुनिएगा संध्या 7:00। हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार आप सुन पाएंगे संध्या 7:30 पर। 7:47 पर सुनिएगा जिले

रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9 और रात्रि 9:15 पर उर्दू खबर का प्रसारण होगा। पब्लिक स्पीक यह कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आप सुन पाएंगे रात्रि के 10 बजे। रात्रि 10:19 पर सुनवाएंगे कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। रात्रि 11 बजे सुनिएगा हिंदी समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी समाचार। कल पहली सभा का आरंभ करेंगे वंदे मातरम गान के संग प्रातः 5:45 पर। चिंतन आप सुन पाएंगे प्रातः 5:50 पर। स्वाभिमान आलेख एवं वाचन होगा कुसुमाकर दुबे का। कृषि चर्चा सुनवाएंगे प्रातः 5:55 पर। कृषि के आधुनिक एवं उन्नत खेती स्वास्थ्य चर्चा सुनिएगा प्रातः 6:05 पर। विषय होगा ब्रेन ट्यूमर लक्षण और इलाज, विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर एजाज आलम। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुनवाएंगे प्रातः 6:10 पर। रामचरित मानस गान सुनिएगा प्रातः 6:40 पर। गायक होंगे भूपेंद्र सिंह एवं मिताली भी सिंह। प्रातः 6:55 पर संस्कृत समाचार और 7 बजे आप हिंदी समाचार सुन पाएंगे। प्रातः 7:05 पर सुनिएगा हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। समाचार प्रभात का प्रसारण करेंगे प्रातः 8 बजे। मॉर्निंग न्यूज प्रातः 8:15 पर और खबरनामा 8:30 पर। हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनिएगा प्रातः 8:48 पर। अंजुमन उर्दू कार्यक्रम का समय होगा प्रातः 9:05 पर। प्रातः 9:50 पर आनंद ले पाएंगे फिल्म संगीत का। बजी का कार्यक्रम अंगना का प्रसारण करेंगे प्रातः 10:30 पर। आलेख संकलन एवं वाचन गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव का होगा, प्रस्तुतकर्ता होंगे मितेश कुमार मिश्रा। प्रातः 11 बजे सुनिएगा उपशास्त्रीय संगीत, इसके अंतर्गत सुनवाएंगे शोभा गुल्डू का गायन। एनसीआरटी प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन पाएंगे प्रातः 11:30 पर। फिल्म संगीत सुनिएगा दोपहर के 12 बजे हेलो जिंदगी, यह कार्यक्रम आप सुन पाएंगे दोपहर 12:30 पर। देशभक्ति गीत सुनिएगा दोपहर के 1:10 पर। दोपहर 1:15 पर फिल्म संगीत। दोपहर 2:03 पर सुनिएगा आप प्रादेशिक समाचार। इलाकाई खबर का प्रसारण करेंगे दोपहर 2:05 पर। रोजगार सूचना दोपहर 2:10 पर। फिल्म संगीत का आप आनंद ले पाएंगे दोपहर 2:30 पर। और पहली सभा के अंत में यानी संध्या 3 बजे सुनिएगा बज्जी का लोकगीत। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दरभंगा से आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण एवं कल प्रथम सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आकाशवाणी दरभंगा से प्रस्तुत है विद्यापति गीत। आज कलाकार हैं राम कुमार मल्लिक एवं सूर्य नारायण पोद्दार।

आकाशवाणी दरभंगा से आप विद्यापति गीत का आनंद ले रहे थे। कलाकार थे रामकुमार मल्लिक और सूर्य नारायण पोद्दार। अब आप हमारे पटना केंद्र से मैथिली संवाद सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार। आकाशवाणी दरभंगा आ एफएम रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी कल्पना झा। हर घर तिरंगा अभियानक अंतर्गत आई पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकालल गेल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में निकालल गेल ई यात्रा गांधी मैदान स्थित जेपी गोलंबर सँ शुरू भेल आ कारगिल चौक लग समाप्त भेल। 1.5 किलोमीटर नम्हर एहि यात्रा में राजस्व आ भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी सहित राज्य मंत्रिमंडलक कतेको सदस्य, विधायक आ जनप्रतिनिधि सम्मिलित भेलाह। तिरंगा यात्रा में पैघ संख्या में स्कूली बच्चा सब आ आम लोक सब सेहो भाग लेलनि। तिरंगा यात्रा शुरू होयबा सँ पहिने आयोजित समारोह के संबोधित करैत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहलनि जे तिरंगा हमर सभक स्वाभिमानक प्रतीक अछि आ एकर सम्मान करब सब भारतीय के दायित्व अछि। ओ लोक सब सँ जिला, नगर निकाय आ पंचायत स्तर पर आयोजित

0: होमयवला तिरंगा यात्रा मे सम्मिलित हेबाक लेल सेहो आग्रह कयलनि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आइ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाक अंतर्गत लाभार्थी सभक खाता मे 1100 टाका मासिक पेंशनक राशि डीबीटीक माध्यम सँ हस्तांतरित कयलनि। एहि के अंतर्गत मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना आ बिहार निःशक्तता पेंशन योजना सहित 6 टा योजनाक लाभुक सभक मध्य राशिक हस्तांतरण कयल गेल। कार्यक्रम के संबोधित करैत मुख्यमंत्री कहलनि जे सरकार आकांक्षी सब के सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराबय लेल प्रतिबद्ध अछि। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव आ समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता उपस्थित छली। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश कहलनि जे पंचायत चुनाव के लऽ कऽ निर्वाचन आयोगक दिशा निर्देश में परिसीमनक प्रक्रिया शुरू भऽ गेल अछि। आइ कटिहार में संवाददाता सभ सँ गपशप करैत ओ कहलनि जे परिसीमन पूरा भेलाक बाद ही पंचायत चुनाव कराओल जायत। श्री प्रकाश कहलनि जे एखन पंचायत चुनावक समय सीमा तय करब संभव नहि अछि। प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 विरोध में राज्यक सब सरकारी महाविद्यालय आ विश्वविद्यालय सभक 12,000 सँ बेसी शिक्षक आ शिक्षकेतर कर्मी आइ सामूहिक अवकाश पर रहलाह। ई सब विश्वविद्यालय मुख्यालय पर अपन मांग सभक समर्थन में धरना देलनि। शिक्षक संगठन प्रस्तावित अधिनियम सँ विश्वविद्यालय सभक स्वायत्तता प्रभावित होयबाक आरोप लगबैत सरकार सँ पुनर्विचारक मांग कयलक अछि। आई सावनक दोसर सोम अछि। एहि अवसर पर मंदिर आ शिवालय सब मे भोरहि सँ भगवान शिव के जलाभिषेकक लेल भक्त सभक पाँति लागल अछि। पूरा वातावरण ओम नमः शिवायक मंत्रोच्चार सँ गुंजायमान अछि। हमर संवाददाता सब जनौलनि जे सुल्तानगंजक अजगैबीनाथ, मुजफ्फरपुरक गरीबनाथ, सोनपुरक हरिहरनाथ, रोहतासक गुप्ताधाम, जहानाबादक वाणावर, पटनाक बैकटपुर धाम, लखीसरायक अशोक धाम, पूराक सिंहेश्वर स्थान, दरभंगाक कुशेश्वर स्थान, सुपौलक तिलेश्वर स्थान आ सहरसाक मटेश्वरनाथ मंदिर सहित कतेको मंदिर सब मे पैघ संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के पूजा अर्चना क जलाभिषेक क रहल छथि। मुजफ्फरपुरक बाबा गरीबनाथ मंदिर में पहिल बेर कांवड़िया सब पर पुष्प वर्षा कयल गेल। एम्हर भागलपुरक सुल्तानगंज में पैघ संख्या में कांवड़िया उत्तरवाहिनी गंगा जल उठाबय लेल पहुंचि रहलाह। ई कांवड़िया 105 किलोमीटर से बेसिक दूरी तय कर झारखंडक देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथक जलाभिषेक करताह। प्रदेश में मॉनसूनक सक्रियता सँ वर्षाक क्रम जारी अछि। मौसम विभाग सँ भेटल जनतबक अनुसार पछिला 24 घंटाक दरमियान राज्यक उत्तरी भाग में कतेको ठाम हल्का सँ मध्यम वर्षा भेल अछि। पूर्णियाक श्रीनगर में सबसँ बेसी 58.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड कयल गेल। मौसम पूर्वानुमान में जनाओल गेल जे काल्हि राज्यक उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व भाग में कतेको ठाम तेज वर्षाक संग वर्षाक संभावना अछि। एहि दरमियान वज्रपातक चेतावनी सेहो जारी कयल गेल अछि। सीतामढ़ी के विक्रम उमेश कुमार पेरूक लीमा में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 में स्वर्ण पदक जीतलनि अछि। श्री कुमार ई पदक पुरुष एकल वर्ग में अपन नाम कयलनि अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप एवं DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गाम घर।

आजुक गाम घर सुननिहार स्नेही श्रोता भाई बहन लोकन के उगना भाई के नमस्कार, संगे अनिल भाई अहू के नमस्कार।

0: नमस्कार नमस्कार उगना भाई, आई सोम दिन आजुक दिन गाम घरक दलान पर हम सब वृद्ध लोकन के संबोधित कार्यक्रम सुने छी अनुभवक चश्मा।
1: आई कार्यक्रम अंतर्गत आई हमरा लोकन लोक आयल छन एकटा प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद, एकर संगे एकटा बाह्य ध्वनांकन पर आधारित भेंट वार्ता सेहो सुनब, किछु संदेश सेहो बिलहब, मुदा एहिसँ पहिने अपनामे किछु दू टॉपिक कऽ लैत छी।
0: देखियौ उगना भाई, जीवनमे लोकगीत आ सङ्गीतक बड्ड बेसी महत्व अछि। सङ्गे लोकगीत कोनो क्षेत्रमे रहयवला ओहि ठामके रोचकता होइत अछि। ग्रामीण परिवेशमे लोकगीत सभक रचना भऽ रहल अछि।
1: ठीके कहलहुँ अनिल भाई, ग्रामीण परिवेशमे लोकगीत संरक्षित अछि। विशेष रूपसँ आइ बुजुर्ग लोकनिके कार्यक्रम छनि तऽ लोकगीत आ सङ्गीत बुजुर्ग लोकनिक माध्यमसँ विशेष रूपसँ संरक्षित अछि। कारण संस्कार गीत, पारम्परिक गीत, ई सभ किछु हुनकर लोकनिसँ सीख सकैत छी। जेना एखन लिअ ने, मधुश्रावणी पाबनि चलि रहल अछि, तऽ ताहूमे ओकर कथा होइत अछि, लोक कथा अछि, एकर सङ्गे ओहिमे गीतनाद होइत अछि, महिला लोकनि गबैत छथि, फूल लोढ़ैत छथि, तऽ ई जतेक विध बाध से वृद्धे लोकनिसँ से सीखैत छथि। तऽ कहबाक तात्पर्य जे जीवनमे लोकगीत सङ्गीत एकर बड़ महत्व।
0: लोकगीतसँ सांस्कृतिक परिचय होइत अछि, सङ्गे एहिमे कोनो साहित्य वा प्रशिक्षणके आवश्यकता नहि होइत अछि। हरेक अवसरके हिसाबसँ अपन भाषा आ बोलीमे लोकगीत सभक रचना कयल गेल अछि। जेना मंगल गीत, प्रेम गीत, विषहर गीत, विरह गीत, पावस गीत, उत्सव, मुरन, उपनयन गीत, होली गीत, बहुत तरहक गीत अछि। तऽ हमसभ विस्तारसँ गप करब एहि सम्बन्धमे, मुदा छोट सनक विराम।
2: सांप काटे तो समय न गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
3: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
0: हाँ, तो उगना भाई, आज सबसे पहले वृद्ध लोकन का संबोधित कार्यक्रम है, तो हुनके विषय में हम सब गप करो। तो हुनके सबक लेल, बुजुर्गक लेल जे सरकारी योजना सब अछि, ओहि सन्दर्भमे हमसब एकटा भेंट वार्ता सुनी। भेंट वार्ताकार छथि विजय नाथ मिश्र, हिनका सङ्ग गप कऽ रहल छथि शंकर कुमार चौधरी। तऽ दुनू गोटेक बीच जे गप भऽ रहल अछि से हमहुँ सब ध्यानसँ सुनी।
1: तऽ सुनल जाय।
4: आइ हम कामेश्वर नगर दरभंगामे आयल छी। एतौ बुजुर्ग छथि विजय नाथ मिश्र, हिनक नाम भेलनि। हिनकासँ स्नेही बुजुर्ग श्रोता भाई बहिन लोकनि लेल ई बुझऽ चाहैत छियनि जे बुजुर्ग लोकनिक लेल सरकार द्वारा कतेको प्रकारक कल्याणकारी योजना सब चलाओल जा रहल अछि। ओहिमे कोन कोन योजना हिनका लोकनिक लेल विशेष रूपे लाभकारी छनि, ताहि प्रसङ्गमे विजय जी अपन परिचयके सङ्ग किछु जनतब दियौन।
5: शंकर जी, हम विजयनाथ मिश्र अध्यापन कार्यमे से लागल छलहुँ। बहुत रास इसकुलमे, स्थानीय इसकुल सबमे से अध्यापन कार्यमे छलहुँ हँ। तऽ बुजुर्ग लोकनिक लेल केंद्र सरकार आ राज्य सरकार दुनू दिससँ बहुत किछु सम्मानके रूप सहायता देल जाइ छै। एहिमे से देखियौ, कोनो व्यक्तिके बूढ़ भेलाके बाद से मुख्य रूपसँ तीन तरहक आवश्यकता छै। भोजन ठीकसँ बुजुर्ग लोकनिके भेट जानि, वस्त्र देहपर रहनि आ स्वस्थ रहथि, इएह तऽ मुख्य आवश्यकता छनि। तऽ सबसँ पहिने भोजनके यदि बात करी तऽ परिवारमे जे सरकारके द्वारा अन्न पानि देल जाइ छै से बुजुर्गोके नामपर 5 किलो तऽ भेटबे करै छै। दोसर बेर वस्त्र, तऽ किछु पाइके सहायता सेहो चाहे तऽ केंद्र सरकार दिससँ या राज्य सरकारके दिससँ से भेट जाइ छै। आब जेनाकि बिहार सरकार एहिठाम 1100 रुपैआ वृद्ध पेंशनके रूपमे से सबके दै छथिन,
4: महीने महीने सामाजिक सुरक्षा योजनाके
5: अंतर्गत। आब ओकर बाद

0: भेंट भेल जेनाकि जखन अहाँके भोजन भेट गेल, वस्त्र भेट गेल, तऽ केना अहाँ स्वस्थ रही। केंद्र सरकारके एकटा आयुष्मान योजना छै, आयुष्मान कार्ड छै, जकर अंतर्गत 5 लाखके से सहायता अहाँके कोनो वृद्ध व्यक्तिके, ओना तऽ सब व्यक्तिके भेटै छनि लेकिन वृद्धोके ई विशेष
1: चिकित्सीय
0: आर्थिक सहायता, आ जँ 70 वर्षसँ ऊपरके छी अहाँके तऽ आओर बेसी सहायता भेटत।
1: ठीके कहलहुँ,
0: बुझलहुँ। ई आयुष्मान कार्डके माध्यमसँ से बहुत बुजुर्ग लोकनि दुखित भेलापर या कोनो एहन बीमारी भेलापर जे असाध्य छनि, ओ यदि ओहि हॉस्पिटलमे जे स्वीकृत छै, आयुष्मान कार्ड जे हॉस्पिटलमे स्वीकृत छै, सरकारीमे तऽ छै, प्राइवेटोमे, से जाकऽ ओहिठाम ओ 5 लाख तकके सहायता प्राप्त कऽ सकै छथि। आब तकर बाद आवश्यकता बूढ़ बुजुर्गके लोकनिके होइ छनि कतौ एतऽसँ ओतऽ जाय अबैके, तऽ ताहि लेल हमरा जनैत चाहे हवाई यात्रा हो, चाहे बस यात्रा हो, चाहे रेल यात्रा हो, एहिमे किछु यात्रामे टिकटमे सुविधा सेहो देल जाइ छनि वृद्ध लोकनिके। तऽ हम इएह कहब जे राज्य सरकार आओर केंद्र सरकार दुनू मिलके से वृद्ध लोकनि पर तऽ बहुत ध्यान दऽ रहल छै।
1: एकर सङ्ग सङ्ग दवाइ लेल सेहो जन औषध परियोजना चलि रहल।
0: हाँ, तऽ ई तऽ हम तऽ कहबे कयलहुँ, तऽ हमरा सबके जगह जगह पर देखै छी जे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र सब खुजल अछि। एहि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रमे
1: बहुत सस्ता में
0: जे दवाई अहाँके 100 रुपया में मानि लिया आन दुकान में भेटत, वही ग्रुपक एहि दुकान में से 20-25-15 रुपया में भेट जाए छे। तो ई तो बड्ड फायदा ने
1: मुदा आवश्यकता है गप के अछि जे सरकारो कहि रहल अछि जे चिकित्सक लोकनि ओहि दवाई के लिखो।
0: हाँ, तो
1: एहन देखल जा रहल है जे बुजुर्ग लोकनि चाहितो छथि तो हुनका जे चिकित्सक लोकनि जे दै छथिन पुर्जा तै पर ओ नहीं लिखै छथिन।
0: ई तो हमर अहाँ मनक गप, हमर मुँहक गप ल लेलहुँ। ई हम कहै छलहुँ जे प्रिस्क्रिप्शन लोक के की धारणा होइ छै, दुखता है लोक के जे डॉक्टर साहब जे लिखलनि है वह दवाई चाहिए, एकटा स्पेलिंग ई आ ए में अंतर भ जेतै,
1: हेबाको सह चाहिए ओ लिखलनि
0: कहत, तब डॉक्टर साहब सब तो दवाई के नाम लिखै छथिन, एहि में ग्रुप के हिसाब है, वही तरहक दवाई से बहुत सस्ता में भेटै छै। हम तो बहुत रास दवाई से ओहिना पूछ के ल लै छी जे सस्ता में भेट जाए, चाहे वो गैस के दवाई हुए, चाहे कोनो आँखी
1: के दवाई हुए,
0: मधुमेह के दवाई हुए,
1: अन्य कतेको बीमारी के दवाई।
0: यदि बुजुर्ग लोकनि अपन सम्मान के रखैत जे आर्थिक सहायता भेटे छनि और अन्न के सहायता भेटे छनि, किछ आर्थिक सहायता के संग संग स्वास्थ्य सुरक्षा भेटे छनि, तो एहि सब के आधार पर लाभ उठा सकै छथि।
1: ठीके कहलहुँ विजयनाथ मिश्र जी, अहाँ बड़ नीक जनतब देलियनि बुजुर्ग लोकनि के एहि योजना सबसँ ई लोकनि
0: आ यात्रा के लाभ सेहो उठा, तीर्थ यात्रा करऽ चाहै छी तऽ सेहो जा सकै छी।
1: बहुत कहलहुँ, विशेष रूपसँ तऽ सरकारी बस सेवा में, राजपथ परिवहन निगम में, एकर संग संग रेल सेवा,
0: हवाई यात्रा में सेहो भेट रहल अछि,
1: एहि सब में एहि गप के ध्यान में राखि कऽ भेट रहल छै सुविधा जे हिनका लोकनि के जे जतऽ जे घूमऽ फिरऽ चाहै छथि सेहो कोन हिसाब सँ घूम,
0: आ जाहि ठाम भारतक जाहि कोनो कोन में जाहि अस्पताल में अहाँ अपन स्वास्थ्य के से सुरक्षा करै वास्ते, स्वास्थ्य के नीक करै वास्ते कोनो ऑपरेशन करबऽ चाहै छी,
1: विशेष रूप सँ तऽ बुजुर्ग लोकनि के आँखि के ऑपरेशन,
0: आँखि
1: देखै छियनि जे बड़ लाभकारी भेल,
0: आँखि भेलै, कान, देखियो मन तऽ सब सबसे स्वस्थ रहबाक चाही। यदि अहाँके अंग सब धीरे धीरे कमजोर भेल जाइ छै, जेना जेना व्यास बढ़ै छै तेना आँखि कमजोर हैत, कान कमजोर हैत, सबके दाँत टूटि जायत, दाँत में दर्द हैत, तो छोट बीमारी हुए या पैघ बीमारी हो, ककरो गामक लोक सँ सहायता लऽ कऽ हुनका संगे कोनो हॉस्पिटल चल जाउ, आ आयुष्मान कार्ड जे बनौने छी ओ डॉक्टर के देखबियौ, ओहिके माध्यम सँ अहाँके 5 लाख रुपया तक के सहायता के अनुसार ओकर सब नहि खाए के चिंता, सब चीज
1: प्राय तो सब ठाम प्रखंड स्तर पर

0: जही चिकित्सा केंद्र प्राथमिक चिकित्सा केंद्र सब है ओतौ जाकर निशुल्क अपन स्वास्थ्य के जांच करा सके।
1: एकदम ठीक कहलौं तऽ आइ शंकर जी अहां से गप क के बहुत नीक लागल
0: अहूं के धन्यवाद।
2: सांप काटे तो समय न गवाएं अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
3: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
4: हाँ तो उगना भाई अखन हम सब भेंट वार्ता सुने छलौं साझक बेरे हरेक ठाम मंदिर में आंगन में पूजा अर्चना भ रहल है तो सुनी एकटा सुंदर सन भगवती गीत
5: तो सुनल जाए।

0: खूब सुंदर। एखन जे हम सब गीत सुन रहल छलहुँ गीतक कलाकार कुंज बिहारी मिश्र उगना भाई आब बेर भऽ चलल अइ प्रायोजित कार्यक्रमके, तऽ सुनी हम सब प्रायोजित कार्यक्रम
1: बुनियाद, तऽ सुनल जा
0: सुनल जा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

बुनियाद बुनियाद कार्यक्रम लेकर एक बार फिर से राजेश आप सब के बीच में है रेडियो सेट के माध्यम से। सचमुच आपके बीच में आकर ऐसा लगता है कि हम अपने लोगों के बीच में आ गए, और जब जानकारियां देते हैं ना तो गजब की संतुष्टि मिलती है। लगता है ऐसा कि हम सही और सटीक बातें आप तक पहुंचा रहे हैं बेवाकी के साथ साथ। जब हम कहते हैं आपसे ना कि रोजगार, हाँ रोजगार के लिए आज टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, टेक्निकल पढ़ाई कर लो, रोजगार की कोई कमी नहीं रहेगी। आपको भी युवा साथियों, पढ़ने के बाद आपको भी रोजगार

0: चाहिए ना? निश्चित रूप से चाहिए। एंड ऑफ द डे आपके माता पिता भी यही सोचते होंगे कि बच्चे अच्छे से पढ़ जाएं, नौकरी लग जाए, अच्छा पैसा कमाने लगे, उनकी जिंदगी सेटल हो जाए, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। और बुनियाद कार्यक्रम में यही बातें हम आपसे कहते हैं कि विशेषज्ञता हासिल कर लीजिए, रोजगार मिल जाए आपको, वैसे यूनिवर्सिटी का चुनाव कीजिए जहां सब कुछ मिल रहा है और खास करके एक प्लेसमेंट सेल भी हो। ये कार्यक्रम आपको पता है हम लेकर आते हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। आपको हमने ढेरों बातें बताई हैं यहाँ के बारे में, पूरी शिक्षा व्यवस्था के बारे में, टेक्निकल पढ़ाई के बारे में, जो पैसा नहीं है तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में, ढेर सारी बातें हमने आपको बताई हैं इस कार्यक्रम में। और हमें बहुत सुकून है कि इस कार्यक्रम को सुनकर बहुत सारे हमारे छोटे छोटे भाई बहनों ने टेक्निकल पढ़ाई चुनी और आज अपने करियर में आगे निकल गए। लेकिन दुख तब होता है जब बहुत सारे युवा साथी जो है घर पर बैठकर अभी भी विचार करते हैं, हाँ, कि हम क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाएं। तो भैया, कहीं ना कहीं से सोचने की जरूरत तो है, लेकिन शुरुआत करने की जरूरत उससे कहीं ज्यादा है। शुरुआत कीजिए, आपको निश्चित रूप से एक लक्ष्य मिल जाएगा, एक आयाम निर्धारित हो जाएगा और सब कुछ अच्छा अच्छा आपके जीवन में हो जाएगा। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय से आप टेक्निकल पढ़ाई कर सकते हैं, इसके वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं और वेबसाइट का पता है www.gnsu.ac.in। और जो अगर फोन करना चाहें, नंबर नोट करें, है 9431899002। इस कार्यक्रम में लगातार हम आप सबों को कोर्सेज के बारे में बताते हैं, ज्यादातर बुलाते हैं अपने विशेषज्ञों को, जानकारियां दिलवाते हैं। जैसे पिछले एपिसोड में अवनीश रंजन थे जो बीएड स्पेशल एजुकेशन के विषय में जानकारियां दे रहे थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया दोनों में अंतर करके कि प्लेन बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन में क्या क्या अंतर है, कहां कौन आगे और कहां कौन थोड़ा पीछे है। लेकिन पढ़ने के बाद रोजगार मिलना, सबसे पहले ये देखना चाहिए कि पढ़ने के बाद रोजगार की क्या संभावनाएं हैं, यूनिवर्सिटी ने या जहां से आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसने क्या व्यवस्था की है। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में भी इसकी क्या व्यवस्था है, हमने जांच पड़ताल की आपके लिए और हमने पाया कि बजाबता एक पूरा यूनिट है आपके प्लेसमेंट को लेकर जो आपको तैयारी करवाता है, कैसे इंटरव्यू फेस करना है, कैसे आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन लाया जाए, आपने जो पढ़ाई लिखाई की है उसको कैसे आप एक्सप्रेस करेंगे, कैसे जॉब असिस्टेंस दिया जाए, ये सारी चीजें। और उस विभाग को जो देखते हैं ना, जो इंचार्ज है, आज हमारे साथ है। चलिए आइए सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं और उन्हीं से जानते हैं उनका परिचय।
1: हम अरिंदम मुखर्जी, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट हेड, इंचार्ज फॉर द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट ऑफ गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी।
0: अरिंदम जी, बुनियाद कार्यक्रम में आ गए हैं और करोड़ों युवा साथियों और उनके माता पिता से जुड़ गए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि क्या क्या कुछ होता है बुनियाद कार्यक्रम में, हम जानकारियां देते हैं। आप हमें ये बताइए कि प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग जो है वो कितना महत्वपूर्ण होता है किसी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी छात्र के लिए और प्लेसमेंट के लिए।
1: देखिए, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है और ये सबसे इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि स्टूडेंट लोग हायर एजुकेशन में आता है फॉर गेटिंग फॉर एक करियर बनाने के लिए। और ये करियर बनाने के लिए गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लोगों को डेवलप करने के लिए हम लोग का बहुत सारा प्रोग्राम है, क्योंकि हम लोग का जो प्रोग्राम है ये इंडस्ट्री रेडी है और इंडस्ट्री रेलिवेंट है। और हम लोग स्पेशली स्टूडेंट को प्रिपेयर करता है टू गेट अ जॉब। ये जो कंपनी

0: पे आता है, ये कंपनी जैसा डोमेन नॉलेज में स्टूडेंट लोग का इवेलुएट करता है और ये देखता है उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, उसका कम्युनिकेशन कैसा है, वो सिचुएशन हैंडल कर पाता है या नहीं, वो साइकोमेट्रिक टेस्ट में स्टूडेंट को डालता है। ये स्पेशल ट्रेनिंग हम लोग पहले साल से ही स्टूडेंट लोग को स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जब उसका प्लेसमेंट सीजन आएगा वो कंपनी में बैठ के सक्सेसफुल होके हाथ में जॉब लेके उसका कोर्स खत्म करेगा। और हम लोग दूसरा चीज जो है, हम लोग प्लेसमेंट स्टार्ट कर देता है 6 महीना और 8 महीना पहले, कोर्स का खत्म होने का 6 और 8 महीना का पहले।
1: इसके लिए आप कैसे ट्रेनिंग देते हैं, क्या क्या होता है, कौन लोग होते हैं, ये सारा कुछ बताइए जरा हमारे बिहार और झारखंड के सुनने वालों को।
0: हम लोग का यहाँ पे डेडिकेटेड ट्रेनर है जो जिसका रेगुलर बेसिस में क्लास मिलता है, वो क्लास में जाता है और स्टूडेंट लोग को रेडी करता है प्लेसमेंट इंटरव्यू के लिए। दूसरा चीज जो है, ट्रेनिंग प्लेसमेंट डिपार्टमेंट हायर करता है आपका इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पहले आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और रेगुलर बेसिस में एवरी मंथ वो कैंपस में आता है और हर डिपार्टमेंट को लेके वो बैठता है ट्रेनिंग देने के लिए। उसमें उसका पर्सनल इंटरव्यू ट्रेनिंग होता है, ग्रुप डिस्कशन ट्रेनिंग होता है, एक्सटेम्पो ट्रेनिंग होता है, रिटन टेस्ट में इंग्लिश लैंग्वेज का ट्रेनिंग होता है, रीजनिंग का ट्रेनिंग होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज का ट्रेनिंग होता है। हाँ, ये सब ट्रेनिंग हम लोग पहले से स्टार्ट कर देता है और ये आपका डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज के साथ एडिशनल ट्रेनिंग हम लोग देता है कि जब स्टूडेंट लोग प्लेसमेंट सीजन आएगा स्टूडेंट लोग रेडी रहेगा और ये आपका उसका हाथ में एक नौकरी लग जाएगा।
1: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, मैं हूँ राजेश और हमारे साथ हैं अरिंदम मुखर्जी जो गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग विभाग के हेड हैं। इन्हीं की देखरेख में बच्चों को ट्रेन किया जाता है जब कंपनीज आती है पढ़ाई के बाद, और जब नौकरी की बारी आती है तो एकदम पुख्ता ट्रेनिंग देके बच्चों को इंटरव्यू देने लायक बनाया जाता है, नौकरी पाने लायक बनाया जाता है। और नौकरी बहुत बड़ी बात है, पढ़ने के बाद तो नौकरी मिलनी ही चाहिए। बहरहाल ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय की तरफ से, जो कि सासाराम रोहतास जमुआर में है। और एक टोल फ्री नंबर हम बता रहे हैं आपको, नोट कर लीजिए 1800 121 0051 1800 121 0051। और एक मोबाइल नंबर है जो सिर्फ आप युवाओं के लिए ही लिया गया है कि आप इस पर जानकारियां ले सकें, और वो नंबर है 9431899002 9431899002। ये नंबर है, इस पर आप अधिक से अधिक जानकारियां ले सकते हैं। और राजेश फिर कहता है आप लोगों से, टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, टेक्निकल पढ़ाई कीजिए। और अब तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पैसे की भी कोई समस्या नहीं रही। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है उससे आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, और 13-14 ऑप्शन है टेक्निकल पढ़ाई का, यहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। बहरहाल मुखर्जी साहब एक बात बताइए, कहते हैं कि जिसकी अंग्रेजी कमजोर है, हिंदी, हाँ जो हिंदी में बोलता है, हिंदी में इंटरव्यू देना चाहता है, उसके लिए थोड़ा रिसोर्सेज कम है, क्या कहेंगे, क्या सिचुएशन है अभी बताइए।
0: देखिए, हमारा का हिंदी है कि ये नेशनल लैंग्वेज है, हाँ आपका पूरा भारत में इसका एक्सेप्टेबिलिटी है और इसका भी बहुत सारा डिमांड है। आप कोई भी आपका जो डेवलप्ड सिटी है, टाउन में है, सब जगह में जहाँ जहाँ पे कंपनी का हेड ऑफिस है वर्क लोकेशन में, वहाँ पे हिंदी इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज और एक्सेप्टेबल है। और क्या है कि आप हिंदी इंग्लिश मिलके भी आप कोई भी चीज एक्सप्रेस कर पाता है तो आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगा। और हिंदी जो भी है आपको अच्छा तरीके से एक्सप्रेस करने पड़ेगा, हिंदी में हो और अंग्रेजी में हो, वो आपको कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करने पड़ेगा।

0: वो चीज सही होने से आपको जॉब मिल जाएगा।
1: हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट्स के लिए आपने सचमुच बहुत अच्छी जानकारी दी। एक बात बताइए, क्या 100% जॉब प्लेसमेंट के लिए आप गारंटी देते हैं, असिस्टेंस देते हैं? क्योंकि चीजें साफ साफ होनी चाहिए, एकदम खुल के, कोई छिपा के, लाग लपेट के साथ नहीं। बताइए क्या है मुखर्जी जी आपके यहाँ GNSU में?
0: आपको देखिए, इंडिया में और कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, जितना भी बड़ा इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट 100% जॉब गारंटी नहीं देता है। ये आपका प्लेसमेंट एजेंसी नहीं है। हम लोग का काम है स्टूडेंट बनाना, स्टूडेंट को रेडी करना, उसको नॉलेज देना। लेकिन उसके ऊपर सबसे बड़ा चीज है, हम लोग 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस देता है। और हम लोग का बिलीफ है कि फ्यूचर में भी ऐसा होगा, इससे भी बेटर परफॉर्मेंस होगा।
1: वाह, बहुत खूब, आपने जो बातें थी आपने सच सच बता दी कि 100% हम असिस्टेंस देते हैं, गारंटी की बात नहीं है। चलते चलते कुछ कहना चाहिएगा, कोई सजेशन देना चाहिएगा स्टूडेंट्स को, आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं।
0: हमारा तो एक ही सजेशन है, एडवाइस है, जो भी बोलिए, स्टूडेंट लोग को बोलिए कि आपका टेक्निकल ट्रेनिंग और नॉलेज और स्किल उसको एक्वायर करना बोलिए, नहीं तो उसको तुरंत जॉब नहीं मिलेगा। उसको स्किल नहीं मिले, नहीं है टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो उसका उसके लिए वो आपका क्या है कि ऑब्सोलेट हो जाएगा इंडस्ट्री में। और इसीलिए एक टेक्निकल नॉलेज का बहुत ही जरूरी है।
1: बहुत सही कहा, बहुत सही कहा अरिंदम मुखर्जी साहब आपने स्टूडेंट से कि टेक्निकल होना बहुत जरूरी है आज की तारीख में। और राजेश भी कहता है कि भैया टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, इसलिए टेक्निकल में आ जाइए और नौकरी मिल जाएगी, इसकी आप आशा कर सकते हैं अगर जो आपने अच्छे से पढ़ाई की। मुखर्जी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जरूरत होगा तो हम फिर आपको बुलाएंगे बुनियाद कार्यक्रम में। पूरा बिहार और झारखंड आज जो आपसे बात हुई ये सुनकर लाभ उठाएगा युवा साथी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों, चलने का वक्त धीरे धीरे करीब आता चला जा रहा है। पैसा नहीं है, क्या हुआ, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है। वैसे कोर्स को चुनिए जिसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी है। टेक्निकल पढ़ाई करनी है, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में 13-14 टेक्निकल पढ़ाई, मेडिकल से शुरू करके पैरामेडिकल से एग्रीकल्चर, बहुत सारे हैं। आप पता कर लीजिए इन नंबरों पर 9431899002 9431899002। और एक टोल फ्री नंबर है 1800121001, इस नंबर पर पता कर सकते हैं। फिलहाल थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय की आपने ये बुनियाद कार्यक्रम लेकर आने का राजेश को मौका दिया। चलते हैं, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
3: उगना भाई, अखन हम सब सुन रहा छो प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। ए संग आव आजुक अनुभव के चश्मा कार्यक्रम के समय सम्पन्न भ गेल। खेती गृहस्थी में सब किसान भाई लोकन के स्वागत, संगे सब गोटे के नमस्कार।
4: हमू किसान भाई लोकन के स्वागत करे छियन। आ अनिल भाई, आई खेती गृहस्थी में हिनका लोकन के लेल लक आयल छियन एकटा भेंट वार्ता, संगे गीत नादक आनंद सेहो लेब, समसामयिक कृषि संबंधी चर्चा करब, मौसम संबंधी सेहो जनतब देबनि। मुदा आइ सबसँ पहिने मिर्चाइ फसिल के जे हमरा लोकनि खेती करैत छी ताहि प्रसङ्गमे किछु गपशप कऽ लै छी।
3: देखियौ उगना भाई, मिर्चाइ एकटा एहन फसिल अछि जकर व्यवहार सब घरमे दुनू साँझ कोनो न कोनो रूपमे हेबेटा करैए।
4: ठीके कहलहुँ।
3: ओ हरियर मिर्चाइके रूपमे व्यवहार हुए कि सूखल मिर्चाई के रूप में, फोरन के रूप में व्यवहार हुए, वा यहो कह सके छी कि मिर्चाई के बुकनी के रूप में व्यवहार हुए।
4: अनिल भाई, मिर्चाई के कोनो प्रकारक हमरा लोकन उत्पाद जो व्यवहार करै छी प्रसंस्कृत कऽ कऽ तो ओकरा तखने प्राप्त कर सकब जखन कि ओकर खेती निक जकाँ करब। आ मिर्चाई के खेती करबाक लेल सदत हमरा लोकन के एकर उन्नत

0: प्रभेद के चुनबाक चाही। एखन मिर्चाई के मुख्य फसिल के बीया नर्सरी में देबाक उचित भेल अछि।
1: देखियौ ओना भाई ठीके कह रहल छी, मिर्चाई एकदम नगदी एकटा फसिल अछि। मिर्चाई के जे कुछ उन्नत प्रभेद अछि ओ अछि अर्का लोहित, अर्का सुफला, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी गौरव, पंतसी, पंजाब लाल। एकर अतिरिक्त किछु संकर प्रभेद सब सेहो अछि, जेना अर्का श्वेता, अर्का मेघना, कौकन कृति, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती, काशी तेज। तो मिर्चाई के बिया के समान किस्म सब में लगभग अपने के 800 से 1000 ग्राम अर्थात 800 ग्राम से 1 किलो धैर प्रति हेक्टेयर के दर से बिया लगे।
0: ठीक कहलो अनिल भाई, मिर्चाई के फसल के जे मुख्य फसल है एकरा बिया के बाउग करबाक उचित बेर जुलाई से लोको सितंबर मास धरि मानल गेल अछि आ एकरा रोपबाकार बिया के मात्रा प्रसंग में अहां कह देलहुं आ एकरा रोपबाकार 50x45 सेंटीमीटर रखबाक चाही।
1: कहबाक तात्पर्य ई भेलै उगना भाई जे एक गाछ से दोसर गाछक दूरी 50 सेंटीमीटर आ एक पाइंट से दोसर पाइंटक दूरी 20 सेंटीमीटर राखक चाही, कियाकि मिर्चाइ के जे गाछ होइए ने ओ झाड़ी जकाँ होइए, तैं दूरी के बना कर राखब आवश्यक अछि। एहिसँ गाछक विकास नीक होइए, फलन के समस्या नहि होइए, उपजा बेसी होइए।
0: जखन विकासक गप केलहुँ अनिल भाई हमरा लोकनि मिर्चाइ के गाछ के तो एहिमे खरपतवार पर नियंत्रण पर सेहो ध्यान देबाक चाही, जाहि लेल हमरा लोकनि कमौनी निकौनी बेर पर करी आ एहिमे पटौनी आवश्यकता अनुसार करबाक चाही।
1: संगे इहो ध्यान रखी जे खेत में पानि नहि लागल रहक चाही आर तापक्रम के संबंध में जँ विचार करी ने उगना भाई तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री के सेंटीग्रेड के तापक्रम मिर्चाइ के विकास के लिए निक मानल जाइए।
0: खाद उर्वरकक रूप में हमरा लोकन मिर्चाइ के फसल में प्रति हेक्टेयर कंपोस्ट 150 से 200 क्विंटल, नेत्रजन 100 किलोग्राम, स्फुर 60 किलोग्राम, पोटास 60 किलोग्राम के व्यवहार कऽ सकै छी। एहि प्रकारे जो हमरा लोकन ध्यान दऽ कऽ मिर्चाई के खेती करै छी तो हरियर मिर्चाई 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर धरि उपजा प्राप्त होइत अछि आ सुखल मिर्चाई 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर धरि हमरा लोकनि प्राप्त कऽ सकै छी।
1: देखियौ मिर्चाई खेती में जल प्रबंधन के संबंध में गप करी तो ड्रिप सिंचाई विधि से पटौनी करक चाही। उर्वरक में एनपीके अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस आ पोटाशियम 19:19:19 के हिसाब से देबाक चाही। आरंभ में हल्लुक पटौनी करी अपने कहबे के लिए, संगे एहि गप के ध्यान राखी जे खेत में पानि नहि लागल रहे। कीटनाशक के व्यवहार के संदर्भ में विचार करी तो मिर्चाई में दूटा रोग होइए, लीफ कर्ल और थ्रिप्स कीड़ा के बेसी प्रकोप होइए। एहि लेल समय समय पर नीम के तेल के छिड़काव करक चाही। एकर बाद वैज्ञानिक लोकन के अनुशंसाक आधार पर दवाई सभक व्यवहार करक चाही। किसान भाई लोकन एहि तरहें जो अपने मिर्चाई के खेती करब तो नीक उपजा हेबेटा करब। उगना भाई आइ सोम दिन अछि, सोमवारी पावनि सेहो अछि, भोला बाबा के मंदिर में अपार भीड़ लागल अछि सब ठाम, तो सुनी एकटा सुंदरसन भोला बाबा के गीत
0: तो सुनल जाए।

0: खूब सुंदर। एखन जे हम सब गीत सुन रहल छलहुँ, गीतक कलाकार कुमकुम झा
1: आ ई महेश वाणी छल। आ आब अनिल भाई हमरा लोकन सुनैत छी ई
0: एकटा भेंटवार्ता। भेंटवार्ता ई केहन अइ, बरसातक समय शुरू भऽ गेलै आ खास कऽ अपन सभक मिथिलाञ्चलमे जलकर आ पोखरिके कोनो अभाव नहि अछि। कहलो गेल अछि जे पग पग पोखरि माछ मखान। अपना सभक मिथिलाञ्चलमे पानिमे दुइए तीनटा चीज होइए, मखान होइए, पानी फल सिंघारा होइए आ माछ होइए। तऽ आइ एहने विषयसँ सम्बन्धित एकटा भेंटवार्ता सुनै छी। विषय अछि एकीकृत मछली पालन आ इसके लाभ। भेंटवार्ताकार छथि मनोज कुमार आ हिनकासँ गप कऽ रहल छथि रंजना झा।
1: तऽ दुनू गोटाके बीच भेल ई गप सब सुनल जाय।
2: आइ दरभंगा आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित छथि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर पूसा के माछ विभागक तकनीकी सहायक मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जी, दरभंगा आकाशवाणी के स्टूडियो में अहाँ के बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार। मैं आपको बताऊंगा मछली पालन किस प्रकार से फायदेमंद है। मछली पालन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि किसान भाई एक तालाब बनाकर, पोखर बनाकर आप मछली पालन कर सकते हैं और इसमें काफ़ी संभावना है।
2: हाँ हाँ, देखियो मनोज जी, अपन सबके जो मिथिलांचल है ओहिमे कहल गेल छे पग पग पोखरि माछ मखान।

0: आ ई अछि मिथिला के शान। एतय जगह जगह पोखरि जलकर सब जे होइ छै से भऽ रहल अछि, ओहिमे माछक व्यवसाय केना नीक जकाँ हेतै ओहिके सम्बन्धमे अहाँ की कहऽ चाहै छियै?
1: मछली पालनमे एक एकीकृत कृषि एक प्रणाली होती है जिसमें किसान भाई मछली पालन के साथ साथ अन्य खेती भी कर सकते हैं, जैसे कि धान के साथ मछली पालन, मुर्गी के साथ मछली पालन, सुअर के साथ मछली पालन, मवेशी के साथ मछली पालन, बतख के साथ मछली पालन कर सकते हैं। अच्छा। ये सारी खेतियों को एक साथ करके वो अपनी अतिरिक्त आय जुटा सकते हैं।
0: हाँ हाँ।
1: जिसमें हम आपको बताएंगे कि धान के साथ मछली पालन अगर करना चाहते हैं तो क्या क्या सावधानियां हमें रखनी है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है।
0: अच्छा।
1: तो धान के साथ मछली पालन करना एक इसलिए भी जरूरी है कि किसानों की अतिरिक्त आय इससे मिल जाती है, और इसमें हमें धान के खेत में जैसे पेस्टिसाइड डालना पड़ते हैं, उर्वरक डालना पड़ते हैं, तो उनकी भी जो जरूरत है, लागत है, वो कम हो जाती है, क्योंकि मछली का जो मलमूत्र निकलता है वो भी एक उर्वरक का ही काम करता है, खाद का काम करता है जी। धान का खेत में पानी आपको रखना पड़ेगा, लगभग 2 फीट पानी कम से कम रखना पड़ेगा जिससे कि मछली उसमें जिंदा रह सके। और इसके लिए धान की कुछ विशेष किस्में हम यूज करते हैं, जैसे कि जयसूर्या है, जलमग्न है।
0: अच्छा।
1: जलांधी है, मनोहरशाली, AR1, IV1, IV2, ये कुछ प्रजातियां हैं धान की जो कि पानी में रह सकती हैं।
0: अच्छा।
1: इस प्रणाली के लिए मछली की भी कुछ किस्में हैं, जैसे कि तिलापिया, मांगोर, मरेल, कॉमन कार्प इत्यादि, इन मछलियों को हम धान के साथ आसानी से पाल सकते हैं।
0: मनोज जी एकटा बात अहाँ बताओ, जे अहाँ धान के साथ मछक पालन के विषय में अखन कहि रहल छी, तऽ अपन सबके मिथिलांचल के जे जते जगह जमीन अछि जाहिमे कि धानक खेती होइ छै, तऽ जतेक जते जमीन छै जगह की मात्र जतौ कि धान के खेती भऽ रहल छै, सब जगह ई माछ के खेती संग में कयल जा सकै छै?
1: जी बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए धान का जो खेत है उसमें मेड़ का जो एरिया है वो थोड़ा सा ऊंचा आपको करना पड़ेगा कि जिसमें खेत में लगभग 2 फीट पानी रुक सके।
0: जी जी। तई द्वारे मेड़ कनी ऊंच रह
1: जी,
0: बाकी सब जगह पर क्या जाए,
1: बाकी सब जगह कर सकते हैं। बस आपको धान की किस्में, आपको जो धान पानी में रहने योग्य किस्में हैं उनका चयन करना पड़ेगा।
0: अच्छा, जे बेसी पानी मांगे छे ओ धान के लगेबा आवश्यकता छे। आ एकर संग संग अहाँ कहलिए धान के संग संग और किछ किछ नाम जे ले लिए ओ की सब छे?
1: मछली के साथ मुर्गी पालन भी किया जा सकता है। इसमें जो मछली का तालाब है उसमें तालाब के ऊपर ही हम एक मुर्गी का जो बाड़ा बोलते हैं वो व्यवस्था बना सकते हैं, और उसमें दो प्रकार के सिस्टम हम यूज कर सकते हैं। एक तो लिटर सिस्टम रहता है जिसमें कि मुर्गी का जो बाड़ा है उसमें भूसा का एक लिटर बिछा दिया जाता है बिस्तर के जैसा, और उस पर मुर्गियों को रखा जाता है, और मुर्गी अपना मलमूत्र उस पर छोड़ती हैं, खाना भी उस पर छोड़ती हैं, तो उसको हम तालाब में डाल सकते हैं, वो खाद का काम करता है।
0: अच्छा।
1: दूसरा व्यवस्था रहता है कि डायरेक्ट हम जो फर्श जैसा बना देते हैं कि जो भी मुर्गियों का वेस्टेज निकलता है वो सीधा तालाब में जाए और उसको मछलियां अपने भोजन के रूप में उपयोग करें, और इससे मछलियों को अतिरिक्त भोजन कम देना पड़ेगा और साथ साथ में हमें दो उपज भी मिलेंगी, मुर्गी भी मिलेगा साथ में मछली भी मिलेगा।
0: मुर्गी के जते निकृष्ट चीज होइ छै वो धान के लेल कि माछा के लेल खादक काज करै छै कि नै? अच्छा। एकर संग संग एकटा और बातक जानकारी दिए, जे एखन माछक व्यवसाय केना नीक होतै एहि सम्बन्धमे अपनेसँ जानकारी भेट रहल अछि, तऽ माछके जीरा जे होइ छै जे कि ओहन कोन जगह से लेल जाए जे प्रमाणित जगह होइ जतऽ कि स्वस्थ आ शोधक माछ भेटा, जाहिमे रोग व्याधि कम लागत होइ, ओहिमे परेशानी कम होइ, खर्च लगैत होइ, ओ केहन जगह से लेबाक चाही?
1: देखिए मछली का जो जीरा है वैसे तो हर जिले में उसका हैचरी बना हुआ है।
0: हाँ।
1: सरकार का भी हैचरी बना हुआ है, वहाँ से भी किसान भाई ले सकते हैं, और वहाँ पर हमारी जो भारतीय कार्प मछलियाँ हैं उनका जीरा उपलब्ध होता है।
0: अच्छा।
1: लेकिन अभी जो मछली पालन व्यवसाय है वो काफ़ी तरक्की कर रहा है, नई नई किस्में मछली की किस्में इसमें आ गई हैं।
0: अच्छा।
1: तो जो जल्दी बढ़ने वाली, किसान चाहता है कि उनको जल्दी बढ़ने वाली किस्में चाहिए, तो ऐसी कुछ प्रजातियाँ हैं जैसे कि तिलापिया है, पंगेसियस है, ये मछलियाँ काफ़ी जल्दी बढ़ जाती हैं, और इनका जो बीज है वो बिहार राज्य में थोड़ा कम हैचरी है इसका, इनका बीज जो है बंगाल में आसानी से उपलब्ध हो जाता है, उड़ीसा में।

0: आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कुछ जयंती रोहू एक मछली की वैरायटी है जो नई वैरायटी आई है और ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ रेट इसका है।
1: अच्छा
0: और इस मछली का जो बच्चा है वो आपको भुवनेश्वर से मिलेगा, वहाँ से एक प्रमाणित सीड आप ले सकते हैं
1: अच्छा
0: इसका।
1: अच्छा तो ये यहाँ के प्रमाणित जगह से लेवा के विषय में बतेलो। आ एकटा बात सबसे मुख्य बात अभी छे जे हम सब तो जतेक जलकर है ओमे देखे छे जे जीरा दे छथिन, मुदा जलकर पहले कोन रूप से व्यवस्थित होवक चाहिए जैसे कि जीरा देला के बाद स्वस्थ आ मतलब कि स्वच्छ माछक पालन भ सके, ओमे बेसी ग्रोथ भ सके, वृद्धि भ सके, ताहि लेल जलकर के कोन रूप से व्यवस्था करबाक चाहिए या देखरेख रहबाक चाहिए।
0: जीरा डालने के लिए, जीरा डालने से पहले किसान भाई को तालाब की तैयारी करना ज़रूरी है और उसमें संतुलित आहार देना ज़रूरी है जिससे कि उसकी उपज अच्छी हो।
1: निश्चित
0: तो इसमें जो है सबसे पहले हमें तालाब प्रबंधन करना पड़ता है कि किसान भाइयों के पास दो प्रकार के तालाब हो सकते हैं, एक तो जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है साल भर, और एक तालाब ऐसे हैं जिसमें 4-5 महीने तक पानी रहता है। तो दोनों को हम यूज कर सकते हैं जीरा उत्पादन के लिए।
1: अच्छा
0: कुछ तालाब ऐसे हैं कि जिसमें साल भर पानी है तो उसमें कई प्रकार के खरपतवार आ जाते हैं, कई प्रकार की मांसाहारी मछलियां आ जाती हैं जो कि जीरा के लिए काफ़ी हानिकारक हैं। तो
1: अच्छा
0: हमें सबसे पहले इनकी सफाई करना पड़ता है, उस तालाब से जितने भी खरपतवार हैं उनको निकालना है और जितनी भी मांसाहारी मछलियां हैं उनको निकालना है। तो ये जो मांसाहारी मछलियों को निकालने के लिए हम महुआ की खली का उपयोग कर सकते
1: अच्छा
0: हैं, 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के डोज के हिसाब से इसको डालेंगे तो सारी जो भी मांसाहारी मछलियां हैं वो सारी मर जाएंगी।
1: अच्छा
0: दूसरा, इसमें चूना भी हमें डालना पड़ता है, चूना से पानी का पीएच मेंटेन होता है और ये मछलियों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। सो इसमें 200 से 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चूना हमें डालना पड़ता है। तीसरा, हमें खाद भी डालना पड़ता है इसमें, क्योंकि हमें पता है कि जो मछली का जीरा बहुत छोटा साइज का होता
1: हाँ
0: है, इसको हम मार्केट वाला अगर दाना देते हैं तो वो उसके मुंह का साइज में नहीं
1: नहीं
0: आ
1: आप
0: पा
1: सके
0: सकता है।
1: तेज।
0: तो इसलिए उसको प्राकृतिक भोजन चाहिए जो कि तालाब में खुद डेवलप हो। तो
1: अच्छा
0: उस प्राकृतिक भोजन को बनाने के लिए हमें तालाब में कुछ खाद डालना पड़ती हैं,
1: जी हाँ
0: तो जिसके लिए हम 750 kg महुआ की खली या सरसों की खली और 200 kg गोबर और 50 kg सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये तीनों का मिश्रण बना के हम
1: अच्छा
0: उस तालाब में उपयोग कर सकते हैं। और इस 1,000 किलो जो मिश्रण बनेगा इसका लगभग 30% हम पहले एक साथ
1: एक
0: डाल
1: साथ
0: देंगे, उसके बाद जो बचा हुआ डोज है उसको
1: बारी बारी से
0: बारी बारी
1: डालते
0: से
1: रहे।
0: हम डालते रहेंगे। तो
1: अच्छा
0: ये तैयारियां हमें जीरा डालने के पहले
1: पहले
0: करना
1: करबाक
0: पड़ती
1: चाहिए।
0: हैं।
1: आ जीरा डाला से पहिने तो बुझ गेलिए जे ई तैयारी होबाक चाहिए, आ जहन ई तैयारी भेला के बाद माछ के जीरा ओहिमे दऽ दै छियै तऽ ओकर वृद्धि के लेल, माछक वृद्धि के लेल आ माछ स्वस्थ रहए ताहि लेल की सब करबाक चाहिए।
0: जीरा डालने के बाद सबसे पहले तो भोजन प्रबंधन करना पड़ता है कि मछली का जो जीरा है वो उसको अगर सही तरीके से न्यूट्रिएंट मिले, सही
1: हाँ
0: तरीके से
1: हाँ
0: भोजन मिले तो उसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी जल्दी बढ़ती है।
1: निश्चित रूप
0: तो
1: से
0: भोजन के लिए हम आहार के रूप में जैसे चावल की भूसी है, सरसों की खली है, गेहूं का चोकर है, इनको मिला के हम उपयोग कर सकते हैं। जीरा जैसे ही तालाब में डालते हैं तो जो पहले सप्ताह में हम 1 लाख जीरा के लिए लगभग 500 से 600 ग्राम खाना देते हैं,
1: अच्छा
0: फिर अगले सप्ताह से वही खाना दुगना कर देते हैं हम लोग,
1: अच्छा
0: लगभग 1200 ग्राम
1: धीरे
0: प्रति
1: धीरे ओकरा
0: लाख
1: बढ़ाबै छियै
0: जी।
1: अहाँ
0: और
1: सब।
0: ये जो जीरा पालन है लगभग 15 से 20 दिन का होता है, इसके बाद वो आधा उंगली के साइज का आ जाता है जिसको हम फ्राई बोलते हैं,
1: अच्छा
0: उसके बाद इसको दूसरे तालाब में शिफ्ट कर देते हैं।
1: बहुत नीक गपक जानकारी देले। एक और गप के जानकारी दिया जे माछक व्यवसाय के लेल जे किछ योजना छे ओ कनिक संक्षेप में बता दी।
0: मछली पालन के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना काफ़ी लाभकारी अभी हो रही है
1: अच्छा
0: और इसके माध्यम से किसान भाई, आप कोई भी मछली का जो व्यवसाय करना चाह रहे हैं वो इस योजना के माध्यम से लाभ ले सकते हैं। इसमें जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको 40% अनुदान मिलता है और SC ST के जो लोग हैं और महिलाएं हैं उनको 60% अनुदान इस पे मिलता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए हमें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करनी रहती है जिसको हम DPR बोलते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और जो भी आप व्यवसाय करना

0: चाह रहे हैं उसका एक प्रोजेक्ट तैयार करके आपको अपना जो मछली पालन का ऑफिस है
1: जी हाँ,
0: वहां पर देना पड़ेगा और उस योजना का हम लाभ ले सकते हैं।
1: अच्छा
0: इसमें हर योजना के लिए इसमें लाभ है।
1: अच्छा देखियो, बहुत नीक गपक जानकारी देलिए जे एहि के माध्यम सँ माछ जे व्यवसाय करय वाला छथि हुनका बहुत लाभ भेट सकै छनि। आ एकटा चलत चलत गपक और जानकारी दिअ जे स्वरोजगार के रूप में आइ काल्हि ई सब चीज बहुत बेसी देखल जा रहल छै, तऽ केओ जे माछक व्यवसाय की सब गोटे सब वर्गक लोक स्वरोजगार में जुड़ि गेल छथि, तऽ हुनका लेल अहाँ की संदेश देबक चाहबन? एकटा माछक व्यवसाय के रूप में अहाँ की अपन संदेश देबय चाहबन?
0: मछली पालन एक अच्छा व्यवसाय है और इसमें युवा, मछुआरे या किसान सभी लोग इसको कर सकते हैं
1: अच्छा
0: और इसके लिए सरकार भी काफ़ी योजनाएं चला रही है। तो आपको जो है पैसे की ज़रूरत है मछली पालन व्यवसाय के लिए, तो वो सारी फंडिंग जो है सरकार से आपको मिल जाएगी। और इसके लिए प्रशिक्षण की जो ज़रूरत है वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में इसके लिए समय समय पर ट्रेनिंग्स भी होती
1: हाँ
0: हैं, तो
1: हाँ
0: वहाँ पर आके किसान भाई ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और अपना व्यवसाय चालू कर सकते हैं।
1: बहुत नीक गप के जानकारी देलिए। देखियौ, माछक व्यवसाय केना बेसी से बेसी नीक हुए, मनोज कुमार जी अहाँ बहुत नीक गपक जानकारी देलिए। दरभंगा आकाशवाणी के स्टूडियो में अहाँ के संग संग बहुत बेसी धन्यवाद।
2: उगना भाई, एखन सुन रहल छलहुँ हमसब एकीकृत माछ पालन आ एकर लाभ। भेंट वार्ता कर छला मनोज कुमार, हिनका से गप कर रहल छली रंजना झा।
3: आ अनिल भाई, स्नेह किसान श्रोता भाई बहन लोकनि एहि वार्ता सँ लाभ उठौता कारण माछ के हमरा लोकनि व्यावसायिक दिश सँ पोसि कऽ चिक्कन आमदनी कऽ सकै छी। तऽ आब अहीं संग हमरा लोकनिक खेती गृहस्थी के बेर सम्पन्न भऽ रहल अछि। स्नेही किसान श्रोता भाई बहिन लोकनि सँ चलबाक आज्ञा लै छियनि।
2: नमस्कार उगना भाई।
3: नमस्कार अनिल भाई।

0: और ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। एक अंतराल के बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: तीनों कॉलेज में,
3: डोंट वरी,
2: फीस तो देखो।
4: क्या हाल है, क्या हुआ?
3: फीस की टेंशन,
4: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
5: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए का, नो कोलैटरल।

0: मिठाई।
1: RBI कहता है
2: दरों से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
4: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल, जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
9: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
6: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है, सूचना शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 1,01,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से मासिक पेंशन की राशि भेजी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए है तैयार। और सीतामढ़ी के विक्रम उमेश कुमार ने पेरू के लिमा में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में निकाली गई यह यात्रा गांधी मैदान स्थित जेपी कोलंबर से शुरू हुई और करगिल चौक पर समाप्त हुई। एक रिपोर्ट।
1: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
2: हाथों में तिरंगा, जुबा पर देशभक्ति के नारे और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते लोग। मौका था हर घर तिरंगा अभियान के तहत पटना में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा का। यात्रा में राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों, जन प्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस के स्वयंसेवकों और बड़ी संख्या में आम लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जगह जगह तिरंगे से सजी

0: तिरंगा यात्रा शुरू होने से पहले आयोजित समारोह में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि तिरंगा हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है और इसका सम्मान करना हर भारतीय का दायित्व है। उन्होंने लोगों से जिला, नगर निकाय और पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली तिरंगा यात्रा में शामिल होने की अपील की।
1: मैं पूरे बिहार वासियों से आग्रह करना चाहता हूँ, तमाम लोग पंचायतों में इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, नगर निकाय में इस कार्यक्रम को किया जा रहा और यहाँ के बाद जिला स्तर पर भी इसी तरह के कार्यक्रम करके वहाँ भी यात्रा करने का काम किया जाए। इसलिए अभी से लेकर 17 तारीख तक हम लोग सभी लोग भागीदारी करके और अभी तो हम लोगों ने संस्कृति विभाग के द्वारा
0: इधर जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत पंचायत स्तर से लेकर जिला मुख्यालय तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अररिया, शेखपुरा, कैमूर, औरंगाबाद, मुंगेर और पटना समेत विभिन्न जिलों में तिरंगा यात्रा निकाली गई। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधि श्री।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प को नवीकृत करने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। मंत्रालय ने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में राष्ट्रगीत का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करेगी। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए हृदय स्पर्शी बन गया है। श्री शाह ने नागरिकों से अपील की कि वे तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से इस अभियान में भाग लें और उत्साहपूर्वक मनाएं। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा .com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। श्री रिजिजू ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने विपक्ष से सदन में अनुशासन बनाए रखने और कार्यवाही में बाधा नहीं डालने का आग्रह किया।
4: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
2: जदयू से राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि विपक्ष का रवैया संसद को किसी भी

0: फिलहाल में नहीं चलने देने का है। उनको जवाब से कोई मतलब नहीं है।
1: कॉपरेट तो करे विपक्ष, सकारात्मक डिस्कशन होने दे, उसमें सारी बात आ जाएगी। उसमें कहाँ दिक्कत है? इससे पहले भी जल रहा है, हर एक इशू पर वो बोलते रहे, लेकिन विपक्ष का जो रवैया है वो पार्लियामेंट किसी हाल में नहीं चलने दे। उसको किसी जवाब से नहीं मतलब कि कौन क्या जवाब।
0: राजद के संजय यादव ने कहा कि विपक्ष आम लोगों की भावना को सदन में रख रहा है, विपक्ष के दबाव के कारण ही सरकार इस मुद्दे को लेकर चर्चा कराने पर सहमत हुई है।
2: विपक्ष जो जमीन पर जन भावना है उसको सदन में रख रहा है। 20 जुलाई को छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ था, आज हम 10 अगस्त को बात कर रहे हैं, 21 दिन बाद विपक्ष ने इन पर दबाव डाला है, तब जाके ये राजी हुए हैं।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1,01,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में मासिक पेंशन की राशि DBT के माध्यम से अंतरित की। इसके तहत मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना और बिहार निःशक्तता पेंशन योजना समेत 6 योजनाओं के लाभार्थियों के बीच राशि का हस्तांतरण किया गया। लगभग 1,158 करोड़ रूपये अंतरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
4: बहुत खुशी हो रही है कि आज लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों को एक साथ हम लोग सभी के खाते में 1,100 रूपये का पेंशन देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो वृद्धजन है, विधवा बहने और दिव्यांग, ये तमाम लोग समाज में अपने आप को आगे बढ़ा सके, और पेंशन के माध्यम से मूल भावना है कि उनके जीवन यापन आसानी से चल सके।
0: मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता मौजूद थी। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कटिहार में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि परिसीमन पूरा होने के बाद ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे।
5: पंचायत के चुनाव परिसीमन के बाद होने हैं, परिसीमन के बाद पंचायत का चुनाव कराया जाएगा। दोनों ही काम निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाना है, तो टाइमलाइन हम कमिट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब विभाग की तरफ से जो भी सहयोग किया जाना है निर्वाचन आयोग को, सारा सहयोग दिया जा रहा है, और पूरी कोशिश है कि विभाग की तरफ से भी सही समय पे काम पूरा हो परिसीमन का, और उसके बाद चुनाव कराए जाएंगे।
0: प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 के विरोध में राज्य के सभी सरकारी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के 12,000 से अधिक शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी आज सामूहिक अवकाश पर है। इन सभी ने विश्वविद्यालय मुख्यालय पर अपनी मांगों के समर्थन में धरना दिया। शिक्षक संगठनों ने प्रस्तावित अधिनियम से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए सरकार से पुनर्विचार की मांग की है। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी हिस्सों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। पूर्णिया के श्रीनगर में सबसे अधिक 58.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है।
6: दिनांक 11 अगस्त को उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम भाग में कुछ जगहों पर आंधी तूफान, बिजली गिरने की संभावना है।
0: आज सावन की दूसरी सोमवारी है।

0: इस अवसर पर मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चार से गुंजायमान है।
1: सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ, मुजफ्फरपुर के गरीब नाथ, सोनपुर के हरिहर नाथ, रोहतास के गुप्ता धाम, जहानाबाद के वाणावर, पटना के बैकटपुर धाम, लखीसराय के अशोक धाम, मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, सुपौल के तिलहेश्वर स्थान और सहरसा के मटेश्वर नाथ मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना कर जलाभिषेक कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में पहली बार कांवरियों पर पुष्प वर्षा की गई। इधर भागलपुर के सुल्तानगंज में बड़ी संख्या में कांवड़िया उत्तरवाहिनी गंगा का जल उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये कांवड़िया 105 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। समाचार कक्ष से कल्पना झा।
0: सीतामढ़ी के विक्रम उमेश कुमार ने पेरू के लिमा में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 में स्वर्ण पदक जीता है। श्री कुमार ने यह पदक पुरुष एकल वर्ग में अपने नाम किया। उन्होंने फाइनल में भारत के ही विजेंद्र को पराजित किया। विक्रम उमेश कुमार सीतामढ़ी जिले के पुपड़ी गांव के रहने वाले हैं। वे अब तक 23 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर मुकेश कुमार और आकाशदीप ने आज बिहार पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर योगदान दिया। बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति संशोधन नियमावली 2026 के तहत दोनों की औपबंधिक नियुक्ति की गई है। पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने दोनों नवनियुक्त पुलिस उपाधीक्षकों का स्वागत किया। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दोहन ने जिला प्रशासन और प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान की शुरुआत की। सहरसा, समस्तीपुर और गया में विभिन्न किसान और मजदूर संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर जेल भरो आंदोलन किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 1,01,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से मासिक पेंशन की राशि भेजी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए है तैयार। और सीतामढ़ी के विक्रम उमेश कुमार ने पेरू के लिमा में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
3: आइए। इसे मोबाइल चार्ज करना,
4: दिमाग चार्ज कर अपना।
5: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
4: देखा
3: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,
5: अब क्या करोगे?
3: तेरी वाईफाई है ना?
4: बुद्धू सुधर जा।
5: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
3: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है रोहतास जिले की हलचल। रोहतास जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता चंदन कुमार।
1: कैमूर की पहाड़ियों और ऐतिहासिक विरासत को समेटे रोहतास में सावन के साथ प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक आस्था का रंग भी गहरा हो गया है। सावन की दूसरी सोमवारी पर गुप्ता धाम से लेकर सासाराम के माँ ताराचंडी धाम, बुढ़वा शिव मंदिर और तिलेश्वर धाम तक शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजन कर रहे हैं। इधर गुप्ता धाम और ताराचंडी धाम में श्रावणी मेला लगा है, जहाँ श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। इंद्रपुरी बराज से सोन नदी में 17,591 क्यूसेक और पूर्वी और पश्चिमी संयोजक नहरों में 12,440 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचने से रोहतास समेत अन्य जिलों के किसानों को सिंचाई में राहत मिली है। नहरों में पर्याप्त पानी पहुंचने से धान की रोपनी और सिंचाई के कार्य में तेजी आई है। धान के कटोरे के नाम से मशहूर रोहतास में धान की रोपनी अंतिम चरण में है। जिले में करीब 96% रोपनी पूरी हो चुकी है। किसानों को उर्वरक की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। किसान भी खेती के काम में पूरी तरह जुटे हुए हैं। शारदीय खरीफ 2026 के तहत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत जिले के डेहरी प्रखंड के किसानों को धान के खेतों की मेड़ पर अरहर की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना के तहत खेत की खाली पड़ी मेड़ों का उपयोग कर किसान बिना अतिरिक्त भूमि के अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे। प्रखंड कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि डेहरी प्रखंड को 236 इकाई का लक्ष्य मिला है। एक इकाई में किसान को 240 से 625 मीटर तक खेत की मेड़ पर अरहर की बुआई करनी होगी। वर्तमान में 200 इकाइयों के लिए 2 क्विंटल बीज प्राप्त हुआ है तथा प्रत्येक किसान को 1 किलोग्राम बीज निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जिले में 19 मॉडल स्कूल और 5 नए डिग्री कॉलेज शुरू किए गए हैं। विकास योजनाओं को गति देने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार समीक्षा और स्थल निरीक्षण किया जा रहा है। जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्र ने अस्पताल, यातायात, पर्यटन स्थलों, बिजली, जल जमाव और विभिन्न विकास योजनाओं का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत जिले में रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने का काम तेजी से चल रहा है। बीते दिनों कार्य प्रगति को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। अब तक सैकड़ों घरों के छतों पर सोलर संयंत्र लगाए जा चुके हैं। इच्छुक उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर सोलर संयंत्र लगाने का काम भी जारी है। इससे बिजली की बचत के साथ उपभोक्ताओं के बिजली खर्च को भी कम करने में मदद मिल रही है। जिले में स्टार्टअप को बढ़ावा देने की दिशा में भी गतिविधियां हुई है। सिरसा इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टार्टअप पिच वर्कशॉप आयोजित की गई। ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में काम कर रहे स्थानीय स्टार्टअप की उपलब्धियां भी चर्चा में रही। विक्रमगंज अनुमंडल के घोसिया खुर्द स्थित उत्कर्ष सीबीजी प्लांट का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पराली और कृषि अवशिष्ट से तैयार किए जा रहे कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं और सरकार तथा जिला प्रशासन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रहा है। जिले के सदर अस्पताल परिसर में करोड़ों रुपए की लागत से बने मॉडल हॉस्पिटल में अब चिकित्सीय सेवाएं शुरू हो गई है। फिलहाल ट्रामा सेंटर, इमरजेंसी वार्ड और जनरल वार्ड का संचालन यहां किया जा रहा है। चरणबद्ध तरीके से अन्य स्वास्थ्य सेवाओं को भी मॉडल हॉस्पिटल में स्थानांतरित किया जा रहा है। सदर अस्पताल परिसर में जल जमाव और मरीजों की सुविधाओं को लेकर प्रशासन ने निरीक्षण किया है और शीघ्र समाधान की योजना तैयार की जा रही है। संत रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर समरसता, समानता, सेवा और मानवता का संदेश के साथ जिले में भी कलश यात्रा निकाली गई। संत रविदास के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए 7 महीने तक विभिन्न कार्यक्रम जिले में आयोजित किए जा रहे हैं और फिरौती के लिए अपहरण और हत्या के 11 साल पुराने एक मामले में अदालत ने 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। पुलिस के अनुसंधान के आधार पर आए इस फैसले से पीड़ित परिवार को लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला है।
0: अभी आप सुन रहे थे रोहतास जिले की हलचल। रोहतास जिले की हलचल को पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता चंदन कुमार।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ एवं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी

का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत

अभी आप सुन रहे थे गीत फिल्म में लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर को। हसरत जयपुर के लिखे इस गीत को संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। आइए अब सुनते हैं यशुदास और हेमलता के स्वर में चितचोर का यह गाना, जिसके बोल लिखे हैं रविंद्र जैन ने और संगीत भी उन्होंने ही दिया है।

अभी आप फिल्म संगीत का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से संसद समीक्षा सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात
1: इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा स्पष्ट बनाना है। राज्यसभा ने संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और नीट प्रश्न पत्र लीक को लेकर राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर कुछ देर नारेबाजी करने के बाद विरोध व्यक्त करते हुए सदन से वॉकआउट किया। यह विधेयक औपनिवेशिक काल के पुराने अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विपक्षी सदस्यों के बीच हंगामे के बीच इस विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए रखा। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से बैंकों को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही अदालती मामलों में बैंक के पक्ष को मजबूती से रखा जा सकेगा। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि आज बैंकिंग सेवाओं का बड़े स्तर पर डिजिटलीकरण हो गया है। बैंकिंग क्षेत्र की इस जरूरत को देखते हुए मूल कानून में बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि मूल कानून में कागज आधारित प्रति पर बहुत जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पहले बैंकों को उनके लेन देन के सिलसिले में कागजी रिकॉर्ड लेकर अदालत में बुलाया जाता था और इसमें डिजिटल रिकॉर्ड

का उल्लेख नहीं था, अब डिजिटल रिकॉर्ड मान्य होगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने बैंक ग्राहकों के साथ बढ़ते साइबर अपराध को लेकर चिंता व्यक्त की। चर्चा में बीजत के मानस रंजन मंगराज, भाजपा के अरुण सिंह और शंभू शरण पटेल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के डॉ एम थंबीदुरई और डॉ एम धनपाल, रंकापा के राजेंद्र हीरालाल जैन, तेदेपा के भाष्यम रामकृष्ण, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, द्रमुक सदस्य एल के सुधीश और शिवसेना की डॉक्टर ज्योति नागराज वाघमारे ने हिस्सा लिया। प्रस्तावित कानून में बैंकर्स बुक्स या बैंक कार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उसके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का भी प्रावधान है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण या स्पेशल कॉज परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन में कराधान तथा अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य उस मौजूदा कानूनी प्रावधान को हटाना है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने से रोकता है। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के तरुण चुग, विक्रमजीत सिंह साहनी, डॉ कल्पना सैनी, रेखा शर्मा, धनंजय भीमराव महादिक, बाबूराम निषाद, द्रमुक सदस्य पी विल्सन, बीजत के सुभाषीष खुंटिया, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के डॉ एम थंबीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, UPPL के प्रमोद बोरो, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू और तेदेपा के विजय चिंता कायला ने हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक में भारत को विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में विनिर्माण केंद्र के रूप में मजबूत करने और वैश्विक कंपनियों को उपकरण, पुर्जे तथा सामग्री लाने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य निहित है। उन्होंने कहा कि कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कलपुर्जे ऐसे हैं जिनका भारत में निर्माण नहीं होता, लेकिन देश में उनकी जरूरत होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अनुबंध पर विनिर्माण करने वाली कंपनियों से जुड़ी विदेशी कंपनियों को कर छूट देने का प्रस्ताव है। यह छूट वर्तमान में 5 साल के लिए उपलब्ध है, जिसे बढ़ाकर वित्त वर्ष 2040-41 तक करने का प्रस्ताव है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पूर्व में भारतीय डेटा सेंटर का इस्तेमाल करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों को कर छूट देने का वादा किया गया था, लेकिन इसके लिए उन्हें सरकार की बहुस्तरीय मंजूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। विधेयक में डेटा सेंटर के लिए अधिक स्पष्ट और सरल नियमों का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विधेयक में UPI लेनदेन करने वाले पर कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। UPI पहले की तरह ही छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए मुफ्त होगा। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास के सांवैधानिक संकल्प को खारिज कर दिया है। विधेयक पर चर्चा और पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे इससे पहले ही सदन से वॉकआउट कर गए थे। मंत्री के जवाब के बाद कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। तत्पश्चात उच्च सदन में विशेष उल्लेख के जरिए भाजपा के अमरपाल मौर्य, डॉ अनिल सुखदेव राव बोंडे, डॉ मेधा विश्राम कुलकर्णी, सुजीत कुमार, बाबू भाई जयसंग भाई देसाई, दर्शना सिंह, डॉ धर्मशीला गुप्ता, डॉ दिनेश शर्मा, अधिकारी मायूम शारदा देवी, केसरी देव सिंह झाला, डॉ कल्पना सैनी और रेखा शर्मा ने लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। बाद में उच्च सदन की बैठक कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले राज्यसभा की बैठक राजधानी दिल्ली में पिछले महीने नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण 3 बार बाधित हुई। सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने और सरकारी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह की सदन में उपस्थिति और जवाब की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर को मिले चंदे में कथित चोरी के आरोपों को लेकर भी नारेबाजी की।

सभापति ने सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध विषयों को उठाने की अपील की। हंगामे के बीच ही भाजपा के राहुल सिन्हा, तरुण चुग, डॉक्टर के लक्ष्मण और बाबूभाई जयसंग भाई देसाई ने आसन की अनुमति से सदन में लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। इस दौरान विपक्षी सांसद आगे की पंक्ति के पास एकत्र हो गए और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिए जाने की मांग करने लगे। राधा कृष्णन ने प्रदर्शन कर रहे सांसदों से अपनी सीटों पर लौटने को कहा ताकि उनकी मांग पर विचार किया जा सके। अपनी बात का असर होता न देख सभापति ने करीब 11:20 पर बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब प्रश्नकाल के लिए सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो आसन की अनुमति से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और प्रवास तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ऊर्जा संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए खड़े हुए, लेकिन कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026

तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ऊर्जा संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए खड़े हुए, लेकिन कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के उद्देश्य से पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग दोहराते हुए हंगामा जारी रखा। कुछ सदस्य तो अपने स्थान से उठकर आगे आ गए। सदन में व्यवस्था न बनते देख उपसभापति हरिवंश ने बैठक को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। 15 मिनट बाद बैठक के फिर से शुरू होने पर सदन में बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक और कराधान तथा अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को लिया गया। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के बीच ही सदन ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा के बिना पारित कर दिया। शोर शराबे के बीच ही सदन में 3 अन्य विधेयक खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए गए। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी पर सदन में चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और सपा समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की बैठक 2 बार के स्थगन के बाद जब अपराह्न 2 बजे शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है और गृहमंत्री अमित शाह विस्तार से जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी पहले दिन से यह मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह को विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि मैं सरकार की ओर से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि सरकार विद्यार्थियों के मामले को लेकर चर्चा और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष से अनुरोध है कि उन्हें गृह मंत्री के जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, उन्हें पूरा जवाब सुनना पड़ेगा। श्री रिजिजू ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी यह बात कही गई है कि सरकार विस्तार से चर्चा और जवाब देने को तैयार है। इस दौरान विपक्ष के सदस्य सदन में नारेबाजी करते रहे। इस बीच विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। श्री मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। उनका कहना था कि यह विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र बदलने का विधेयक नहीं है। विधेयक का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने आसन के समीप आकर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों से कहा कि वे गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग कर रहे थे और अब जब संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि गृह मंत्री सदन में चर्चा का जवाब देने को तैयार है तो सदन की कार्यवाही चलनी देनी चाहिए। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा करने लगे। आसन पर उस समय आरएसपी नेता एन के प्रेमचंद्रन थे जिन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराने का प्रयास किया। वैसे सामान्य तौर पर लोकसभा में प्रश्नकाल के समय आसन पर अध्यक्ष ओम बिरला होते हैं। हंगामा जारी रहने पर भी श्री प्रेमचंद्रन ने बैठक शुरू होने पर भी 2 मिनट अंदर ही दोपहर 12 बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही फिर से आरंभ होने पर भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 और कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन

0: संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहले ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। हालांकि ये दोनों विधेयक केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नाम से सूचीबद्ध थे। हंगामा नहीं थमने पर भी पीठासीन सभापति संध्या राय ने दोपहर 12:14 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 तक के लिए स्थगित कर दी। इस प्रकार मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही लगातार 16वें दिन आज भी सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। सदन में आज पेश किए गए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना है। विधेयक के तहत NCDC को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सहकारिता मंत्रालय के तहत आने वाला NCDC एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के तहत की गई थी। NCDC के प्रमुख कार्यों में कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों और अन्य अधिसूचित वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण और आयात निर्यात से जुड़े कार्यक्रमों की योजना बनाना, उन्हें बढ़ावा देना और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना शामिल है। इस नए विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के वितरण के अनुसार जून 2021 में अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन और केंद्र सरकार द्वारा सहकारी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों के बाद सहकारी क्षेत्र के विकास में NCDC की भूमिका काफी बढ़ गई है। केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 भी सदन में पेश किया गया, जिसमें केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 24 फरवरी को केरल का नाम बदलकर केरलम करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें केंद्र से राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरलम करने का आग्रह था। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर, यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप एवं DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सिंगर हार्ट।

नमस्कार बंधु लोकनि, स्वागत अछि अपने सब गोटे के आजुक अंक में। आ आजुक अंक लऽ कऽ आबि गेल छी हम अहाँक साहित्यिक सहयात्री सोनू। एखन सँ लऽ कऽ आधा घंटा धरि हम अपने लोकनि सँ गपशप करब, किछु साहित्यिक गप करब तो किछु सामाजिक गप करब। खाली गपेटा नहीं करब, गपक संग संग बीच बीच में गीत नादक आनंद सेहो लेब। जँ अवसर भेटत तऽ काव्य पाठ सेहो सुनाएब। आ सबसँ पैघ तऽ जे हमरा लोकनि सब दिन अपन कार्यक्रम सिंगरहार में करैत एलौ हैं, माने शब्द विमर्श, से आइयो किछु शब्द पर हम सब गपशप करब, माने शब्द विमर्श करब। अहाँ सब तो जानैत छी जे सिंगरहार कार्यक्रम अहाँ अपन रेडियो सेटक संग संग मोबाइल फोन पर सेहो सुनि सकैत छी न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम सँ। अहूठाम हम अहाँ के भेटब, अहाँ संग बतियात। कहल जाइत अछि जे सावन में जँ पछवा बहिने तो सुखलो

जे नदी रहै छलै ताहू मे नाव चलय लगैत छल। मुदा एखनका जे सौनक स्थिति अछि से तऽ देखिए रहल छी, कोनो नदी नहर के कहै, रास्ता बेरस्ता सेहो जेना गर्दे उड़ियाइत अछि, धूले उड़ियाइत अछि। ई भिन्न बात जे कखनो कोमरो सँ एक टुकड़ी मेघ अबैत अछि आ थोड़े जल छीट कऽ चल जाइत अछि। ओहि छिटलाह जल सँ धरतीक करेज सेहो प्यासले रहि जाइत छैक, ओकरो तृप्ति कहाँ भेटैत छैक। कहल जाइत छलैए जे साउनक पछवा, भादिवक पूर्वा आ आसिन बहे ईशान, कातिक कंता सिकियो ने डोले, कहाँ रखता धान किसान। ई छलनि हैं डाक के कहब। मुदा आय जना हुनको बात सब, हुनको कहलाहा जे गप छलैए ने, ओहो लगैत अछि जे आब असर नहीं छुए में, ओ बात जना आब नहि मैच खा रहल छै आजुक समय सँ। कहाँ बरिसा भ रहल अछि, कहाँ बरखा भ रहल अछि, आब साउन बीत रहल छै, अखार तऽ ओहिना बीत गेल धुरियाले, साउन सेहो सुखैले सन बीत रहल अछि। खेत में जे हमर किसान सब बीया खसेने छलाह धान के रोपबाक लेल, धान से खेत में कादो कोना हेतैक, जा धरि खेत में पानि नहीं लगतैक, आ पानि लगतै कोना जा धरि मोन सँ बरखा नहीं हेतैक। देखियो ने जे साउन एकदम बीत रहल अछि आ खेत सब ओहिना सुखायल छै, कतौ कतौ तऽ बीया सुखा रहल छै। हाँ, ई भिन्न बात छै जे जँ कतौ नहर सँ पानि अबैए तऽ हुनका सबके से रोपनी भ रहल छनि। किछु किसान इहो सोचि कऽ अपन रोपनी कऽ रहल छथि, कृत्रिम व्यवस्था कऽ कऽ, किन्सियाइत जब भादवो बरसतै तऽ किछु उपजा भऽ जेतैक। मुदा जँ इएह स्थिति रहल तऽ सोचनीय तऽ अछि जे आगू की हैत, किसान सब कोना जीता, कोना हुनकर सभक स्थिति से चलतनि। मुदा कखनो कऽ जखन फिर सोचबै ने जे आइ जे ई स्थिति उत्पन्न छैक से कोना भेलै, किया भऽ रहल अछि, कि एकरा पाछू कहीं हमही सब तनि जिम्मेदार छी, तऽ लागत जे हाँ एकदम हमही सब तऽ एकर पाछू जिम्मेदार छी। हमरा लोकनि प्रकृतिक संग ततेक दोहन करय लगलहुँ जकर कुप्रभाव आइ हमरे सब पर पड़ि रहल अछि। हमही लोकनि तऽ हरियर हरियर गाछ वृक्षके काटब आरम्भ केलहुँ, हरियर जंगल हटा कऽ कंक्रीटक जंगल चहुँ दिस लगा देलहुँ, तकर परिणाम सोझे अछि, गाछे वृक्ष ने हकारि कऽ अनैत छलै मेघ के, आ तखन ओ हमरा सबके जल बरसबैत छलै, आ से गाछे वृक्ष जखन हमरा लोकनि नष्ट कऽ देबै तऽ बरखा कतऽ।

कोना हैत। ई बात हमरा सबके बुझ पड़त आ बुझिए की पड़त ओकरा लेल उपाय करो पड़त। आबो चेतु आबो जे छे से हमरा लोकन गाछ लगाबी, फलदार गाछ जो लगाबी तो आर नीक आ नोय तो छायादार गाछ सेहो लगाबी। जतेक बेसी गाछ लगाएब ओतेक हमरा लोकन के ओकर लाभ भेटत। बरखा समय पर हैत फिर से हमरा सबक जे हरियाली छलै जीवन में से वापस आबि जायत। ई सावन मास तो चारू भर हरियर हरियर देखाइत छलै से अखनो नजर आयत। सावन में तो हरियरी रहते छैक, हरियर के तो बेसी महत्व छै है ई सावन में। से कनिको जब बरखा होइ छै ने तो छोट छोट गाछ सब जन्मै छै आ ओ देखबा में सुंदर लगैत अछि। आइ भोर में जखन हम बाध दिस गेल रही तो पूरा बाध हरियर लगै छलै, मुदा से कहियो धान से हरियाल रहै छलै आ एखन छोट छोट जन्मल जंगली घास सँ, कारण जे कने मने पानि होइत छै जैसक खेती तो होइ नहीं छै, ओहि खेत में उपज जाइत छै जन्म जाइत छै खर पतार छोट छोट जे अइ खरपोशा पानि में जन्मैत अछि। सावनक तो अपन से सौंदर्य रहलै है से बरखा लगत तो निश्चित जखन पानि पड़ैत अछि झिहिर झिहिर बरखा पड़ैत रहैत अछि तखन से मोन सेहो गुदगुदाइत रहैत अछि। मोन होइत रहैत अछि गीत गुनगुनायल जाय, ओहि बरखाक जे बूंदक संगीत छै ताहि संगीत संग अपन गीत जोड़ल जाय। भने आय बरखा नहि होइए तैं कि मोन त मोन छै ओत गीत सुनबे करत, कजरी गेबे करत।

0: सांप काटे तो समय ना गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
1: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: ए विज्ञापन सब पहिने हम सब कजरी सुन रहल छलौ हैं ममता ठाकुर सँ। बंधु लोकन हम सब गप कर रहल छलौ हैं सौन मास पर, एकर सौन मासक सौंदर्यता पर। सौन मास जे होइत अछि जे अछि तकर सौंदर्य बहुत छैक। ई हरियरी चारू कात हरियर हरियर तऽ रहिते अछि, बरखा तऽ झमाझम पड़िते छैक, आ एहि बरखामे एहि हरियरीक संग एकटा पावनि सेहो होइत अछि एहि सौन मासमे, आ ओहो पावनि हमर मिथिलामे होइत अछि, मने मिथिलाक प्रसिद्ध पावनि एकटा सेहो एहि सौन मासमे होइत अछि। आ ओ पावनि करैत छथि नव विवाहिता लोकनि। हुनका लोकनिक पावनि होइत छनि

पंचमी मधुश्रावणी। एहि एक बरख मे जिनकर सभक विवाह भेल रहै छनि ओ ललना लोकनि ई पावनि करै छथि। पंचमी दिन सँ लऽ कऽ आ मधुश्रावणीक पूर्व संध्या धरि हुनका लोकनिक एकटा विशेष अभियान कही, पूजा पाठक ओरियाओन कही, से होइत छनि। ओ छै फुल्लोढ़ी। साँझ खनक ई लोकनि फूल लोढ़ि कऽ अनै छथि आ वह फूल भोर भेने विषहारा के चढ़बैत छथि, मने विषहाराक पूजा करैत छथि 15 दिन धरि। ई जे फूल लोढ़बाक क्रम छै ओ अत्यंत मनमोहक होइत अछि, खूब सुंदर लगैत अछि। जखन ललना लोकनि रंग बिरंगक वस्त्र पहिरने फूल लोढ़बाक लेल जाइत छथि आ विभिन्न रंगक फूल पत्ती सँ अपन डाली के, अपन चंगेरी के सजबैत छथि आ ओ सजायल रंग बिरंगक डाली लऽ कऽ जखन ओसब अपन घरक लेल प्रस्थान करैत छथि तखनका दृश्य तऽ आर सुंदर लगैत रहैत अछि। लगैत रहैत अछि जेना कोनो फुलवारी मे, कोनो फुलवारिये कहू जे संगे चलि रहल छै, ततेक सुंदर ततेक किस्मक फूल सब रहैत अछि। ई जे फूल लोढ़ी कि पंचमी आ कि मधुश्रावणी पावनि अछि, एक बात जँ कही जे ई मात्र पावनि नहि, ई संस्कृतिक संरक्षण अछि, तऽ कोनो अतिशयोक्ति नहि हैत। कारण जे हमरा सब ती बात जनैत छी जे अधिकांश संस्कृति जे अछि, अपितु कही जे हमरा सभक जे संस्कृति अछि तकरा बचा कर रखबा मे, तकरा जोगा कर रखबा मे ललना लोकनिक विशेष योगदान छनि। असे सब समय पर आके ई देखबा में अबैत अछि। ई फुल्लोढ़ी क्रम में अकि जखन पंचमी मधुश्रावणी होइत पूजन करै छथि ताहि क्रम में से गीत सेहो गाओल जाइत अछि। ताहिमे बहुत रास एहन गीत अछि जे पारंपरिक गीत सब अछि जकरा हमसब लोकगीत कहैत छियै। ई लोकगीत सब जे अछि ने तकरो बचा कऽ अपना कंठ मे जोगा कऽ हमर मैथिलानिये सब रखलनि अछि। कारण जहिया कोनो लिखित रूप सँ से गीत के नहि राखल जाइत छल, कोनो लिखित या कोनो लिखबाक कोनो तेहन साधन नहि छलै, तहियो एक कंठ सँ निकलि कऽ दोसर कान मे जाइत छलै आ ओ दोसर कानक रास्ते हृदय मे प्रवेश कऽ जाइत छलै आ पुनः ओ अवसर पाबि कऽ प्रस्फुटित होइत छलै। से ई क्रम पीढ़ी दर पीढ़ी चलैत रहल अछि। आइ जखन लोक चांद पर चल गेल अछि आ से पुरखक संग डेग में डेग मिला आ कि कही जँ एक डेग आगू बढ़ि कऽ महिला लोकनि, स्त्री लोकनि सेहो चांद धरि आ कि सात समुद्रक पार धरि आ कि

कोनो क्षेत्र हो जतय ओ अपन उपस्थिति अपन दम्भ खम्भ सँ दऽ रहल छथि, तखन वह लोकनि अपन संस्कृतिक संरक्षणमे सेहो ओहिना लागल छथि। तखन लगैत अछि जे हमरा सभक संस्कृति अनामित अहिना रहत। आ से आइ जखन साँझखन अबै छलहुँ हैं आ वह फूल लोढ़ीक दृश्य देखलहुँ तऽ हमरा अचानक एहिठाम से मोन पड़ि गेल जे ओ दृश्य कते सुंदर लगै छलै से अहूँ सबसँ ओकरा कने परसि ली, अहूँ सबसँ ओहि विषयमे गप कऽ ली। आ ताहूमे सबसँ तऽ ओ रास्तामे चलैत जे गीत गबैत छलथि है से कतेक कर्णप्रिय छलैए जे ओकर रसास्वादन अहूँ सब कऽ सकैत छी।

0: सांप काटे तो समय ना गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
1: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: अखन हम सब विज्ञापन सुनलहुँ आ ताहिसँ पहिले गीत सुनै छलहुँ विभा सिन्हासँ। देखियौ कार्यक्रमक एकदम

अंत अंत में आबि गेल छी हम त चली से पहिने किछु शब्द सो गप कली त शब्द छ निधोक मने कोनो हिचकिचाहट के काज करब निधोक भ क तेना निशोक जकरा कोनो सौख नहीं होए तकरा निशोक कहल जाइत अछि आ निर्मोह जकरा कोनो मोह नहीं होए ओ निर्मोह भेल ई छल आजुक शब्द आब कार्यक्रमक समय एकदम समाप्ति पर अछि सोनू के चलबाक आज्ञा देल जाए नमस्कार।

सिमरहार यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से सुन रहे थे। अब से कुछ ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार का प्रसारण होगा। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने की देने की अपील की। कहा, गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों तथा पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे, पुरुष और महिला टीम पूल डी में शामिल। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा।

0: संसद ने बैंककार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी, लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
1: The bill, among various other things that it wants to do,
2: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
1: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
0: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही 3-3 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए गए। इनमें से अधिकरण सुधार विधेयक 2026 विपक्ष के शोर शराबे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में 2 विधेयक चर्चा के लिए लिया गया, जिनमें बैंकिंग प्रणाली को आधुनिक और आज के डिजिटल युग के अनुरूप बनाने के लिए बैंककार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित किया गया। इसके अलावा कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के बाद इसे लोकसभा को लौटा दिया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृहमंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
5: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
0: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृहमंत्री के वक्तव्य की मांग की।
6: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
0: भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है।
7: फिर से मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खिंगांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
1: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया, जिसके बाद बल का प्रयोग किया गया। रांची सिटी एसपी पारस राणा और एसपी ग्रामीण गौरव गोस्वामी ने छात्रों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील करते हुए कहा कि पुलिस ने संयम बरता है। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजी परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: इस वर्ष 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में देश के युवा शक्ति के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया जाएगा।
2: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले से करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के समारोह का एक प्रमुख आकर्षण वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव होगा। पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा। समारोह की दूसरी प्रमुख थीम युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 की यात्रा का नेतृत्व है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है, जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और हरघरतिरंगा.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। तिरंगा रैली को उपायुक्त कृष्णलाल ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से झंडी दिखाकर रवाना किया। मणिपुर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत इम्फाल में बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हजारों बाइक सवारों ने हिस्सा लिया। सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVI के अंतर्गत 10 लाख प्रशिक्षण के लक्ष्य को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे भ्रामक दावे को खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय PIB के फैक्ट चेक इकाई ने स्पष्ट किया है कि PMKVI के तहत ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
3: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: भारत ने

0: राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर राजेश सिन्हा भाग लेंगे। वस्त्र मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हैंडलूम डिजाइनर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया। इसमें डिजाइनर, बुनकर, नेत्र निर्माता और उद्योग से जुड़े लोग शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, UPI लेन देन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने देने की अपील की। कहा गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Parliament passes taxation bill to strengthen country's manufacturing ecosystem, attract investment and create jobs. Finance Minister Nirmala Sitharaman assures UPI transactions to remain free. Legislation granting legal recognition to digital banking records as evidence also gets nod from Parliament. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urges opposition to allow Lok Sabha to function for Home Minister Amit Shah's statement on student protest-related issues. Protests intensify in Jharkhand over recruitment exam irregularities after clashes between students and police during assembly march in Ranchi. 80th Independence Day celebrations to showcase Yuva Shakti and its contribution to Viksit Bharat by 2047. National song Vande Mataram to be sung from the ramparts of Red Fort for the first time. Heavy rainfall forecast for Himachal Pradesh and East Rajasthan tomorrow. And FIH Hockey World Cup 2026 begins later this week with new format as quarterfinals are scrapped. India drawn in the men's and women's Pool D. And now the news in detail. Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 today, with Rajya Sabha returning it to the Lok Sabha after discussions. The Lok Sabha has already passed the bill. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman had moved the bill. The bill seeks to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, the Income Tax Act 2025 and the Finance Act 2026. The legislation will replace the Income Tax Amendment Ordinance 2026, which was promulgated on the 5th of June this year. Replying to the discussion, Union Finance Minister said that the objective of the bill is to strengthen India's manufacturing ecosystem, attract further investment, generate employment and promote manufacturing activities. She said the second major reform relates to providing tax exemptions to foreign companies procuring data services from specified data centers in India and enhancing ease of doing business. The minister clarified that the bill does not impose any tax or transaction charge on UPI users.
2: It does not impose any tax or transaction charge.

0: Stuttgart, was dazu kommen.
1: The FIH Hockey Men's and Women's World Cup 2026 will feature a revamped competition structure with the traditional quarterfinals stage scrapped and the top two teams from each of the two crossover pools advancing directly to the semifinals. Belgium and the Netherlands jointly host the tournament from the 15th to the 30th of this month. The new format means teams will have little margin for error from the outset, with results from the opening pool stage potentially carrying over into the next phase. India's men have been drawn alongside England, Pakistan and Wales in Pool D, while the Indian women will face China, England and South Africa in their Pool D campaign. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament passes taxation bill to strengthen country's manufacturing ecosystem, attract investment and create jobs. Finance Minister Nirmala Sitharaman assures UPI transactions to remain free. Legislation granting legal recognition to digital banking records as evidence also gets nod from Parliament. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urges opposition to allow Lok Sabha to function for Home Minister Amit Shah's statement on student protest-related issues. Protests intensify in Jharkhand over recruitment exam irregularities after clashes between student and police during Assembly March in Ranchi. 80th Independence Day celebrations to showcase Yuva Shakti and its contribution to Viksit Bharat by 2047. National song Vande Mataram to be sung from the ramparts of Red Fort for the first time. Heavy rainfall forecast for Himachal Pradesh and East Rajasthan tomorrow. And FIH Hockey World Cup 2026 begins later this week with new format as quarterfinals are scrapped. India drawn in men's and women's Pool D. And that's all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। पार्लियामेंट ने मुल्क के मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम को मुस्तहकम करने, सरमायाकारी रागिब करने और रोजगार के मौके पैदा करने की खातिर टैक्सेशन बिल को मंजूर कर लिया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने यकीन दहानी कराई है कि यूपीआई लेन देन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को शवाहिद की हैसियत से कानूनी तौर पर तस्लीम किए जाने से मुतालिक कानून को भी पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी है। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पर जोर दिया है कि वो तलबा के एहतजाज से मुतालिक मामलात पर वजीर दाखिला अमित शाह के बयान के लिए लोकसभा की कार्रवाई चलने दे। झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में बेजाब्तगियों पर तलबा के एहतजाज में तेजी आ गई है। तलबा ने पुलिस कार्रवाई के दरमियान रांची में असेंबली की जानिब मार्च किया। 80वें यौम आज़ादी की तकरीबात में युवा शक्ति और विकसित भारत 2047 के लिए नौजवान भारत के तावुन को उजागर किया जाएगा। पहली मरतबा वंदे मातरम लाल किले की फसील से गाया जाएगा। कल हिमाचल प्रदेश और मशरकी राजस्थान में शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और FIH हॉकी आलमी कप 2026 नए फॉर्मेट के साथ इस हफ्ते बाद में शुरू होगा, जिसमें क्वार्टर फाइनल मुकाबले खत्म कर दिए गए हैं। अब खबरें तफसील से। टैक्सेशन और दीगर कवानीन तरमीमी बिल 2026 राज्यसभा में गौर खोज के बाद लोकसभा को लौटा दिया गया। लोकसभा इस बिल को पहले ही मंजूर कर चुकी है, इस तरह इस बिल को पार्लियामेंट की मंजूरी मिल चुकी है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने ऐवान बाला में ये बिल पेश किया। बहस का जवाब देते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि टैक्सेशन और दीगर कवानीन तरमीमी बिल 2026 का मकसद भारत के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मुस्तहकम करना, मजीद सरमायाकारी को रागिब करना, रोजगार पैदा करना और मैन्युफैक्चरिंग सरगर्मियों को फरोग देना है। उन्होंने वाजे किया कि यह बिल यूपीआई सारिफिन पर किसी तरह का टैक्स या लेन देन के चार्जेस आयद नहीं करता। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि छोटे कारोबारियों और ग्राहकों को यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्जेस अदा नहीं करने होंगे। पार्लियामेंट की जानिब से बैंकरों के बही खाता शवाहिद बिल 2026 को भी मंजूरी मिल गई है, क्योंकि राज्यसभा ने भी इसे आज मंजूर कर लिया। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बिल पेश किया, जिसका मकसद मौजूदा बैंकिंग निजाम की जरूरतों को पूरा करने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क को हम आहंग करना है। ये बिल बैंकरों के बही खाते और इसे हम असर डिजिटल बैंकिंग तरीक़ाकार से मुताबिकत पैदा करने के लिए शवाहिद से मुतालिक कानून फराहम करता है। बैंकरों के बही खाता शवाहिद

0: बिल 2026 में इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि बैंकरों के इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को शवाहिद के तौर पर काबिल कबूल और मजाज माना जाएगा और वो कानूनी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। इस बिल पर बहस का जवाब देते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि ये बिल इसलाह पर मबनी कदम है जो मुल्क की तेज रफ्तार पेशकदमी में मदद करेगा। उन्होंने वाजे किया कि बैंकरों के बही खाता शवाहिद कानून को 1891 में तरतीब दिया गया था जब बैंकिंग निजाम पूरी तरह से कागज से चलता था। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि आज भारत ने अपनी मईशत को डिजिटल शक्ल देने में काबिल जिक्र तरक्की का मुजाहरा किया है। मोहतरमा सीतारमन ने मजीद कहा कि बैंकिंग और इक्तिसादी लेन देन अब बड़े पैमाने पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए हो रहे हैं जो अक्सर मोबाइल फोन पर आसान क्लिक के जरिए काबिल रसाई हैं। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि मुल्क का कानूनी फ्रेमवर्क इस तरह तब्दील हो जो इन जदीदकारियों की रफ्तार को बरकरार रख सके। इससे पहले राज्यसभा की कार्रवाई नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के खिलाफ मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलों पर अपोजिशन अराकीन की जानिब से हंगामाराई की वजह से कई मरतबा मुलतवी करनी पड़ी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज ऐवान की बिला रुकावट कार्रवाई के सिलसिले में तावुन के खातिर ऐवान के अरकान से जाती तौर पर एक अपील की। जनाब बिरला ने पार्लियामेंट हाउस में मुनाकिदा कारोबारी मशावरती कमेटी की मीटिंग के दौरान ये अपील की। जनाब बिरला ने ऐवान में तातुल पर अपने दुख का इजहार किया। उन्होंने ऐवान की कार्रवाई चलने देने के लिए ऐवान के लीडरों से एक जज्बाती अपील की कि वो वक्फा इस सवाल की कार्रवाई चलने दें और अहम बिलों पर बहस में हिस्सा लें। जनाब बिरला ने तामीरी बहस, बामायने शिरकत और आला तरीन पार्लियामानी रिवायात की पाबंदी की अहमियत पर जोर दिया। स्पीकर मौसूफ ने सभी पार्टियों से उनके तावुन की अपील की ताकि ऐवान की कार्रवाई को बिला रुकावट और मुनज्जम तरीके से चलाया जा सके और लोगों से वाबस्ता मामलात पर एक जामे और सूदबंद बहस हो सके। उन्होंने कहा कि लोगों के मामलात के सिलसिले में इस तरह से इंतजार नहीं कराया जा सकता और उनका इस ऐवान में इजहार किया जाना चाहिए, उन पर बहस होनी चाहिए और उनका हल निकाला जाना चाहिए। पीएसी मीटिंग के बाद पार्लियामेंट के अहाते में नामानिगारों से बात करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत तलबा के हालिया एहतजाज और मुतालिका मामलात पर पार्लियामेंट में तफसीली बहस के लिए तैयार है। इस बात की यकीन दहानी कराते हुए कि वजीर दाखिला अमित शाह हर मामले पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, जनाब रिजिजू ने कहा कि शहरियों को हकायक जानने का हक हासिल है। उन्होंने अपोजिशन पर ऐवान में नज्म व जब्त बरकरार रखने और कार्रवाई में मजीद रुकावट न डालने पर जोर दिया। जनाब रिजिजू ने अपोजिशन से ऐवान की कार्रवाई चलने देने की अपील की ताकि वजीर दाखिला अमित शाह तलबा के एहतजाज के सिलसिले में बयान दे सकें और अपोजिशन अरकान की जानिब से उठाए गए सवालात का जवाब दे सकें।
1: छात्र आंदोलन पर पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूरी तरह से सुनेंगे।
0: वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि हुकूमत पार्लियामानी बहस से कभी पीछे नहीं हटी है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि बीएसई मीटिंग के दौरान हुकूमत ने इस मामले पर जामे बहस के सिलसिले में वाजे तौर पर अपनी आमादगी जाहिर की थी। लोकसभा ने ट्रिब्यूनल्स इस्लाही बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। इस बिल का मकसद मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स में चेयरपर्सन्स और अराकीन की अहलियत, आज़ादी और तकरूरात और खिदमात को यकीनी बनाते हुए शफाफियत में इजाफा करना है। साथ ही इस बिल का मकसद ट्रिब्यूनल्स की इंतजामिया और कामकाज को बेहतर बनाना है। यह कानून नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन के क्याम की भी तजवीज पेश करता है। लोकसभा में नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के खिलाफ मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलों पर अपोजिशन अराकीन की जानिब से हंगामा आराई के दौरान इस बिल को बगैर किसी बहस मुबाहिसे के मंजूर कर लिया गया। हंगामा जारी रहने पर सदर नशी ने लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर मुमलिकत सुरेश गोपी ने मुत्तला किया है कि हुकूमत ने पेट्रोल में 20% से ज्यादा एथेनॉल की आमेजिश से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया है। वजीर मौसूफ ने राज्यसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में ये बात कही। जनाब गोपी ने कहा कि मुस्तकबिल में एथेनॉल की आमेजिश बढ़ाने के सिलसिले में कोई भी फैसला सिर्फ तफसीली साइंसी और तकनीकी मुताले और सभी मुतालिका फरीकों के साथ सलाह मशवरे के बाद ही किया जाएगा।

0: काश्मीर लद्दाख कोंकण गोवा वस्ती महाराष्ट्र नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा ओडिशा पंजाब उत्तराखंड मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी राजस्थान में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। एफआईएच मर्दों और खवातीन के हॉकी आलमी कप 2026 के मुकाबलों में ढांचा जाति तब्दीली की गई है। रिवायती क्वार्टर फाइनल मरहला खत्म कर दिया गया है और दो क्रॉस ओवर पूल्स के जरिए टीमें सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। बेल्जियम और नीदरलैंड मुश्तरका तौर पर इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे। यह टूर्नामेंट इस माह की 15 तारीख से शुरू होकर 30 तारीख तक जारी रहेगा। नए फॉर्मेट के तहत टीमों के लिए इब्तिदा से गलती की गुंजाइश बहुत कम होगी क्योंकि इब्तिदाई मरहले के नतीजे अगले मरहले पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। भारतीय मर्दों की टीम को इंग्लैंड पाकिस्तान और वेल्स के साथ पूल डी में रखा गया है जबकि भारतीय खवातीन खिलाड़ी पूल डी में चीन इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमों से मुकाबला करेंगे। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। पार्लियामेंट ने मुल्क के मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम को मुस्तहकम करने सरमायाकारी रागिब करने और रोजगार के मौके पैदा करने की खातिर टैक्सेशन बिल को मंजूर कर लिया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने यकीन दहानी कराई है कि यूपीआई लेन देन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को शवाहिद की हैसियत से कानूनी तौर पर तस्लीम किए जाने से मुतालिक कानून को भी पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी है। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पर जोर दिया है कि वो तलबा के एहतजाज से मुतालिक मामलात पर वजीर दाखिला अमित शाह के बयान के लिए लोकसभा की कार्रवाई चलने दे। झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में बेजाब्तगियों पर तलबा के एहतजाज में तेजी आ गई है। तलबा ने पुलिस कार्रवाई के दरमियान रांची में असेंबली की जानिब मार्च किया। और 80वें यौम आज़ादी की तकरीबात में युवा शक्ति और विकसित भारत 2047 के लिए नौजवान भारत के तावुन को उजागर किया जाएगा। पहली मरतबा वंदे मातरम लाल किले की फसील से गाया जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग।

0: नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, जिंदगी एक खूबसूरत सफर है और हर इंसान की चाहत रहती है कि हंसी खुशी ये सफर यूं ही चलता रहे, लेकिन प्रकृति का ये विधान है कि एक ना एक दिन ये सफर भी पूरा होगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जब ये सफर खत्म होगा तब क्या हमारे पीछे ऐसा कुछ रह सकता है जो किसी और हम सफर के जीवन के बुझते हुए चराग को रोशन कर दे। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं अंग दान की। एक ऐसा दान जो इंसान को उसकी मृत्यु के बाद भी अमर बना सकता है। भारत में हर साल लाखों लोग दोस्तों सिर्फ इसलिए समय से पहले दम तोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें कोई अंग जैसे किडनी, लिवर या हृदय नहीं मिल पाया। अस्पतालों के गलियारों में अपनों की जिंदगी की याचना करते परिवारों की आंखें किसी चमत्कार की उम्मीद में पथरा जाती हैं। जरा सोचिए, एक तरफ एक जिंदगी खत्म हो रही होती है और दूसरी तरफ उस पर निर्भर कई और जिंदगियां भी किसी एक अंग के न मिल पाने की वजह से कठिनाई झेलती हैं। अंगदान इसी समस्या के निवारण का एक रास्ता है, लेकिन इसे लेकर मौजूद हैं बहुत सी भ्रांतियां भी, जिनकी वजह से बहुत से इच्छुक लोग भी परोपकार के इस महान कार्य को या तो कर नहीं पाते या हिचकिचाते हैं। और ऐसी ही तमाम भ्रांतियों को दूर करने के लिए आज पब्लिक स्पीक में हमने विषय तय किया है, अंगदान, भ्रांतियों का निवारण और जीवन रक्षा। और इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अपने खास मेहमानों को। हमारे साथ है राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली से पधारे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा। स्टूडियो में आप दोनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन।
1: नमस्कार।
0: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आम तौर पर जैसा कि लोगों के जहन में रहता है कि अंगदान जो है वो है तो एक बहुत ही अच्छा एक नेक कार्य है, लेकिन यदि हमारे माता पिता में से या संबंधी में से कोई एक ऐसी प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर गए हैं तो जहन में ये आता है कि अब यदि हम वो अंगदान के लिए तैयार हो भी जाते हैं तो ये नहीं पता होता कि शायद कितने समय में हम संपर्क करें और क्या हमें उनका जो शरीर है, जो पार्थिव शरीर है, वो इस

0: समय हमें मिल पाएगा कि उसे देखकर दिल को किसी तरह की ठोस ठेस ना पहुंचे और क्षत विक्षत वो स्थिति में न हो, जैसे कि आम तौर पर लोग सोचते हैं और इस वजह से फिर वो हिचकिचा जाते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि कितना समय जो है वो आदर्श माना गया है अंगदान के लिए मृत्यु के बाद?
1: मृत्यु के बाद अंगदान के लिए आमतौर पर एक आईसीयू में जब मरीज दाखिल होता है और उसको आइडेंटिफाई किया जाता है ये जांच द्वारा कि उसके मस्तिष्क की मृत्यु हो चुकी है, तो ब्रेन डेड हो उसको घोषित किया जाता है। और इसमें एक बार नहीं दो बार परीक्षण किए जाते हैं और चार डॉक्टरों की टीम इसको सर्टिफाई करती है। तो उसके बाद ये ब्रेन स्टेम डेड डिक्लेयर करने के बाद में तो उसका उसको हम मेंटेन करके रखते हैं, सपोर्ट सिस्टम को हटाते नहीं है। अगर परिवार अंगदान की हामी भरता है तो उसके सारे ऑर्गेन्स जो डोनेट हो सकते हैं और वो दूसरों की जिंदगियां बचा सकते हैं, उसके साथ साथ उसके टिश्यूज भी डोनेट हो सकते हैं। तो टिश्यूज जो होते हैं वो इवन नेचुरल डेथ जो होती है, प्राकृतिक मृत्यु होती है या घर में मृत्यु हो जाती है या आईसीयू में नहीं होती किसी वार्ड में मृत्यु हो जाती है, तो उनमें टिश्यूज जैसे कॉर्निया स्किन है बोन्स हैं वो भी डोनेट हो सकते हैं। और लेकिन अंगदान आमतौर पर जब आईसीयू में मरीज की मृत्यु होती है तो उसमें 8 लोगों तक की जिंदगी बच सकती है, जिसमें 2 किडनीज हैं, लिवर है, हार्ट है, 2 लंग्स हैं फेफड़े जो बोलते हैं, और इंटेस्टाइन और पेनक्रियाज भी दान हो सकते हैं। तो इसमें सभी को आगे आना चाहिए, ये एक नेक मुहिम है और सभी को इससे जुड़ना चाहिए।
0: शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एक श्रोता हिसार हरियाणा से, राजेंद्र।
2: नमस्कार जी मनीष जी और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी।
0: नमस्कार राजेंद्र जी, क्या सवाल है आपका?
2: मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाथ या पैर कोई डैमेज हो जाए तो दोबारा से लगवाना चाहे तो क्या लग सकता है, और दूसरा है ये आंख दान की हुई किन लोगों को नहीं लग सकती, ये जानना था। नमस्कार जी।
0: जी तो आपने 2 तरह के प्रश्न किए, एक तो खास तौर पर नेत्र से संबंधित है तो उसका जवाब आपको देंगे भारतीय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के जो विशेषज्ञ हैं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा, और दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार। तो मैं पहले आपसे ये निवेदन करता हूँ डॉक्टर अनिल कि इनकी जो ये शंका है उसका निवारण आप करें।
1: बिल्कुल, हाथ का भी दान होता है और हाथ भी प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, और हमारा देश पूरे दुनिया में हार्ट हैंड ट्रांसप्लांट के मामले में जो हाथ का ट्रांसप्लांट है, जैसे किसी के हाथ कट गए हैं किसी दुर्घटना में, कहीं मशीन में कट गए या, तो उस तरह के सिचुएशन में भी हाथ का दान करके भी हम उनका हैंड ट्रांसप्लांट करके और वो भी 6 घंटे के अंदर ही हमें मृत्यु के उनका हाथ का दान कर देना होता है, तो वो आराम से उनको लगा करके, और 80 से ज़्यादा हार्ट ट्रांसप्लांट हमारे देश में हैंड ट्रांसप्लांट हो चुके हैं और ये दुनिया में आंकड़ा नंबर 1 पर है भारत का जो हैंड ट्रांसप्लांट का आंकड़ा है।
3: जहाँ तक नेत्र का सवाल है, आपका सवाल ये था कि किन लोगों को नेत्रदान करने के बाद भी ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि नेत्रदान का मतलब यह होता है कि जो कॉर्निया से रिलेटेड जो आगे जो पुतली होती है, जो ट्रांसपेरेंट जो पारदर्शक पुतली होती है, उसका ट्रांसप्लांट किया जाता है। उसमें जब सफ़ेदी आ जाए तो फिर लोगों को उसके कारण अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो वो जो सफ़ेद पुतली है उसे हटाकर जो ट्रांसपेरेंट डोनर कॉर्निया है उसे लगाया जाता है। जो मरीज़ जिनकी नस सूख गई हो या पर्दा ख़राब हो गया हो या फिर एक होते हैं दिमागी रूप से उनको दिखाई कम देता है जैसे कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस से कहते हैं, वैसे मरीजों को हम पुतली लगा के भी उनकी नज़र को हम वापस नहीं ला सकते।
0: तो उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और एक और हमारे श्रोता हैं हिमाचल प्रदेश शिमला से, और हमारे श्रोता हैं राकेश। राकेश जी क्या प्रश्न है आपका, कहिए।
4: जी जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश जी। और मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे दिव्यांग व्यक्ति हैं या दृष्टि बाधित लोग हैं, क्या वो अंगदान के पात्र हो सकते हैं या

0: उनको दे सकते हैं या ना दे सकते, ये मेरा प्रश्न है।
1: अंग दान के पात्र हो सकते हैं क्या दिव्यांग व्यक्ति, ये इनका प्रश्न है।
2: मृत्यु उपरांत तो दिव्यांग व्यक्ति हो या दृष्टिहीन व्यक्ति हो, अगर उनके जो भी अंग जो अंग बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं और हेल्दी पाए जाते हैं तो उनको दान किया जा सकता है। जब जीवित व्यक्ति जैसे कि कुछ अंग दान कर सकते हैं, किडनी या लिवर का हिस्सा, तो उसमें उनका मेडिकली फिट होना ज़रूरी होता है, तो और वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं जो जहाँ पे ट्रांसप्लांट होता है कि अगर वो मेडिकली उनको फिट समझते हैं तो ही उनका दान किया जाता है। आमतौर पे दिव्यांग व्यक्तियों के अंग, क्योंकि उनके अपने आप ही एक दिक्कत है तो उनको शायद फिटनेस नहीं मिलेगी अंग दान करने के लिए, लेकिन एज सच मृत्यु उपरांत अंग दान में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं है।
1: जी, तो राकेश जी का जो सवाल था दिव्यांग व्यक्तियों के विषय में, आशा है हमारे अन्य श्रोताओं को भी ये जानकारी मिली गई है कि वे भी कर सकते हैं, किंतु ये एक जटिल प्रक्रिया है, चूंकि वो स्वयं एक कठिनाई से गुजर चुके हैं, तो इस प्रकार जो स्पष्टीकरण दिया है डॉक्टर अनिल ने वो आप तक पहुंचा है। और डॉक्टर साहब, एक और बड़ा ही खास एक ये स्थिति होती है कि अंग दान जो है, जहाँ तक बड़े शहरों की बात है, देश की राजधानियाँ हैं या जो महानगर हैं, वहाँ पर शायद ये बहुत सरलता से हो सकता है, लेकिन जो ऐसे व्यक्ति हैं हमारे जो दूर दराज के गांवों में कस्बों में रहते हैं, और यदि उनकी ऐसी इच्छा हो तो वो कहाँ भला फिर वो इसके लिए संपर्क करें, इस विषय में आप हमें बताइए।
2: इसमें अंग दान के लिए एक तो हम कहते हैं कि आप रजिस्टर करवा लें, तो वो प्रक्रिया डिजिटली अवेलेबल है। नोटो की वेबसाइट पे जाके आप अंग दान एक मिनट में अपने आधार से अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करके एक छोटा सा फॉर्म भरना होता है कि पेरेंट्स के डिटेल हैं, कौन से अंग और उत्तक आप दान करना चाहेंगे मृत्यु उपरांत, तो वो फॉर्म भरने की प्रक्रिया मात्र एक मिनट की है। उसको आप वेबसाइट से जाके noto.mohfw.gov.in पर आप वो फॉर्म भर सकते हैं और आधार से सत्यापित ये फॉर्म होता है। दूसरा, आप हमारा 24/7 हेल्पलाइन नंबर है, वो नंबर मैं बता देता हूँ, 1-800-114770, 1-800-114770। तो ये 24 घंटे चलने वाला नंबर है, कहीं से भी आप कोई अंग दान के लिए रजिस्टर करना चाहे या अंग दान करवाना चाहे तो ये राष्ट्रीय हेल्पलाइन है, उसके द्वारा हमारी टीम जो इसको मैनेज करती है वो वहीं के नज़दीक के ही अस्पताल से टीम भेज कर की मृत्यु उपरांत भी अगर आप जानकारी देते हैं तो कॉर्निया डोनेशन है होता है, तो वो नज़दीक के आई बैंक से टीम जा कर के कॉर्निया का दान करवा पाएगी। लेकिन आपको जानकारी सही समय पर देनी है, समय से देनी है, 6 घंटे तो मैक्सिमम टाइम हम लोग रिकमेंड करते हैं, तो आपको टाइम से फ़ोन कर देना है तो आपका ये सब हो जाएगा, चाहे आप कहीं भी दूर दराज भी एरिया में भी हों तो।
1: धन्यवाद डॉक्टर अनिल। और हमारे एक और श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं पूर्वोत्तर भारत में त्रिपुरा से, और आप हैं अविनाश। अविनाश, क्या है आपका प्रश्न, कहिए।
3: जी नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार,
4: नमस्कार।
3: जी, मेरा सवाल यह है कि देखिए, मतलब कि जो लोग अंग दान करना चाहते हैं और उनके परिवार भी पहले राजी हो जाते हैं और अपना फॉर्म पे मतलब कि सारा कुछ फिलअप कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो उस पेशेंट की मृत्यु के बाद अगर उनके परिवार फिर से नकार जाएगा, नहीं इनका अंग दान नहीं करवाएंगे, तो फिर उस वक्त हम क्या कुछ कर सकते हैं।
4: देखिए, ऐसा है कि कोई भी अंग दान अगर होना है तो जिस इंसान की मृत्यु हो गई है तो उनके जो परिवारजन हैं, जैसे उनके बच्चे या उनके लड़के लड़कियां या उनके पोते पोतियां भी, वो उनका कंसेंट ज़रूरी होता है। अगर वो कंसेंट नहीं देते हैं तो उनका अंग दान नहीं हो सकता है।
1: जी, तो अविनाश, उम्मीद है आपको अपने इस महत्वपूर्ण

0: प्रश्न का उत्तर जो है वो मिल गया है। और नेत्रदान के ही विषय में डॉक्टर राजेश एक और सवाल अक्सर ये आता है कि कौन लोग नेत्रदान कर सकते हैं, लाइक किसी बीमारी, उम्र या अन्य कारण जिससे ग्रसित व्यक्ति, क्या ऐसा कुछ है कि वो नेत्रदान नहीं कर सकते? लेकिन आपसे हम इस प्रश्न का उत्तर लेंगे अपने श्रोता के इस प्रश्न के बाद। हमारे श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं कोल्हापुर से, महाराष्ट्र से, और आप हैं विजय कुमार सहनी जी। विजय जी कहिए। जी प्रश्न पूछिए। हाँ, विजय जी।
1: हाँ मनीष जी।
0: जी
1: मनीष जी नमस्कार।
0: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
2: नमस्कार, नमस्कार।
1: मैं विजय कुमार स्वामी बोल रहा हूँ, गांव बस्तवा तहसील से, जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से। मेरा सवाल यह है कि मैं अंगदान करना चाहता हूँ, इसका प्रोसीजर जरा बताइए हमें।
0: अंगदान आप करना चाहते हैं और उसका प्रोसेस यानी उसकी प्रक्रिया क्या है ये जानना चाहते हैं।
3: हाँ, तो जैसे अभी हमने बताया पहले भी कि आप ये डिजिटल माध्यम से अंगदान के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं एडवांस में ही, क्योंकि आप अभी पूरे होशोहवास में हैं, आप अपने लिए सोच सकते हैं। तो नोटो की वेबसाइट है, मैं वेबसाइट फिर बता देता हूँ, notto.mohfw.gov.in, या नोटो भी लिखेंगे तो ये वेबसाइट आ जाएगी। तो आप इस वेबसाइट पे जा करके अपना रजिस्टर फॉर प्लेज को क्लिक करेंगे तो आपका वो अपना आधार नंबर डालेंगे, तो आधार नंबर के बाद एक OTP आएगा आपके मोबाइल में, तो आपका मोबाइल आपके पास होना चाहिए जो आधार से लिंक्ड है और आधार नंबर आपको पता होना चाहिए। तो आपका घर का कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा बहुत भी इसको जानकारी रखता है वो कर पाएगा। एक मिनट का आपके, उसके बाद आपको अपने एक फॉर्म भरना है, उसमें अपने माता पिता का नाम और कौन से अंग वगैरह आप दान करेंगे और इमरजेंसी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने होते हैं। आप फॉर्म को सबमिट करेंगे, आपका ई डोनर कार्ड तुरंत आपके मोबाइल पर ही डाउनलोड कर सकते हैं। और 24 घंटे की आपको कोई हेल्प चाहिए, वो हेल्पलाइन नंबर मैं पहले भी बता चुका हूँ, उस हेल्पलाइन पे आप कॉल करके अंग अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जो कॉलर पे वहाँ पे बैठा है वो आपका अंगदान तुरंत आपका रजिस्टर करवा देगा। तो इसमें लेकिन आप ये आप मान के चलिए कि अंग रजिस्टर करने के बाद भी अंगदान के लिए परिवार को बताना बहुत ज़रूरी है, परिवार में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही उनकी सहमति के बिना आपका अंगदान, जैसे डॉक्टर साहब ने भी अभी बताया, आपका अंगदान मृत्यु उपरांत नहीं हो पाएगा। तो परिवार को बताना, उनसे डिस्कस करना कि ये मेरी इच्छा है और ये उसमें सहयोग करें आपकी मृत्यु के उपरांत, तो वो फिर जब भी कॉल करेंगे हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे चलता है, आप उस पर कॉल करके आप ये प्रक्रिया को पूरा आपका परिवार करवा सकता है।
0: धन्यवाद डॉक्टर अनिल। और जो श्रोता हमसे अभी अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और आज हम बात कर रहे हैं अंगदान, भ्रांतियों का निवारण और जीवन रक्षा विषय पर चर्चा। और दोस्तों आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा। दोस्तों ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और हमारे श्रोता जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से, श्रीकांत चाकड़े जी। श्रीकांत जी क्या है आपका प्रश्न, कहिए।
4: हेलो
0: जी। जी
4: नमस्कार।
0: नमस्कार श्रीकांत
4: जी, जाकर बोल रहा हूँ मैं पुणे महाराष्ट्र से। तो मेरा सवाल ये है कि मेरा नेत्र का ऑपरेशन हुआ है रेटिना का, तो उसमें मेरी जो ज्योति चली गई है आंखों की, तो इसी केस में कोई यदि डोनर मिलता है तो उससे कोई फायदा हो सकता है क्या? आई डोनेट करने वाला जो है
0: जी। आपके प्रश्न का उत्तर देंगे डॉक्टर राजेश जी। जी
2: जी ऐसा है श्रीकांत जी कि आपका आपकी जो नज़र गई है वो पर्दे की खराबी के कारण गई है, और वो नज़र पुतली के खराबी के कारण नहीं गई है। और जो नेत्रदान होता है उसमें हम पुतली बदलते हैं,

0: और यदि पुतली तभी बदलते हैं जब पीछे का पर्दा अगर हेल्दी है या फिर नस सूखी ना हो, तो क्योंकि आपका पर्दा पर्दे में खराबी है और आपकी नज़र पर्दे की खराबी के कारण गई है, तो नेत्रदान करने से उसका फायदा नहीं होगा, जब बल्कि आपको किसी पर्दे के स्पेशलिस्ट के पास दिखाना चाहिए और वो एक बार फिर से पर्दे का ऑपरेशन करके उसका इलाज करके आपकी नज़र को वापस ला सकते हैं।
1: श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस बराबर खुली हुई हैं। हमारे नंबर हैं 0112331048 और 2371717 तथा 2371710। लेकिन इन नंबरों से पहले भूलिए नहीं 011 अवश्य लगाइए। और व्हाट्सएप नंबर भी हम आपको बता देते हैं अपना 9289094044। और हमारे एक और श्रोता जुड़ रहे हैं हमसे मथुरा उत्तर प्रदेश से, चौधरी महेंद्र सिंह जी। चौधरी साहब बताइए, क्या है आपका सवाल?
2: स्टूडियो में आमंत्रित आदरणीय विशेषज्ञ महोदय नमस्कार।
0: नमस्कार
2: सर, मैं ये जानना चाहता हूँ अगर कोई व्यक्ति अपनी खुशी से नेत्रदान करना चाहे और परिवार भी सहमत हो तो ये इन्फॉर्मेशन दानकर्ता को कहाँ देनी होगी? वो टीम घर आएगी या फिर कोई न कोई उनको खबर देनी होगी? दूसरी बात ये है सर कि मृत्यु के बाद कई घंटे तक वो रोशनी बरकरार बनी रहती है।
0: जी हाँ, एक्चुअली मृत्यु के बाद जल्दी से जल्दी नेत्रदान कर देना चाहिए। जहाँ तक समय का सवाल है, पहले 6 घंटे बड़े कीमती होते हैं, उन 6 घंटों में यदि नेत्रदान कर दिया जाए तो उसका उपयोग बहुत सही तरीके से हो सकता है। और उसके बाद भी अगर मौसम अगर ठंडा हो, अगर सर्दियों का मौसम हो, तो उसमें हम 8-10 घंटे तक भी, या फिर बॉडी को अगर बर्फ़ पर लिटाया हुआ हो, ठंडे वातावरण में रखा गया हो, तो हम आगे भी 8-10 घंटे और 12 घंटे तक भी हम नेत्र को निकाल कर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। और जहाँ तक इनका पहला सवाल था वो
3: कैसे खबर करें?
0: हाँ, पहला सवाल ये था कि आप खबर किस कैसे करेंगे कि यदि मृत्यु हो गई हो तो नियरेस्ट जो भी कलेक्शन सेंटर हो, आप जिस शहर में हैं उस शहर का जो कलेक्शन सेंटर है, जो भी कोई आई बैंक है वहाँ पर, तो आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर डॉक्टर साहब ने जैसा नोटो का नंबर बताया था, वहाँ कर सकते हैं। और एक नेशनल आई बैंक का नंबर है 9999168374। तो दिल्ली NCR में यदि किसी की मृत्यु हुई हो तो ये नेशनल आई बैंक के इस नंबर पे भी फ़ोन कर सकते हैं, जो कि 24 घंटे खुला रहता है, और उससे आप जानकारी दे सकते हैं और नेत्रदान कर सकते हैं।
1: श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आज का विषय है अंगदान, भ्रांतियों का निवारण और जीवन रक्षा। और हमारे साथ एक और श्रोता ठाणे महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, गुरुनाथ। गुरुनाथ जी कहिए, क्या है आपका सवाल?
4: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार
4: सर, मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे ये अंगदान का जो ये प्रोसीजर के बारे में पूछना था, जैसे कोई एक आदमी कोई मतलब मरने से पहले जो मतलब अंगदान का जो संकल्प पत्र कुछ लिख के देता है कि मेरे मरणोपरांत मुझे ये अंगदान करना है, तो इसके बाद जो रिलेटिव का जो रोल होता है, अगर वो इसमें क्या मतलब नियम है कि रिलेटिव अगर उस टाइम भी अगर चाहेंगे कि नहीं देना है, बॉडी नहीं देनी है अंगदान के लिए, तो ये पूछना था कि रिलेटिव का इसमें क्या रोल होता है? थैंक यू।
3: देखिए, रिलेटिव का रोल हमने पहले भी बताया, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप संकल्प पत्र भरने के बाद भी जो डिजिटल प्लेज आप ले लेते हैं, आप उसमें भी 2 नंबर हम लोग पूछते हैं रिश्तेदारों के, उनके नंबर भी भरवाते हैं कि आपके क्लोज रिलेटिव, तो आप उनको बताएं जरूर कि आपने ये संकल्प पत्र लिया है और आप चाहते हैं कि आप मृत्यु के बाद आपके अंगदान हो। तो वो रिलेटिव को अगर आप सबको बता के रखेंगे, डिस्कस करेंगे, और उनके कोई अगर डाउट है तो उसको पहले से ही उनको दूर करेंगे, तो ऐसा

0: आमतौर पे नहीं होता कि रिलेटिव ऑब्जेक्शन करें, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन ज्यादातर में अगर आपने इच्छा जाहिर की है तो हम लोग सभी एक फर्ज समझते हैं कि हमारी एक फर्ज है कि हम आपकी उस इच्छा को पूर्ण करवाएं। ये भी परिवार के लोगों का भी यही भावना रहती है। तो आप बताएं जरूर, ऐसा ना हो कि किसी को पता ही ना हो कि आपने प्लेज ली थी। और आपका, जैसे मैंने पहले भी राष्ट्रीय हेल्पलाइन का नंबर बताया, मैं फिर बता देता हूं, 1-800-11-4770, 2400 घंटे नंबर खुला है। आप उस पर कॉल करके कोई भी जानकारी मृत्यु की भी दे सकते हैं और वो टीम आपको फैसिलिटेट करेंगे। जी
1: जी, हमारे एक और श्रोता दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मोहम्मद कासिम, या जिस तरह से शायद ही लिखा है, मोहम्मद कासिम जी, कहिए क्या प्रश्न है आपका।
2: जी नमस्कार।
1: जी जी नमस्कार।
2: मेरा सवाल, दो सवाल है। पहला सवाल यह है कि एक बार हमें अगर दान की मदद से अंग लगे हों तो क्या हम वो अंग डोनेट कर सकते हैं? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि जो अबाउट क्रिप्टोफॉल्मस की बीमारी है, क्या इसमें आई डोनेशन की जा सकती है?
1: जी,
3: जहां तक आपने कहा क्रिप्टोफॉल्मस की बीमारी है, तो उसमें ये कहना बहुत मुश्किल है कि आँख के अंदर की स्ट्रक्चर इंटैक्ट है या नहीं है और सही है या नहीं है। तो यदि किसी को ऐसा है तो उसके नेत्रदान करने से शायद बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना हो सके, क्योंकि कई बार क्रिप्टोफॉल्मस में पुतली भी ख़राब रहती है और उस पुतली का डोनेट करने का फ़ायदा नहीं होता है।
1: जी शुक्रिया डॉक्टर राजेश। और हमारे एक और श्रोता मध्य प्रदेश के छतरपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रशीद अहमद खान जी।
4: नमस्ते सर।
1: नमस्कार। नमस्कार।
4: सभी देशवासियों को आगामी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं सर।
3: आपको भी।
1: आपको भी
4: जी। मतलब दो छोटे छोटे सवाल, एक तो बॉडी में सर सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है, एक बात। दूसरी बात ये कि क्या लिवर, तो शायद अपन लोग जीते जी कुछ पार्ट उसका डोनेट कर देते हैं, तो कितना परसेंट डोनेट कर सकते हैं पर, प्लीज बता दीजिए।
1: जी हमारा जो देखिए आज का विषय है उससे ताल्लुक तो आपका दूसरा सवाल रखता है, लेकिन फिर भी दोनों ही सवाल आपके महत्वपूर्ण हैं और डॉक्टर साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आपकी इस शंका का समाधान करें। डॉक्टर अनिल
0: जी, जी वैसे देखा जाए तो जो सॉलिड ऑर्गन है उसमें लिवर को ही सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है। वैसे जो स्किन है, टिश्यू जो पूरे बॉडी को कवर करता है, वो भी एक बहुत बड़ा मतलब टिश्यू के रूप में आता है। और लिवर का कितना हिस्सा दान किया जाता है ये डिपेंड करता है कि जो लेने वाला, जिसको लगना है, अगर वो कोई बड़ी शरीर वाला व्यक्ति है जिसको हाई बड़े वॉल्यूम की ज़रूरत है, तो लिवर का आमतौर पे एक पार्ट दिया जाता है। एक दो लोब होते हैं लिवर में, राइट लोब और लेफ्ट लोब। तो एक लोब आमतौर पे दिया जाता है, या तो राइट साइड का या लेफ्ट साइड का। तो लेफ्ट राइट का बड़ा होता है और लेफ्ट का छोटा होता है। तो लेफ्ट होता है आमतौर पे 30-40% और राइट होता है 50-70% तक। तो अगर जिसको बड़े वॉल्यूम की ज़रूरत है मरीज को, तो उसको राइट लोब लगा दिया जाता है, और जिसको छोटे वॉल्यूम से भी काम चल जाएगा, लीन एंड थिन कम वेट का रेसिपिएंट है, पेशेंट लेने वाला है, तो उसको लेफ्ट लोब लगा दिया जाता है। तो आमतौर पे एक लोब लगता है, या तो राइट या लेफ्ट लोब।
1: जी और हमारे जो श्रोता हमसे अभी जुड़े हैं उनको हम बता दें कि हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9289094044, और आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। और डॉक्टर राजेश, जैसे कि आपसे मैं एक सवाल कर रहा था जो हमारे श्रोता जब हमसे बात करने लगे तो वो शायद बीच में छूट गया, कि कई बार ये शंका जाहिर करते हैं कि लोग अगर इच्छुक होने पर भी क्या वो नेत्रदान कर सकते हैं, अगर उन्होंने कैटरेक्ट की सर्जरी जो है वो करा ली है या ज़्यादा नंबर का चश्मा पहनते हैं तो उनकी इच्छा है, तो क्या वो इस पुण्य कार्य में सहभागी हो सकते हैं?
3: जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। यदि कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है उसके बाद पुतली बिल्कुल ठीक है तो वो बिल्कुल कर सकते हैं।

0: और चाहे चश्मा लगाते हों, कितना भी बड़ा नंबर हो, उससे मतलब नहीं है। पुतली स्वस्थ होनी चाहिए, कॉर्निया हेल्दी होनी चाहिए, और ये सारे लोग जिन्होंने जो भी ये इस तरह का ऑपरेशन कराया हुआ है, यदि उनकी पुतली ठीक है तो वो कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं।
1: जी, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो श्रोता हैं आज हमसे जुड़े और उनकी जो शंकाएं हैं उनका समाधान वो हुआ, लेकिन फिर भी एक बहुत अहम सवाल दिल में ये आता है कि इतना जो पुण्य कार्य करते हैं लोग जो अंगदान का, क्या उनके प्रोत्साहन के लिए भी डॉक्टर अनिल किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है?
2: भारत सरकार के जो कार्यक्रम, एक राष्ट्रीय अंग कार्यक्रम, अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हम लोग उनके एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए भारत सरकार की तरफ से एक राशि दी जाती है। और आजकल और उनको एक ये प्रावधान है कि उनकी बॉडी को बहुत रेस्पेक्टफुली हम लोग हैंडओवर करें, और उसमें उनके हैंडओवर करने के लिए हम लोग उसको एक शॉल या एक बुके ऑफ फ्लावर या एक सर्टिफिकेट भी दे जाता है उनको अंगदान की इस नेक मुहिम के लिए आगे।
1: धन्यवाद डॉक्टर अनिल। और दोस्तों, वक्त हो रहा है कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का। हम अपने श्रोताओं के आभारी हैं जिन्होंने फोन लाइंस और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हमारे साथ थे राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा। स्टूडियो में आने के लिए, श्रोताओं के प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा दीजिए मुझे
2: धन्यवाद
1: शर्मा को। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे।
1: माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी,
2: क्वेश्चन नंबर 226, डॉक्टर के लक्ष्मण गौरव।
3: प्रश्न संख्या 226, क्या विद्युत मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क विद्युत संशोधन नियम 2026 तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के प्रारूप के अंतर्गत प्रस्तावित प्रमुख उद्देश्य तथा प्रमुख सुधार क्या हैं? ख इन सुधारों से विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता में सुधार, परिचालन दक्षता में वृद्धि तथा उपभोक्ताओं को विश्वसनीय एवं 2400 घंटे बिजली आपूर्ति किस प्रकार सुनिश्चित होने की संभावना है? और ग इन सुधारों को अंतिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों से परामर्श करने तथा देश भर में इनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?
2: फर्स्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर के लक्ष्मण गौरव।
4: सर, अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ अवर बिलोड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इंडियाज पावर सेक्टर हैज अंडरगॉन हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन विद ए स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन एंश्योरिंग अफोर्डेबल, रिलायबल एंड सस्टेन इलेक्ट्रिसिटी फॉर एवरी ईयर। एंड ड्यू टू मोदी जी गवर्नमेंट्स पॉलिसीज, स्टेट्स लाइक तेलंगाना हैज विटनेस्ड रैपिड ग्रोथ इन इंडस्ट्रीज, data centers, urban infrastructure leading to increasing electricity demands, which has significant potential for solar energy, including decentralized and agricultural solarization. So through you, I request the Honorable Minister to explain how the proposed reforms will encourage greater adoption of distributed renewable energy, battery energy storage, and smart distribution system in states like Telangana, while ensuring the financial sustainability of discoms. Thank you, sir.
3: Shri Manohar Lal, Vidyut Mantri.
5: Sabhapati Mahoday, National Electricity Policy 2026, isko tayar karne mein distributed renewable energy, battery energy storage aur smart distribution system ko badhava dene ke liye distribution utilities ki financial sustainability mazboot karne ke liye kai pradhan shamil kiye gaye hain, और जो प्रावधान बनाए गए हैं वो सारे देश भर के लिए लागू होंगे और तेलंगाना में भी उसी प्रकार से उनको लागू किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी तीव्रता से लाने के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी स्टोरेज के साथ

पहले रूफटॉप सोलर, उसके बाद पीयर टू पीयर एनर्जी ट्रेडिंग, इस प्रकार के प्रावधान, रिन्यूएबल एनर्जी को ओपन एक्सेस, इसमें भी सेल्फ सेल करने का प्रावधान रखा गया है। को लोकेटेड स्टोरेज, अर्थात जहां जनरेशन होगी उसके निकट ही स्टोरेज के प्रावधान, चाहे बैटरी स्टोरेज के हो अथवा पंप स्टोरेज के हो, उनको रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा गया है। और इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज, एग्रीगेटर को बेहतर रिन्यूएबल एनर्जी का फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी हमेशा एनवायरमेंट के ऊपर निर्भर करता है और एनवायरमेंट की फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग एक बहुत इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसलिए ये पॉलिसी अपने सभी आयामों को ध्यान में रखकर के बनाई गई है और इस पॉलिसी में नए प्रकार की टेक्नोलॉजी जैसे फ्लोटिंग सोलर, एग्री फोटोवोल्टिक सॉल्यूशन और रिन्यूएबल एनर्जी के ट्रांसमिशन ऑप्टिमाइज डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करता है। अर्थात सोलर एनर्जी को अधिक से अधिक उपयोग हम कैसे कर सके, इसका भी इसमें प्रावधान रखा गया है। वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी को मैनेज करने, ग्रिड स्टेबिलिटी, क्योंकि ग्रिड स्टेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट इसमें आता है, क्योंकि ये डे टाइम में ही, यानी सोलर एनर्जी डे टाइम में ही मिलेगा और ग्रिड की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए हमको उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है। उसको सुधारने के लिए, पीक डेफिसिट को कम करने के लिए बैटरी स्टोरेज सिस्टम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बैटरी स्टोरेज सिस्टम, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, इनको लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज टेक्नोलॉजी, बैटरी कंपोनेंट को भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अब से पहले बैटरी के कंपोनेंट ये सभी इंपोर्ट करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब क्योंकि हमें अपने मेक इन इंडिया के आधार पर और सभी प्रोडक्ट को हम जो डोमेस्टिक मार्केट बेस प्रोत्साहन मैकेनिज्म को इसको बढ़ावा दे रहे हैं। धन्यवाद। स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये ड्राफ्ट जो पॉलिसी बनाई गई है, जिसको सर्कुलेट किया गया था और सभी जो भी इसमें स्टेक होल्डर थे सबका कंसल्टेशन कर लिया गया है, ये फाइनलाइज करने के राह पर है। और इसके अंदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिप्लॉयमेंट, इसके बारे में पूछा गया, डिस्ट्रीब्यूटर एनर्जी रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑपरेटर या डीएसओ फ्रेमवर्क ये भी बनाया गया है। डिमांड साइड मैनेजमेंट, क्योंकि डिमांड साइड मैनेजमेंट और सप्लाई साइड मैनेजमेंट दोनों का ध्यान रखेंगे तभी हम रेगुलर पावर की सप्लाई हम कर पाएंगे। और ऐसे ही डिमांड का रिस्पॉन्स क्या है स्मार्ट ईवी चार्जिंग, क्योंकि आगे आगे अब हमारी जो डिमांड है, चाहे डाटा सेंटर्स हो अथवा ईवी चार्जिंग हो, एआई का जो इस्तेमाल हो, इससे एनर्जी की डिमांड ये हमारी बढ़ने वाली है। इसलिए जीआईएस बेस्ड एसेट मैपिंग और डिजिटल ट्विन, इसी प्रकार टाइम ऑफ यूज टैरिफ, यानी टाइम ऑफ यूज में जिस समय हमारे पास सोलर पावर ज्यादा है उस समय उसका यूज ज्यादा बढ़े, जब हमारे पास पावर की कमी है उस समय डिमांड इसकी शिफ्ट की जाए, तो टाइम ऑफ यूज टैरिफ को भी इसका प्रोत्साहन देने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ताकि नई टेक्नोलॉजी का भी इसमें उपयोग किया जा सके। मान्यवर, डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी, क्योंकि आज पावर डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा अगर कोई कठिन बात है वो डिस्कॉम्स की फाइनेंशियल वायबिलिटी, ये कंसर्न है। सभी डिस्कॉम्स ये लगभग घाटे में जा रहे हैं और टोटल देश भर के डिस्कॉम्स का जो घाटा है इस समय लगभग 6,85,000 करोड़ रुपया हो गया है। इसको कैसे कम किया जाए, क्योंकि लंबे समय तक डिस्कॉम्स घाटे में चलेंगे तो फिर वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। इसलिए मल्टी ईयर टैरिफ फ्रेमवर्क ये जो होता है उसके तहत टाइमली कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ ये कैसे बनाया जाए, इसमें इसका यानी हमें उपयोग करना है। पावर परचेज कॉस्ट और ऑटोमेटिक पास थ्रू, जितनी कॉस्ट आएगी उसको पास थ्रू कैसे करेंगे, ये अभी तक ऑटोमेटिक नहीं था, इसको समझौते के तहत किया जाता था, लेकिन ऑटोमेटिक टैरिफ के अंदर उसका जो है कैसे पास थ्रू हो। हमारे एपीएमसी लॉसेज एक समय था 2014 में जब 30% से भी ऊपर था, अभी देश भर का जो एपीएमसी लॉसेज है वो लगभग 15% है, काफी कम आया है, लेकिन इसको और भी हमको इसको कम करना है, वो भी इस पॉलिसी के अंदर दर्शाया गया है। कैसे लॉस रिडक्शन हो, कैसे हमारा परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कोई प्लांट परफॉर्मेंस अच्छा करता है

उसको कैसे इंसेंटिव दिया जाए, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार गवर्नेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट, ये कैसे कम हो, क्योंकि कॉस्ट को कम करने के लिए कई तरीके होंगे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट, ये कैसे कम हो। ये पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट और सब्सिडी बर्डन इसका कम करने के लिए स्टोरेज के साथ साथ एग्रीकल्चर फीडर के संरक्षण को भी प्रभावित करती है। तो हमने तीन प्रकार के और प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा बीमा योजना ने पीएम कुसुम की तीन योजनाएं बनाई गई हैं। पहली योजना उसके अंदर जिसको कंपोनेंट ए कहेंगे, वो 2 मेगावाट तक ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर सिस्टम इसके ऊपर डाला जाएगा, और चाहे वो कोई भी जमीन हो, कल्टीवेटर हो अथवा बैरन हो, इसमें पावर को बना सकते हैं, पावर को ग्रिड से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी को दे नहीं सकते हैं। एक योजना उसमें कंपोनेंट बी है, जिसके अंदर हम ऑफ ग्रिड इस प्रकार के कनेक्शन देते हैं, ना पावर ली जा सकती ना दी जा सकती है, केवल किसान अपने उपयोग के लिए उस सोलर पावर का उपयोग कर सकते हैं।

0: संचालन हो, इसमें पावर को बना सकते हैं, पावर को ग्रिड से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी को दे नहीं सकते हैं। एक योजना उसमें कंपोनेंट बी है, जिसके अंदर हम ऑफ ग्रिड इस प्रकार के कनेक्शन देते हैं, ना पावर ली जा सकती ना दी जा सकती है, केवल किसान अपने उपयोग के लिए उस सोलर पावर का उपयोग कर सकता है। और कंपोनेंट सी, इसमें एक्स्ट्रा पावर यदि बनती है तो ग्रिड में डाल करके किसान जो अपनी इनकम भी कर सकता है, अगर किसान को अपनी फसल के इनकम के साथ साथ ऊर्जा दाता बन करके और ऊर्जा की इनकम अपने साथ जोड़नी है तो किसान को एक बहुत बड़ा लाभ इसमें होने वाला है। तो मान्यवर, ऐसे ही जो हमारे डाटा सेंटर्स हैं वो लगातार इसमें बढ़ रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी के नाते से स्मार्ट मीटर का प्रावधान इसमें किया गया है, और स्मार्ट मीटर में भी ऑप्शनली ये भी कहा कि पोस्ट पेड किस प्रकार से लागू किया जाए, तो पोस्ट पेड के हिसाब से भी हमने सबसे पहले गवर्नमेंट मीटर और उनको लागू किया है तो वो पोस्ट पेड पर आए, बाकी सबको ऐच्छिक रखा गया है। कोई आएगा तो अच्छा है, स्टेट्स इसके लिए इंसेंटिव की स्कीम बना रहे हैं। इसी प्रकार से तेलंगाना का जहां तक पूछा है, तेलंगाना पीएम कुसुम के टोटल 1797 मेगावाट में से 84 मेगावाट अभी उन्होंने कंपोनेंट ए में उपयोग किया है। तो ये तेलंगाना के नाते से इस प्रश्न का जैसे मैंने उत्तर दिया, इसको स्टेक होल्डर इनपुट पर ध्यान करके ड्यू कंसल्टेशन के बाद फाइनल पॉलिसी नोटिफाई की जाएगी।
1: नाउ द सेकेंड सप्लीमेंट्री सतरंग सिंह सांडू जी,
2: बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पंजाब में एफिशिएंट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए 9,600 करोड़ रुपए का आपने सैंक्शन किया। पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इलेक्ट्रिसिटी हमारे किसान की खेती के लिए बैकबोन है चेयरपर्सन साहब, और हाईली डिपेंडेंसी हमारी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। 14 लाख ट्यूबवेल से किसान खेती के लिए पानी निकालता है, और मैं किसान का बेटा हूं, मैंने देखा कि खेतों में जो खंभे लगे हैं बिजली के वो हमारे लिए बाधा बन रहे हैं। मैं मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा, सवाल भी पूछना चाहूंगा कि खेतों में से खंभे हटाकर अंडरग्राउंड केबल डालने के लिए अभियान चल रहा है, वो कब तक पूरा हो जाएगा, और पंजाब सरकार को कितनी सहायता दी जा रही है केंद्र की ओर से, मेरा ये सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सभापति महोदय, ये विषय चूंकि पंजाब के आंकड़ों से जुड़ा हुआ है, वैसे तो सारी योजनाएं जो भी बनाती है प्रदेश सरकारें बनाती हैं और अपने दायरे को रखकर के ध्यान में रखकर के बनाती हैं। पंजाब की जो फाइनेंशियल वायबिलिटी डिस्कॉम की, जैसा मैंने पहले कहा, ये बहुत ही अच्छी नहीं है, तो पंजाब की डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी को देख करके ही उनको ऋण मिलता है। ये ठीक है कि पंजाब के मुख्यमंत्री स्वयं मुझे मिलने आए थे, उनको ऋण की आवश्यकता आरईसी से पीएफसी से थी, लेकिन आरईसी पीएफसी एक ऑटोनोमस बॉडी है, उनको उसकी वायबिलिटी अपने आप देखनी है कि कौन सा लोन हमको देना कौन सा नहीं देना है। हाँ, जहां तक पावर किंग की डिमांड है, इस डिमांड को भी समय समय पर पूरा करते हैं, जब भी ये मांगते हैं तो करते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं हमारे कहने के अनुसार भी पंजाब के डिस्कॉम्स या पंजाब की सरकार उसको आगे नहीं बढ़ती है। आगे न बढ़ने के कारण से, स्टेलमेंट के कारण से चीजें सहानुभूतिपूर्वक सोची नहीं जा सकती। उसका कारण है कि बाजार में बिजली मिलती है, अगर खरीदनी है तो बाजार से खरीदी जा सकती है, लेकिन बाजार से खरीदने के लिए पंजाब के पास पैसा नहीं है। और पंजाब ने विशेष तौर पिछले साल का जो एक हमारा प्रयोग करने का ऑर्डर होता है उसमें एक एम्बिग्विटी पाई गई, उस एम्बिग्विटी के कारण से उनका केस एप्पल में चला गया। एप्पल ने अभी निर्णय देना है, जैसे ही ये एप्पल का 18 अगस्त को डेट लगी है, उस प्रकार से जैसा निर्णय आएगा, इनकी फाइनेंशियल ठीक होंगे तो इनको पूरी सहायता की जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
1: श्रीमान विजय चंदाकालिया जी, श्रीमान विजय चंदाकालिया जी,
3: धन्यवाद चेयरमैन जी। सर, पूर्णिमा का ग्रीन हाइड्रोजन हब इन अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट, सर दिस इज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब इनॉग्रेटेड बाय अवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। First in my bloodline, I'm witnessing this green hydrogen plant in our own district. So the project envisages an investment of approximately 1.85 lakh crore, including 20 gigawatt of renewable energy capacity, and is planned to produce 1500 TDP of green hydrogen and 7500 TDP of green hydrogen derivatives. So my question here is, I want to ask the honorable

0: Minister, if the government is considering measures to ensure time-bound coordination between NTPC, the Central Transmission Utility and other concerned central agencies for the required transmission and grid connectivity, so that adequate power infrastructure is in place ahead of commissioning and does not constrain the hub's planned capacity or future expansion, sir.
1: Honourable Minister.
2: सभापति महोदय, वैसे तो जो उन्होंने प्रारंभ किया कौन से प्रोजेक्ट के लिए पूछ रहा है ऐसा मुझे ध्यान में नहीं आया है, लेकिन फिर भी इन जनरल जो उन्होंने विषय उठाया कि ट्रांसमिशन की जो कठिनाई है, जो दिक्कत है, मैं मानता हूं बहुत से एरियाज में अलग अलग कारणों से ट्रांसमिशन लाइन्स की दिक्कतें आती हैं। ट्रांसमिशन लाइन चूंकि बहुत से मल्टी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, जनता का विरोध भी होता है, किसानों का विरोध भी होता है, एनवायरमेंटल इश्यूज भी होते हैं, उन सबको सुधार करने के बाद हम आरओडब्ल्यू का जो एक फैक्टर विशेष तौर पर रहता है उसके लिए नई गाइडलाइंस तय की हैं। और नई गाइडलाइन मुझे खुशी है इस बात की कि कुल मिलाकर 17-18 स्टेट्स ने नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया है, और नई गाइडलाइन जारी करने के बाद किसानों का कंपनसेशन पर्याप्त मात्रा में मिलने लग गया उनको, और वहां की लाइनें चालू हो गई हैं। लेकिन जहां कहीं ट्रांसमिशन लाइन भी नहीं बनेगी वहां इवैक्यूएशन करने में जनरेशन होने के बाद भी कठिनाई आएगी, इसलिए जहां कहीं भी विषय कर रहे हैं वो प्रश्नों के अलग से स्थान के बारे में कोई बताया गया तो जैसा अलग प्रश्न रखेंगे उसका उत्तर दे देंगे।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री, श्रीमान प्रोफेसर मनोज कुमार झा। सो श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी,
3: मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं पहली बार इस सदन में मुझे बोलने का मौका मिला है, आपके माध्यम से मैं विद्युत मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ जहाँ नया उद्योग धंधे खुल रहे हैं और लगातार विद्युत की आवश्यकता बढ़ रही है, तो क्या इस संबंध में दृष्टिगत रखते हुए जो बलौदा बाजार जिला है छत्तीसगढ़ का, वह सीमेंट उद्योगों का हब है और वहाँ लगातार ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, तो क्या नवीन प्लांट ऊर्जा से संबंधित वहाँ लगाने की कोई योजना है, या अन्य जिलों में छत्तीसगढ़ में कोई नई ऊर्जा से संबंधित हमारे ऊर्जा प्लांट लगाने की कोई योजना है? मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सदन को जो मुझे यहाँ आप सबके बीच में पहली बार आज बात रखने का मौका मिला है, सादर प्रणाम।
1: आदरणीय मिनिस्टर,
2: आदरणीय सभापति जी, वैसे देश भर में इस समय पावर की कहीं भी शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि हमने इस बार हाईएस्ट पीक डिमांड पावर की 270.8 गीगावाट एवर हाईएस्ट इसको हमने आपूर्ति की है, और आज भी हमारी तैयारी है कि 284 गीगावाट की हमारे पास कैपेसिटी है, अगर और भी आवश्यकता पड़ेगी उसको हम पूरा करेंगे। अगले वर्ष भी 300 से ऊपर गीगावाट की हमने योजना बना ली है, इसलिए पावर देश भर में अब सरप्लस कहना कहें लेकिन पावर सफिशिएंट हम अपने देश के अंदर हैं। इसी प्रकार से अब हर प्रदेश में अपनी योजनाओं स्वयं बनाते हैं, किसी प्रदेश में कोई कमी नहीं रहती है। हाँ, यदि उनको पावर कहीं अपने रीजन के अंदर पावर नहीं मिलती है तो ट्रांसमिशन के कारण से पावर अगर नहीं पहुंचती तो अलग बात है, अन्यथा पावर काज ओपन मार्केट में भी उपलब्ध है, और ओपन मार्केट में जितनी उपलब्ध होती है उतनी खरीद भी आती नहीं है, इसलिए छत्तीसगढ़ का जहां तक विषय है कहीं पावर की कोई भी हमारे पास हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में अगर कोई डिले हो रहा है तो ये स्थानीय विषय कोई हो सकता है, अगर अलग से उसका प्रश्न आएगा तो उसका हम जवाब देंगे।
1: हाउस विल मीट अगेन एट 2 PM।
4: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज़ ऑन AIR ऐप एवं DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं।

0: हेलो, आकाशवाणी सुनने वाले तमाम श्रोताओं का स्वागत है आज इस ताजे अंक में। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त सागर, और आप फोन कॉल के माध्यम से अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9430029353, 9430029353। तो आप अपनी फरमाइश हम तक जरूर पहुंचाएं। रेडियो सेट पर आपकी फरमाइश पूरी करने के लिए हम हाजिर हो चुके हैं। पहला कॉल हमारे एक श्रोता का आ चुका है, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो
0: जी। हेलो आकाशवाणी, कौन बात कर रहे हैं?
1: वादा हमने भी किया था किसी से निभाने के लिए।
0: क्या बात है?
1: वादा हमने भी किया था किसी से निभाने के लिए, और एक दिन दिया था एक दिन को पाने के लिए।
0: क्या बात
1: एक
0: है?
1: एक दिन दिया था एक दिन को पाने के लिए। उन्होंने मोहब्बत भी सिखा दी, और कहा कि तुमसे प्यार किया था किसी और को जलाने के लिए।
0: क्या बात है, क्या बात है, बड़े टूटे हुए दिल की शायरी। हेलो
1: जी सर। जी सर,
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: भाजन मोहल्ला थाना टीन अंगुरवाली मस्जिद रामपुर यूपी उत्तर प्रदेश से आपका छोटा भाई मोहम्मद आदिल खान बात कर रहा हूँ। सर
0: आदिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी में, और बताइए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर। और कैसे हैं सर आप?
0: मैं तो बिल्कुल अच्छा हूँ, आप अपने हाल चाल बताइए।
1: बस सर, आप लोगों की दुआएं बहुत अच्छे हैं, बस अल्लाह का करम है। आप लोग कार्यक्रम सुनते हैं, आप लोग केंद्र से जुड़े हुए हैं, आप केंद्र से जुड़े हुए ही कम से कम 7-8 साल हो चुके हैं, और इतना अच्छा लगता है जब आप लोगों से बातचीत हो जाती है, मन सफल हो जाती है आपसे बात करके, और बहुत अच्छा लगता है लोगों के सुझाव सुनकर, उनकी पसंदीदा गीत सुनकर, उनके अनुभव सुनकर बहुत अच्छा लगता है सर।
0: हमें भी बहुत खुशी होती है जब आप फोन कॉल करते हैं, रेडियो की शान श्रोताओं से है, हम बस माध्यम हैं आपकी चीजों को पूरा करने के लिए। आदिल जी, मौसम का क्या मिजाज है आपकी ओर?
1: सर देखिए, मौसम का तो मिजाज इस तरह से है कि बारिश जो है आज पड़ी थी, तो बाकी सर गर्मी जो है वो पड़ी रही है, और बाकी जो सावन लगा हुआ है सर देखिए, और इस समय कांवड़ यात्रा चल रही है, और अच्छा है देखिए इस पर हर चीज की जो है कोई त्योहार है या कुछ भी है, तो हमें तो हर सबकी खुशी में शामिल होना बहुत अच्छा लगता है।
0: बहुत खुशी हुई आपसे बात करते हुए, और अब बता दीजिए कि आप कौन सा गाना सुनना चाह रहे हैं और श्रोताओं को सुनवाना चाह रहे हैं?
1: देखिए सर, एक मूवी है गीत,
0: जी
1: रविंद्र कुमार जी है, इसमें रविंद्र कुमार है, बहुत प्यारा गीत है, महेंद्र कपूर साहब की आवाज में, कि जिससे सपने हमें रोज आते रहे।
0: बिल्कुल,
1: गाना बहुत ही अच्छा है, उम्मीद है सभी श्रोताओं को बहुत पसंद आएगा।
0: बिल्कुल, हसरत जयपुरी साहब ने लिखा है और कल्याण जी आनंद जी ने संगीत दिया है, महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज। तो आदिल जी, बिना किसी देर के आपके पसंद का गाना हम भेज रहे हैं आप तक। आपने हमें कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: जिस

0: जुड़ चुके हमारे साथ एक श्रोता, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार भैया।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: हम बोल रहे हैं कादिर अली, नाहर मंडला जिला मधुबनी बिहार से बात कर रहा हूँ।
0: कादिर अली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके प्रिय कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी में।
1: जी जी, आपका भी स्वागत है सर।
0: बहुत आभार। कहिए, कैसे हैं आप?
1: हम तो अच्छे हैं, तो अपना बताइए।
0: बहुत अच्छे हैं, आप सबकी दुआ है, ऊपर वाले की मेहरबानी है। और कादिर अली जी, क्या कुछ चल रहा है आजकल?
1: घर में बैठे हुए हैं सर, काम चल रहा है सर।
0: काम चल रहा है घर में ही?
1: जी जी जी, खेती वाली खेती का काम करते हैं सर।
0: बस सबसे जरूरी काम है सर, दुनिया की सारी चीजें जो है इस पेट के इर्द गिर्द घूमती हैं, और अगर अनाज ना हो तो फिर क्या ही हम कर सकते हैं। सबसे जरूरी काम तो यही है। देश के किसानों को हम सलाम करते हैं आपके माध्यम से, जो खेती बाड़ी करके इस देश के लिए अन्न उपजाते हैं। और बताइए कादिर अली जी, किस गाने की फरमाइश है? बिल्कुल, आपकी फरमाइश पूरी कर देते हैं, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का मधुर संगीत है ना।
1: जी जी।
0: तो कादिर अली जी, बिना देर के आपकी पसंद का गाना आपके लिए। आपने हमें फोन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी जी। नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी जी, नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: केजरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ सर, जिला भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: भोपाल मध्य प्रदेश से केसरी जी बात कर रहे हैं। केसरी जी, बहुत स्वागत है आपका।
1: जी धन्यवाद सर, थैंक यू।
0: और बताइए केसरी जी, क्या सब कर रहे हैं भोपाल में आजकल?
1: हाँ सर, ये भोपाल से 40 किलोमीटर दूर है बेरसिया, वहाँ पर रहते हैं। बस बढ़िया सर, बारिश हो रही है और बारिश का आनंद ले रहा है अभी तो सर फिलहाल में।
0: आप बहुत किस्मत वाले हैं कि बारिश का आनंद ले पा रहे हैं। यहाँ तो बादल जैसे रूठे हुए हैं, थोड़ी बहुत बूंदें होती हैं और फिर बादल उड़ जाया करते हैं।
1: अच्छा
0: जी, और बताइए आज किस गाने के
1: सर? वहाँ भी होगी सर बारिश, थोड़ा बहुत इंतजार है, बस करते हैं भगवान से प्रार्थना करेंगे वहाँ भी बारिश हो।
0: बस बस आपकी दुआ कबूल हो, हम भी यही चाहते हैं, किसान भाई भी यही चाहते हैं कि बारिश हो और आप भोपाल से थोड़े से बादल हम तक भेजिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, हम तो क्या भेजेंगे, ईश्वर भेजेंगे सर।
0: बिल्कुल, आपकी दुआ रही और आपकी बात सुने ईश्वर, हम भी यही कामना करते हैं। और बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज?
1: आज आप सर सुनवाइए, 15 अगस्त आने वाला है तो अपने देश के सभी वीर जवानों के लिए डेडिकेट रहेगा
0: जी।
1: वतन के हवाले मूवी से गाना है कि इस धरती के अंग अंग पर रंग शहीदों ने डाले और इस धरती को दाग लगे ना देख वतन के रखवाले, वतन के रखवाले।
0: क्या बात है, मुझे लगता है रेडियो सेट पे मैं गाना बजाऊं इससे बेहतर था कि आप ही सुना देते ये गाना। बहुत बेहतर, बहुत खूबसूरत। केसरी जी, आपके इस गाने की फरमाइश के माध्यम से हम भी देश के सभी वीर जवान सेवा करने वालों के लिए आभार प्रकट करते हैं, नमन प्रकट करते हैं और आपको स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई देते हुए आपके पसंद का गाना आप तक पहुंचाते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, और फरमाइश है कि सभी मेंबर्स सुन रहे हैं और आपका प्रोग्राम बाकी सभी श्रोताओं के लिए रहेगा।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं हेलो आकाशवाणी। आप भी अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाइए हमारे नंबर 9430029353 पर।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: सर मैं उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद टाउन दूल्हापुर से मुकेश कश्यप बात कर रहा हूँ सर आपसे।
0: मुकेश कश्यप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके प्रिय कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी में।
1: जी बिल्कुल, शुक्रिया सर। और आपका प्रोग्राम सर मोबाइल ऐप के जरिए सुने, बड़ा अच्छा लग रहा है प्रोग्राम।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये सुविधाएं हमें मौजूद हैं कि हम अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, डीटीएच के माध्यम से भी कार्यक्रमों को सुन सकें और स्टेशन से काफ़ी दूर रहने के बावजूद भी उन्हें सुन सकें, देश में विदेश में। बहुत शुक्रिया हमारे केंद्र से जुड़े रहने के लिए इतनी दूर जाने के बावजूद। और बताइए मुकेश जी, आप क्या करते हैं?
1: सर जी, हम जो हमारा काम सर खेतीबाड़ी का है और मैं सर इलेक्ट्रॉनिक कार्य भी चलाता हूँ सर।
0: वह बहुत बड़ी बात है, खेतीबाड़ी के काम में लगे हुए हैं। इससे पहले भी कादर जी कहा खेतीबाड़ी में लगे हुए हैं। बताइए मौसम साथ कितना दे रहा है इस बार?
1: मौसम तो सर बारिश तो हो रही है अच्छी, वैसे हमारे धान को फायदा भी है, ऐसी बात नहीं है। गर्मी बहुत है इस बार सर।
0: गर्मी इस बार बहुत ज्यादा है, उसके कारण भी तो हम ही लोग हैं, हम लोगों ने ही
1: उसके कारण हम ही लोग हैं।
0: बिल्कुल,
1: तेल लगाने रहे, काट जाते रहे,
0: काट ज्यादा रहे हैं हम लोग आपके माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल, आपके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहेंगे कि अगर चाहते हैं कि गर्मी से निजात पाएं तो कृपया पेड़ लगाएं,
1: पेड़ लगाएं ना कटें।
0: जी बिल्कुल। मुकेश जी, अब बता दीजिए अपनी फरमाइश।
1: सर

0: बाबा जिगरी दोस्त
1: जी,
0: मेरे देश में तबाने चले परवाए।
1: बिल्कुल, आपकी फरमाइश का गाना हम तुरंत आप तक पहुंचाते हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, आनंद बख्शी के लिए इस गीत को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गाना। नमस्ते।

0: हम सारे हैं भारतवासी, सब हैं भाई भाई मेरे देश में, हो मेरे देश में पवन चले।
1: हेलो आकाशवाणी।
2: हेलो
1: जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
2: आपको भी सारा नमस्कार, जितने भी सुनने वाले सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, अपना नाम बताया जाए।
2: मेरा नाम है शर्मा, हरिद्वार से बात कर रहा हूँ।
1: शाहिद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए कैसे हैं आप?
2: ठीक है, गर्मी से तरह तरह।
1: गर्मी बहुत ज्यादा है ना? जल संकट से हम सब जूझ रहे हैं, हमें बारिश के पानी का इंतजार है, और जब ये पानी आए तो कोशिश करें हम सब मिलकर के इस पानी को हम बचा सकें, कहीं संचयित कर सकें। बिल्कुल
2: जी जी
1: जी जी बिल्कुल, आपकी पसंद का गाना तुरंत आप तक पहुंचा रहे हैं, आपने हमें कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो आकाश भाई, सबसे पहले तो आप अपने रेडियो सेट को थोड़ा सा दूर कर लें
1: दूर कर लिया।
0: जी

0: जी कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं?
1: जी हम चौकी प्रखंड मोहनपुर गांव से, जिला दरभंगा से इंद्र कुमार यहाँ बात कर रहा हूँ।
0: इंद्र कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। रेडियो सेट का साउंड थोड़ा सा कम कर लें, इको कर रहा है इस वजह से। जी बताइए।
1: जी बहुत दिनों से प्रयास कर रहा था, लेकिन संजोग की बात है, बहुत खुशी हो रही है सर। हमें
0: भी
1: आपको भी सर हम तहे दिल से आशीर्वाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं।
0: इंद्र कुमार जी
1: नहीं कैसे लगी
0: है? हमें भी, अरे बिल्कुल लगना था, जिस चीज को आप दिल से चाहेंगे वो प्राप्त होना ही होना है, और आप हृदय से लगा रहे थे हमें फोन। कहिए कार्यक्रम कैसा लगता है आपको?
1: कार्यक्रम को बहुत अच्छा लगता है सर भाई। ये रेडियो जो है वो आज से नहीं, जब 1974 में हम सीएल साइंस में अध्ययन किए थे उसी समय से मैं ये रेडियो से संबंधित इसे संपर्क में हूँ।
0: जी इंद्र जी
1: उसी रोज से मैं रेडियो ये लगा करके मेरे पास में छठवा रेडियो आ गया है सर।
0: क्या बात है, रेडियो से आपकी मित्रता इतनी पुरानी है जानकर हमें बहुत खुशी हो रही है। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही बने रहिए, और हम आपको प्रसन्नता प्रदान करते रहें, यही हमारी कोशिश है।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद।
0: इंद्र जी आज कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे? बिल्कुल, ये गाना मैं आपको सुनवा देता हूँ मुकेश की आवाज में। आपके पसंद का गाना रेडियो सेट पर जा रहा है बिना किसी विलंब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो
0: जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: नमस्कार सर, मैं राम कुमार साहब सिमरिया भिंडी पंचायत कल्याणपुर ब्लॉक समस्तीपुर से बोल रहा हूँ। श्रीमान
0: राम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके कार्यक्रम में। बताइए कैसे हैं आप?
1: जी हाँ, है सामान्य है, आप लोगों की कृपा है, ऊपर वाले की मर्जी है, मैं सामान्य हूँ, ठीक ठाक हूँ।
0: बिल्कुल ऐसे ही बने रहिए, अच्छे बने रहिए, तंदुरुस्त बने रहिए, हमारे रेडियो के साथ बने रहिए। बताइए राम कुमार जी, कौन सा गाना सुनेंगे, क्योंकि वक्त बहुत कम है अब।
1: बहुत कम है जी, तो फिल्म है
0: जी,
1: ये मन्ना डे महोदय का है, शास्त्रीय धुन पर आधारित है, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे,
0: जी
1: अच्छा है।
0: जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गाने की फरमाइश की है राम कुमार जी, तो आपकी फरमाइश का गाना आप तक पहुँचा रहे हैं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
1: श्रीमान, धन्यवाद
0: धन्यवाद।

हेलो आकाशवाणी, ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से सुन रहे थे। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
1: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
2: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
0: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने

0: citizens to participate enthusiastically in the movement and renew their collective resolve to contribute towards building a Viksit Bharat. 47 people were killed and dozens of buildings collapsed in cities across western Colombia today after a powerful 7.4 magnitude earthquake struck. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज़ ऑन AIR ऐप एवं DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10:26 हुए हैं। हमारी आज की सभा यहीं समाप्त होती है। कल पुनः प्रातः 5:45 पर हम कल के कार्यक्रमों के संग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।